मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शक संवत 1948 के वैशाख माह की 31वीं तिथि तदनुसार गुरुवार दिनांक 21 मई 2026 इस समय प्रातः के 5:56 52 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24

0: परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोहल्ला और CPIM ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और FM बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं देशभक्ति वंदना समूह स्वर में।

कार्यक्रम आराधना में अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में ये देशभक्ति वंदना। लीजिए अब प्रस्तुत है हरिओम शरण के स्वर में ये भजन।

अभी आप ये गुरुवाणी सुन रहे थे। कार्यक्रम आराधना के अंत में आइए सुनते हैं ये नातिया कलाम अब्दुल लतीफ और साथियों से।

0: अभी अब्दुल लतीफ और साथी नातिया कलाम पढ़ रहे थे और इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु का प्रसारण। कार्यक्रम विचार बिंदु में आज मौन विषय पर विचार सुनिए। आलेख संकलन और वाचन स्वर कल्पना सिन्हा का है।
1: हम सभी के जीवन में जितना महत्व हमारी वाक्पटुता का होता है, उतना ही महत्व हमारे मौन का भी होता है। मौन केवल चुप रहना ही नहीं है, बल्कि यह मन की गहराई को सुनने की कला है। कई बार जो बातें हजार शब्द नहीं कह पाते, वह एक शांत मौन कह देता है। मौन हमें धैर्य, आत्मसंयम और सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। आज के शोर भरे संसार में मौन एक ऐसी साधना बन गया है जो व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है। इतिहास गवाह है कि महान व्यक्तियों ने मौन की शक्ति को समझा और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया। महात्मा गांधी प्रत्येक सोमवार को मौन व्रत रखते थे। उनका मानना था कि मौन मनुष्य को अपनी आत्मा की आवाज सुनने का अवसर देता है। जब वे मौन रहते थे, तब वे अपने विचारों को अधिक स्पष्ट रूप से समझ पाते थे। यही आत्मचिंतन उनके महान निर्णयों का आधार बना। ओशो ने मौन को स्वयं को जानने का मार्ग कहा है। उनका मानना है कि मौन ही वह द्वार है जहां आप खुद से मिलते हैं। जब आप मौन में होते हैं तो आप अपने भीतर की आत्मा की आवाज सुन सकते हैं। कई बार हम सभी ने भी अपने कार्य क्षेत्र में परिस्थितियों के हिसाब से मौन को अपनाया है। गौतम बुद्ध ने भी मौन को ज्ञान प्राप्ति का साधन माना। उन्होंने वर्षों तक ध्यान और मौन साधना के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि मौन केवल बाहर की शांति नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता भी है। एक ऐतिहासिक प्रसंग बहुत ही प्रेरणादायक है। कहा जाता है कि एक बार एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद के पास आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। स्वामी जी शांत रहे और कुछ नहीं बोले। जब वह व्यक्ति थक गया, तब स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार दे और सामने वाला उसे स्वीकार न करे तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, देने वाले के पास। तब स्वामी जी ने कहा, ठीक वैसे ही मैं आपके अपशब्द स्वीकार नहीं करता। यह उदाहरण हमें बताता है कि मौन कई बार सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। आधुनिक जीवन में भी मौन का महत्व काफी बढ़ गया है। आज सोशल मीडिया, मोबाइल और भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति लगातार बोल रहा है, लेकिन सुनने वाले बहुत कम हैं। ऐसे समय में जो व्यक्ति कुछ समय मौन रहकर आत्ममंथन करता है, वही सही दिशा चुन पाता है। विद्यार्थियों के जीवन में भी मौन का विशेष महत्व है। परीक्षा के समय यदि छात्र व्यर्थ की बहस और नकारात्मक बातों से दूर रहकर शांत मन से अध्ययन करें तो उसकी एकाग्रता बढ़ती है। मौन मन को स्थिर करता है और स्मरण शक्ति को मजबूत बनाता है। आज के भागदौड़ भरे जीवन में हमारे परिवार के सदस्यों के बीच भी कभी कभी किसी बात

0: बातों को लेकर मनमुटाव हो जाया करते हैं। कई बार क्रोध और गुस्से में बोले गए शब्द रिश्तों को तोड़ देते हैं। उस समय यदि व्यक्ति थोड़ी देर मौन धारण कर ले तो विवाद समाप्त हो सकता है। इसीलिए कहा गया है, एक चुप सौ सुख। मौन हमें विनम्र बनाता है, हमारे अहंकार को कम करता है और दूसरों को समझने की क्षमता बढ़ाता है। जो व्यक्ति हर समय स्वयं को साबित करने में लगा रहता है वह अक्सर तनाव में रहता है, लेकिन जो व्यक्ति मौन रहकर अपने कर्मों से उत्तर देता है वही व्यक्ति सच्ची सफलता प्राप्त करता है। प्रकृति भी हमें मौन का संदेश देती है। सूरज बिना शोर किए प्रकाश देता है, पेड़ बिना कुछ कहे फल देता है और नदी बिना घमंड किए बहती रहती है। प्रकृति का यह मौन कर्म हमें सिखाता है कि महान कार्यों के लिए हमेशा शोर मचाना आवश्यक नहीं होता। मौन कमजोरी नहीं बल्कि महान शक्ति है। यह आत्मविश्वास, धैर्य और समझदारी की प्रतीक है। जीवन में यदि हम प्रतिदिन कुछ समय मौन रहकर स्वयं को समझने का प्रयास करते हैं तो हम मानसिक शांति और सफलता दोनों प्राप्त कर सकते हैं।
1: अभी आप मौन शीर्षक पर विचार सुन रहे थे। आलेख संकलन और वाचन स्वर कल्पना सिन्हा का था। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का गायन। मुख्य स्वर है भूपेंद्र सिंह का। संगीत संयोजक है सतीश भाटिया। आज आप सुनेंगे भाग 70।

राक्षसों तथा पापाचारियों से आतंकित पृथ्वी तथा ब्रह्मा सहित देवताओं ने परम पिता की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। तब गंभीर आकाशवाणी हुई, हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामी, भयभीत न हो। तुम्हारे कल्याण के लिए मनुष्य रूप धारण करके मैं सूर्यवंश में अवतरित होऊंगा। अदिति तथा कश्यप ने कठोर तपस्या करके मेरा वरदान प्राप्त किया और वे ही कौशल्या तथा दशरथ के रूप में अयोध्या में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर श्रेष्ठ चार भाइयों के रूप में मैं अपनी परम शक्ति समेत पैदा होऊंगा। आकाश में गूंजती ब्रह्मवाणी अपने कानों सुनकर सभी देवता आश्वस्त हुए।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रीरामचरितमानस का गायन, मुख्य स्वर था भूपेंद्र सिंह का, संगीत संयोजक थे सतीज भाटिया। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बात। कार्यक्रम खेती की बात में आज जानकारी का विषय है जैविक खेती के मूलभूत सिद्धांत।
1: जैविक खेती के मूलभूत सिद्धांत। किसान भाइयों, आज की खेती की बात में आपसे बातचीत इसी विषय को लेकर। संपूर्ण विश्व में बढ़ती हुई जनसंख्या एक गंभीर समस्या है। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ भोजन की आपूर्ति के लिए मानव द्वारा खाद्य उत्पादन की होड़ में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए तरह तरह की रासायनिक खादों, जहरीले कीटनाशकों का उपयोग, प्रकृति के जैविक और अजैविक पदार्थों के बीच आदान प्रदान के चक्र को इकोलॉजी सिस्टम प्रभावित करता है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति खराब हो जाती है, साथ ही वातावरण प्रदूषित होता है तथा मनुष्य के स्वास्थ्य में गिरावट आती है। अब हम रासायनिक खादों, जहरीले कीटनाशकों के उपयोग के स्थान पर जैविक खादों, दवाइयों का उपयोग कर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे भूमि, जल एवं वातावरण शुद्ध रहेगा और मनुष्य एवं प्रत्येक जीवधारी स्वस्थ रहेंगे। भारतवर्ष में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। हरित क्रांति के समय से बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए एवं आय की दृष्टि से उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। अधिक उत्पादन के लिए खेती में अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग करना पड़ता है, जिससे सीमांत और छोटे कृषक के पास कम जोत में अत्यधिक लागत लग रही है और जल, भूमि, वायु और वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। साथ ही साथ खाद्य पदार्थ भी जहरीले हो रहे हैं। सभी समस्याओं से निपटने के लिए पिछले वर्षों में निरंतर टिकाऊ खेती के सिद्धांत पर खेती करने की सिफारिश की गई है। अब हम बात करते हैं जैविक खेती पर। कृषि की यह वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों के अप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है तथा जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग करती है। जैविक खादों के प्रयोग से मृदा का जैविक स्तर बढ़ता है, जिससे लाभकारी जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है और मृदा काफ़ी उपजाऊ बन जाती है। जैविक खाद पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक खनिज पदार्थ प्रदान कराते हैं, जो मृदा में मौजूद सूक्ष्म जीवों के द्वारा पौधों को मिलते हैं, जिससे पौधे स्वस्थ बनते हैं और उत्पादन बढ़ता है। रासायनिक खादों के मुकाबले जैविक खादें सस्ते, टिकाऊ तथा बनाने में आसान होती हैं। इनके प्रयोग से मृदा में ह्यूमस की बढ़ोतरी होती है और मृदा की भौतिक दशा में सुधार होता है। पौध वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तथा काफ़ी मात्रा में गौण पोषक तत्वों की पूर्ति जैविक खादों के प्रयोग से ही हो जाती है। कीटों, बीमारियों तथा खरपतवारों का नियंत्रण काफ़ी हद तक फसल चक्र, कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं, प्रतिरोध किस्म

0: और जैव उत्पादों द्वारा ही कर लिया जाता है। जैविक खादें सड़ने पर कार्बनिक अम्ल देती हैं जो भूमि के अघुलनशील तत्वों को घुलनशील अवस्था में परिवर्तित कर देती है, जिससे मृदा का पीएच मान 7 से कम हो जाता है। अतः इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है। यह तत्व फसल उत्पादन में आवश्यक है। इन खादों के प्रयोग से पोषक तत्व पौधों को काफ़ी समय तक मिलते हैं। यह खादें अपना अवशिष्ट गुण मृदा में छोड़ती हैं, अतः यह एक फसल में इन खादों के प्रयोग से दूसरी फसल को लाभ मिलता है। इससे मृदा उर्वरकता का संतुलन ठीक रहता है। जैविक खेती के मूलभूत सिद्धांत की जब बात हो रही हो तो हमें जैव उर्वरक उपयोग विधि को भी जान लेना आवश्यक है। अब अगर हमें बीजोपचार करना है तो 200 ग्राम नत्रजन स्थिरीकरण उर्वरक एवं 200 ग्राम पीएसबी जैव उर्वरक 300 से 400 मिलीलीटर पानी में अच्छी तरह मिला लें। इस घोल को 10 से 12 किलो बीजों पर डालकर हाथ से तब तक मिलाएं जब तक कि समस्त बीजों पर समान परत न चढ़ जाए। अब इन बीजों को छायादार एवं हवादार स्थान पर सूखने के लिए रख दें। इसी तरह मृदा उपचार की अगर बातचीत की जाए तो मृदा उपचार कुल लगाए जाने वाले पौधों की संख्या पर निर्भर करता है। 2 से 4 किलो एजेटोबैक्टर एवं 2 से 4 किलो पीएसबी एक एकड़ के लिए पर्याप्त है। इन दोनों प्रकार के जैव उर्वरकों को 2 से 4 लीटर पानी में अलग अलग मिलाकर 50 से 100 किलो की कंपोस्ट के अलग अलग ढेरों पर छिड़काव करें। दोनों ढेरों को अलग अलग मिलाकर पूरी रात के लिए छोड़ दें। 12 घंटे बाद दोनों ढेरों को आपस में अच्छी तरह मिला लें। खेतों में बोई जाने वाली फसलों के लिए पूरे खेत में बुआई से पहले इस मिश्रण को अच्छी तरह छिड़क दें। आलू और गन्ने की फसल में जैव उर्वरक उपचार किया जा सकता है। पहली बार बुआई के समय कंदों और गन्ने के टुकड़ों को जैव उर्वरक घोल में डुबोकर उपचारित करें तथा दूसरी बार मिट्टी चढ़ाते समय अंकुरित पौध जड़ों के पास डालकर मिट्टी चढ़ा दें। इस प्रकार किसान भाई अगर जैविक खेती करना चाहते हैं तो जैविक खेती के इन सब मूलभूत सिद्धांतों की जानकारी रखना आवश्यक है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बात। सामयिक सुझाव का विषय था जैविक खेती के मूलभूत सिद्धांत। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। आइए जानते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

सुबह 7 बजे आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल। इसमें आप सरगुजिया और सादरी लोक गीत सुनेंगे। जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा लेकर आएंगे सुबह 7:30 पर। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम माटी के आखर। ये कार्यक्रम हम सुबह 8:30 पर प्रस्तुत करेंगे। बातों और गीतों का खास कार्यक्रम गुंजन आप सुनेंगे सुबह 9 बजे। सुबह 11:05 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। दिन में 12 बजे आप सुनेंगे NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। एक ही शीर्षक पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम चयन आप सुन सकेंगे दिन में 12:30 पर। दिन में 1:10 पर आप सुनेंगे बहनों का कार्यक्रम घर आंगन। इसमें आप सुनेंगे बातचीत राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस पर बातचीत और साथ ही होगा क्रम गुलदस्ता। साथ ही जानेंगे घरेलू नुस्खे और गीत संगीत। आपके ईमेल पर आधारित कार्यक्रम ईमेल की गूंज का प्रसारण समय है दिन में 1:40 पर और रात्रि 9:30 पर। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा पेश करेंगे दिन में 2:30 पर। हमारी शाम की सभा की शुरुआत होगी शाम 5 बजे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट से। शाम

0: आज बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी। इसमें आप सुनेंगे युवा सोच एक नए विषय पर, साथ ही होगा क्रम महफिल। शाम 6:20 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम गोधुली। इसमें आप सरगुजिया और छत्तीसगढ़ी लोक गीत सुनेंगे। शाम 7:20 पर आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल। शाम 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसानवाणी। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। चित्रपट संगीत आप सुन सकेंगे रात्रि 9:15 पर। और रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी। इसमें गायन सुनेंगे पंडित मल्लिका अर्जुन मंसूर से, राग होगा विभास। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मनभावन पेश करेंगे रात्रि 10:30 पर। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव और FM बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत समाचार दिल्ली से रिले करेंगे।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमं अन्तिमं च चरणं सफलतया सम्पाद्य इटली देशात् नवदिल्लीं प्रत्यागतवान्। ह्यः भारत इटली देशयोः मध्ये विशेष रणनैतिक सहयोगरूपेण स्वसम्बन्धस्य उन्नयनस्य घोषणा अभवत्। कृषिः, महत्त्वपूर्णखनिजाः, आयुर्वेदः, विज्ञानं, तन्त्रज्ञानम् इत्यादिषु अनेकेषु क्षेत्रेषु द्वयोः देशयोः मध्ये अनेकाः सन्धयः हस्ताक्षरिताः। कर अपराधानां, धनशोधनस्य, आतंकवित्तपोषणस्य च निवारणार्थम् अपि राष्ट्रद्वयेन ज्ञापनपत्रेषु हस्ताक्षरं जातम्। इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिणा जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया सह रोम नगरे संयुक्त वक्तव्ये प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् उभौ देशौ नौकावहन क्षेत्रेषु नौकापत्तनानां आधुनिकीकरणे, रसद क्षेत्रे नील अर्थव्यवस्थायां च मिलित्वा कार्यं करिष्यतः।
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: इटली देशस्य प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इत्येषावदत् यत् भारत इटली देशयोः सम्बन्धः विशेष सामरिक सहभागित्वरूपेण वर्धमानः अस्ति, अपि च उभौ देशौ उन्नत निर्माणस्य आधारभूत संरचनायाः, ऊर्जायाः, अर्थव्यवस्थायाः, रक्षायाः च क्षेत्रेषु परिश्रमेण कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। भारतम् इटली च सांस्कृतिक विनिमयं प्रवर्धयितुं, प्राचीन सभ्यतानां मध्ये संवादं सुदृढं कर्तुं च 2027 वर्षं संस्कृतेः पर्यटनस्य च वर्षरूपेण आचरिष्यतः। इटली देशस्य प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया उक्तं यत् एषः उपक्रमः द्वयोः देशयोः मध्ये परस्परम् अवगमनं गभीरं कर्तुं, सांस्कृतिक कूटनीतिं च अधिकं सुदृढं कर्तुं साहाय्यं करिष्यति। सा अवदत् देशयोः मध्ये सुदृढतर सम्बन्धाः न केवलं राजनैतिक आर्थिक सम्बन्धैः, अपि तु जनानां समाजानां च मध्ये सम्पर्कस्य माध्यमेन अपि मापिताः भवन्ति। प्रधानमन्त्रिणे श्री नरेन्द्र मोदिने इटली देशस्य रोम नगरे खाद्य कृषि संघटनेन प्रतिष्ठितं एग्रिकोला पदकं प्रदत्तम्। पुरस्कारं प्राप्य श्रीमोदी भारतस्य कोटि कोटि कृषकाणां, पशुपालकानां, मत्स्यपालकानां, कृषिवैज्ञानिकानां, श्रमिकाणां च कृते एतत् सम्मानं समर्पितवान्। पदकमिदं खाद्य कृषि संघटनस्य महानिदेशकेन प्रदत्तम्। गृहमंत्री अमित शाह, वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल प्रधानमंत्रिणः कृते एग्रिकोला पदकं प्राप्त्यर्थम् अभिनंदनं कृतवन्तः। गृह मंत्री

0: अमितशाहः अवदत् यत् भारतं कृषिक्षेत्रे वैश्विकनेतृत्वेन उद्भूतमस्ति तथा च देशस्य कृषिप्रतिरूपं समग्रविश्वस्य कृते एकं मानदण्डं स्थापयति। पश्चिमबङ्गालराज्ये दक्षिणचतुर्विंशतिः परगणमण्डलस्य फाल्टा विधानसभाक्षेत्रे पुनर्मतदानम् अधुना 7 आरभ्यते, यद्धि सायं 6 समाप्तं भविष्यति। आहत्य 6 प्रत्याशिनः सौभाग्यस्य प्ररीक्षां कुर्वन्ति, येषु 2 निर्दलीयौ अपि स्तः। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन रक्तवर्णीय सञ्चेतना प्रख्यापिता यत् उत्तरप्रदेशस्य मध्यप्रदेशस्य विदर्भस्य च भागेषु आगामिदिनत्रयं यावत् तापतरङ्गतः तीव्रतापतरङ्गस्य स्थितिः भवति। विभागेन अनुमानितं यत् हरियाणा, चण्डीगढ, दिल्ली, पञ्जाब, बिहार, छत्तीसगढ, तटीय आन्ध्रप्रदेश, हिमाचलप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलङ्गाना, उत्तराखण्डे च एतादृशाः एव परिस्थितयः सम्भवन्ति। IPL इति 20-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन मुंबई इंडियंस दलं 4 पराजितम्। अद्य सायं 7:30 गुजरात टाइटन्स दलं अहमदाबाद नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: संस्कृत समाचार बुलेटिन अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7 अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए सरगुजिया भिनसरिया गीत। कलाकार हैं पधारन बाई और साथी।

कार्यक्रम गूंजे जंगल में अब प्रस्तुत है सादरी लोकगीत। लीजिए सुनिए ये रंजा कर्मा गीत अमृत मिंज और साथियों से।

कार्यक्रम गोजे जंगल के आखिर में लीजिए सुनिए। ये सरगुजिया गीत कलाकार हैं राम विशाल राम और साथी। लीजिए इन साथियों से सुनिए ये सुआ गीत।

अभी आप राम विशाल राम और साथियों से ये सुआ गीत सुन रहे थे, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम गूंजे जंगल अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत।

अभी आप जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल सुन रहे थे। शायर थे हस्ती मल हस्ती। कार्यक्रम सुगम संगीत में आप सुनिए सोनू निगम की आवाज में ये गीत। शब्द रचना फैज अनवर का है और संगीत निखिल विनय का है।

कार्यक्रम सुगम संगीत में अब पेश है चंदन दास की आवाज़ में ये गज़ल, शायर हैं अजीज़ कश्मीरी।

0: चंदन दास के गाए इस गज़ल के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा के आज के अंक के साथ मैं हूं रहना। सूचना जंगली हाथियों के संदर्भ में, जंगली हाथियों की गतिविधियों और उनके संभावित विचरण क्षेत्रों की सटीक जानकारी देने वाला विशेष कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट प्रतिदिन शाम 5 बजे आपके अपने 4 आकाशवाणी केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से प्रसारित हो रहा है। ये कार्यक्रम एफएम रेडियो चैनलों पर भी उपलब्ध है, जिसे आप आसानी से रेडियो सेट, मोबाइल फोन या गाड़ियों में चलते फिरते भी सुन सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसकी पहुंच है, ताकि हर जानकारी हो आपके हाथ में। इस कार्यक्रम से मिली जानकारी के कारण हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोग सुरक्षित रास्ते अपनाकर अपने घर सुरक्षित लौट रहे हैं। अब जंगल हो या गांव, किसी भी हिस्से में निकलने से पहले हाथियों की सही स्थिति जानने का सबसे भरोसेमंद माध्यम है हमर हाथी हमर गोट कार्यक्रम। सुनते रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। हमर हाथी हमर गोट, जहां हर सूचना है आपकी सुरक्षा के लिए। और इस सूचना के बाद आ जाते हैं समाचार बलरामपुर जिले से। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार जिले में 20 अप्रैल 2026 से 15 जून 2026 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान विद्यार्थियों को रचनात्मक और सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने के लिए स्कूलों और गांव शहर के सामुदायिक स्थलों पर समर कैंप का आयोजन किया जाएगा। समर कैंप के माध्यम से विद्यार्थियों को चित्रकारी, गायन, वादन, निबंध और कहानी लेखन, हस्तलिपि लेखन, नृत्य, खेलकूद और अपने गांव और शहर के ऐतिहासिक परिचय जैसी गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इसके अतिरिक्त स्थानीय परिस्थितियों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार अन्य रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। कैंप में कला और रचनात्मक क्षेत्र के विशेषज्ञों को आमंत्रित कर विद्यार्थियों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। और इस समाचार के बाद आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230, 600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230, 600।
0: अरे वाह, 07774, 230, 600, ये तो सच में लकी नंबर है।

0: का नाम सुनेगा।
1: ओ समझ गई, यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
0: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 0777 4 और मिला दो 230-600।
1: अरे वाह, 0777 4 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की, अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर, मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: अब सूचना मनिंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर जिले से। कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास मनिंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर द्वारा मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना अंतर्गत संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं सत्र 2026-27 प्रवेश परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। जारी सूचना के अनुसार प्रयास आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु 10 मई 2026 को आयोजित प्रवेश परीक्षा का मॉडल आंसर विभागीय वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट eklavya.cg.nic.in पर जाकर मॉडल आंसर देख सकते हैं। आदिवासी विकास विभाग द्वारा जारी सूचना में बताया गया है कि यदि किसी अभ्यर्थी को मॉडल उत्तर के संबंध में कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत करनी हो तो वो निर्धारित तिथि तक आवश्यक दस्तावेज प्रमाण सहित आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। दावा आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 मई 2026 रात्रि 12 बजे तक निर्धारित की गई है। विभाग ने स्पष्ट किया कि दावा आपत्ति आवेदन जिला मनिंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के परीक्षार्थियों द्वारा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर जमा करना होगा। बिना प्रमाण के प्रस्तुत दावा आपत्ति को पूर्णतः अमान्य माना जाएगा। सूचना में ये भी कहा गया है कि प्राप्त दावा आपत्तियों का परीक्षण विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। विशेषज्ञ समिति का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। डाक माध्यम से प्राप्त दावा आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आदिवासी विकास विभाग ने अभ्यर्थियों और पालकों से समय सीमा के भीतर दावा आपत्ति प्रस्तुत करने और विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी का अवलोकन करने की अपील की है। और इस जानकारी के बाद आइए सुनते हैं फिल्म जंगली का गीत, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीत शंकर जयकिशन का है।

0: राम राम हो विष्णु भैया,
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगद तो दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया विनु भैया, ए दे आगु तो ए दे वर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं
0: हाँ।
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ये दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की दे ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: ताहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई, ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 MHz में भी एला है दे सुन सकते
1: हैं। हाँ, अबे दे शुरू है कि सा है।
0: हाँ, तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाणी।

कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा में एक बार फिर आपका स्वागत है। सूचना मनेंद्रगढ़ चिरमिरी और भरतपुर जिले से। मुख्यमंत्री द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना पूर्व में जवाहर उत्कर्ष योजना वर्ष 2026-27 में कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली चयन परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी गई है। आदिवासी विकास विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार विद्यार्थियों के चयन हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसके माध्यम से योग्य और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। विभाग ने परीक्षा से संबंधित सभी दिशा निर्देश, आवेदन प्रक्रिया, तिथियों की जानकारी जारी करते हुए विद्यार्थियों और पालकों को समय सीमा का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। जारी कार्यक्रम के अनुसार विद्यार्थी

0: साथ ही 20 जून 2026 तक अपने आवेदन पत्र विद्यालय में जमा कर सकेंगे। इसके बाद विद्यालय प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों के आवेदन संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित किया जाएंगे। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा संकुलवार आवेदनों की सूची तैयार कर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को भेजी जाएगी। वहीं सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग द्वारा राज्य कार्यालय को आवेदन संख्या जिला विकास खंडवार भेजी जाएगी। प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र 24 जुलाई 2026 को जिला मुख्यालय से वितरित किए जाएंगे। और इस सूचना के बाद आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज़ में फिल्म आनंद का गीत। शब्द रचना गुलजार का है और संगीत सलील चौधरी का है।
1: मैंने

जवाहर उत्कर्ष योजना 2026-27 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए सुनहरा अवसर। प्रवेश परीक्षा की समय सारणी जारी। कक्षा छठवीं में प्रवेश हेतु आवेदन प्रक्रिया शुरू। 7 अगस्त को होगी परीक्षा। जिला स्तर और विकास खंड स्तर पर परीक्षा का आयोजन 26 जुलाई 2026 को किया जाएगा। परीक्षा परिणाम 27 जुलाई 2026 को जिला स्तर पर संकलित कर दावा आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। दावा आपत्ति निराकरण की अंतिम तिथि 3 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है और इसके बाद राज्य मुख्यालय द्वारा

अंतिम मेरिट सूची जारी की जाएगी और कक्षा छठवीं की प्रवेश परीक्षा 7 अगस्त 2026 शुक्रवार को आयोजित होगी। परीक्षा से संबंधित विस्तृत सूचना अलग से जारी की जाएगी। और इस सूचना के बाद आइए सुनते हैं हेमंत कुमार की आवाज़ में फिल्म खामोशी का गीत। गीतकार हैं गुलजार।

केंद्रीय पेट्रो रसायन अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर में ACCL बिलासपुर द्वारा आयोजित रोजगार उन्मुखी निःशुल्क आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु 1000 जरूरतमंद युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाना है। जिला कौशल विकास प्राधिकरण के सहायक संचालक ने जानकारी देते हुए बताया कि आवेदकों के चयन हेतु 21 मई से 28 मई 2026 तक लाइवलीहुड कॉलेज भवन नमनाकला रोड के पास अंबिकापुर में शिविर आयोजित की गई है।

0: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
1: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
2: नमस्कार सरगुजा।
3: नमस्कार सरगुजा।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम।
5: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
9: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
8: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
10: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया जहाँ भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य

0: रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिक बेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख की। पश्चिम बंगाल लगभग 2,200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4,000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और BSF द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताज़ा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
5: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताज़ा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने TMC का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगा। तो अभी BJP का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल CIM का कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में भी मुकाबला हो। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और CIM का कैंडिडेट है सोमनाथ कुर्मी।
1: जी जी, धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोग

0: भवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
1: अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं। इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
0: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतन नैनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का 4था और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद प्रियंका। AI से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के 5 देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, CBSE की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी। चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने CBSE के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, UGC नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग शुआंगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति

0: Center ropes in major social media platforms to crack down on rumors and fake paper leak claims ahead of NEET UG re-examination. West Bengal government begins handing over land to BSF for barbed wire fencing along Indo-Bangladesh border. Re-polling begins in Falter Assembly constituency of West Bengal. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians by 4 wickets to keep their playoff hopes alive. And with that, we end the morning news. Have a great day.
1: अभी समाचार बुलेटिन हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम माटी के आखर।

0: माटी के आखर कार्यक्रम में राउर मनकर बहुत बहुत स्वागत है। अलग अलग विधा के लोग मन से मुलाकात करे के क्रम में आज के अंक में हमन मुलाकात करब एक प्रसिद्ध गीतकार से, जो न सिर्फ सरगुजा क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं बल्कि अपन गीत रचना के माध्यम से वो देश विदेश में प्रसिद्धि पाइन हैं। राउर जानत हो कि सरगुजा कर एगो प्रतिनिधि गीत है जिला कथे हाय रे सरगुजा नाचे, और एक ठन और गीत है जिला कथे कर्मा कुहू की। ये दोनों गीत का रचनाकार हमार साथ में हैं, उनकर से मुलाकात करब और ये जाने कर कोशिश करब कि गीत रचना के प्रति उनकर रुझान कैसे बढ़िस और ये शौक कैसे शुरू हुईस। तो कार्यक्रम की शुरुआत करत ही और राउर जम झनकर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। माटी के आखर कर आज कर कड़ी में हमन मुलाकात करब एक बहुत बढ़िया गीतकार संगीतकार हमर क्षेत्र कर सरगुजा कर, और इनकर नाम जरूर राउर मन सुने होब। ये बहुत बढ़िया गीत लिखिन है और ऐसन गीत लिखिन है जो हर आदमी कर जबान पर है। इनकर नाम है विजय सिंह दमाली, विजय कुमार सिंह वैसे इनकर नाम है लेकिन मुख्य रूप से ये विजय सिंह दमाली के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो विजय जी स्टूडियो में बैठी हैं, इनके हमन बहुत बहुत स्वागत करत थी, राउर के बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हमन ला बताई कि राउर कर जो गीतकार के रूप में जो यात्रा है और मुख्य रूप से जो हाय रे सरगुजा नाचे जो बहुत सुपर हिट गीत है, एकर अलावा जो कर्मा कुहू की गीत है, और राउर बताएं कि 150 से 200 गीत राउर लिखे हैं, तो बताइए एकर बारे में कैसे कैसे शुरुआत हुई।
1: जी मोर नाम विजय कुमार सिंह है और मैं ग्राम बड़ा दमाली पोस्ट नान दमाली थाना तहसील दरिमा जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ कर रहे वाला हूँ।
0: अच्छा।
1: और जैसे कि राउर पूछिन कि हमार साहित्यिक यात्रा चाहे गीत लेखन कर यात्रा कर बारे में बताई, तो मैं बताना चाहत हूँ कि मोर बचपन तो है सरगुजिया ही, मतलब सरगुजा से ही मैं शुरू से जुड़े हुए हूँ। अब सरगुजा कर जितना भी लोक संस्कृति है, लोक रीति रिवाज है, लोक गीत है, लोक संगीत है, ये सब ला मोला बहुत नज़दीक से देखे सुने सीखे कर मौका मिलिस, और एक तरह से मोला यला जिए कर भी मौका मिलिस। तो गांव में रहे वाला तो बचपन से ही हमन सुनत रहन गीत मन ला, गांव में कैसे कर्मा गीत गाते, कैसे डंडा गीत गाते, कैसे सुगा गीत गाते, कैसे बायर गीत गाते। साथ ही छोटे बचपन में हमन रेडियो सुनन, रेडियो में गाना बजत रहे उस समय ममता चंद्राकर जी कर, कविता वासनिक जी कर, तो वो सब गाना मतलब सुन सुन के मन में लागे कि महू यही कस गाय देखते हैं, चाहिए गाना मन हर कहाँ कहाँ जगले आयल कैसे बनेल, तो दुई लाइन हमू जोड़ जोड़ के बनाए सकत हन। तो यही कस रीझ रहीस, रुचि रहीस, तो वही क्रम में फिर कुछ लिखे कर मौका मिली। सब जैसे शिक्षा हम पढ़त गए तो मोर हायर सेकेंडरी स्कूल मोर दरिमा में हुईस, तो वो सम

0: में क्या है कि स्कूल मन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुए तो हमें भाग लेन तो रुचि इतना ज़्यादा रही कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में जब भाग ले तो मोर प्रयास रहे कि मैं अपन कर लिखल स्वरचित कुछ गीत ल सुनाओ है ना, तो वही कसिन दुई लाइन चार लाइन छः लाइन जितना हो सके तो कोशिश करो वही कसला सुनाओ तो बहुत अच्छा लगे सब कोई ला और पुरस्कार भी मिले तो मन में लागे कि अरे कुछ अच्छा करता हूँ मैं और आगे कुछ और अच्छा कर सकता हूँ। तो मैं बहुत कम ही उम्र में कहना चाहिए मोर लगभग 22-23 साल कर उम्र में ही मैं गीत लेखन में आए गए रहे और सन 2003 या 4 में मोर भेंट हुई समर अंबिकापुर कर प्रसिद्ध लोक गायक आदरणीय श्री संजय सुरीला जी जग। तो संजय सुरीला जी का एल्बम छत्तीसगढ़ी एल्बम चलत रही उस समय तो मैं भेटाए उनकर जग और मैं बताएं कि भैया महूला गीत मतलब लिखे कर शौक है और कुछ गीत मोरो है आवाज तो मोर उतना अच्छा नहीं है आपका आवाज जरूर कर आवाज बहुत सुंदर है तो मोर गीत लग गाय देता तो अच्छा रही सगर तो कहीं इनकी देखिए भैया कैसा गीत है। तो उनकर साथ तो कहा है कि अब उस समय ऑडियो कैसेट का जमाना रही थी रील वाला कैसेट 8 गाना रहे 1 कैसेट में तो उठे कंपनी ले ऑफर आई कि 8 गाना चाहिए 1 एल्बम पर। तो संजय सुरीला जी फिर मोर जो संपर्क करिन कि 8 गाना चाहिए अगर बढ़िया लिखिया तो रिकॉर्ड करब तो भाई अब कैसेट कर हिसाब से वो तो कमर्शियल रहते तो पसंद कर हिसाब से कि लोग क्या सुनना चाहते हैं किसे सुनना चाहते हैं तो वो हिसाब से फिर गीत लिखे रहन और वो गाना वो एल्बम है बहुत ज़्यादा हिट हुई एक तरफा हिट हुई।
1: अच्छा
0: वो समय ऐसा स्थिति रही कि वो सिर्फ एक ही ठो कैसेट बिके बाजार में हाँ दुकान मन में फिर वो क्रम हर चलते रहीस और उसके बाद हमन संजय सुरीला जी जग बहुत सारा एल्बम करें 2.5 मतलब 100 कम से कम 200 गीत तो हो ही संजय सुरीला जी कर साथ
1: अभी के हालत
0: जो मैं यूट्यूब में ही कम से कम 100 से 150 गीत यूट्यूब में ही हूँ और इस तरह से गीतकार के रूप में थोड़ा पहचान बनत गई और विशेष रूप से सन 2009 में एक ठो गीत आईस
1: अच्छा।
0: और पहला गाना रहीस हायरे सरगुजा नाचे और वही गाना हर इतना ज्यादा चर्चित हुईस इतना लोकप्रिय हुईस कि ओहर हमर सरगुजा कर तो विशेष रूप से वो प्रतिनिधि गीत है वर्तमान में ओहर सरगुजा जिला ही नहीं सरगुजा संभाग ही नहीं बल्कि पूरा छत्तीसगढ़ का हर कोना में चाहे कोई भी वो निजी कार्यक्रम हो चाहे वो सरकारी कार्यक्रम हो हर आयोजन में ये गीत ल बजना ही है और सिर्फ छत्तीसगढ़ ही में ही नहीं बल्कि वह छत्तीसगढ़ से बाहर भी आप मल्ला और मल्ला सुने ले ये गीत है मेल ही आउ एक साथ थे अगर आउ बताऊं तो 2017 में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एक आयोजन करल गए रही जम्बूरी कर जमा स्काउट गाइड NCC के लड़का मन एक जगह जुट थे पूरा तो वो राज्य स्तरीय जम्बूरी कार्यक्रम रही ओकर बर मोला छत्तीसगढ़ शासन से ही एक निर्देश प्राप्त हुईस कि ये जम्बूरी कार्यक्रम बर एक गीत लिखना है और ऐसा गीत लिखना है जिन्हें पूरा लड़का जितना जुटे रही एक जग उमन डांस कर सकें तो डांस कर सकें तो डांस वाला बात आयल तो हमारे कर्मा मोला सबसे पहले याद आयल ये कर्मा कर धुन ओकर वाद्य यंत्र ऐसा है कि वो जब बज ही तो मतलब ऐसा कोई आदमी नहीं है कि ओकर पाँव हर थिरके नहीं लगे
1: नहीं, थिरके, हाँ,
0: है ना तो वही धुन ले लेके फिर मैं गीत लिखे कर्मा कुहू की गबो मांदर के तालमा। तो ये गीत के बारे में बताऊं और आगे कि ये गीत जब रिकॉर्ड करें तो दू ठो अंतरा रही तो जब कहीं की लड़का इतना जब ज्यादा जुटा थे जग तो गाना थोड़ा लंबा होना चाहिए कहे कि 2 मिनट नाच ही 3 मिनट फिर कोई मतलब नहीं उतना तैयारी करब तो वो 2 अंतरा फिर बाद में वो मैं फिर बढ़ाएं और लेके और फिर 8 मिनट से 10 मिनट तक कर गीत तैयार हुई और एक गीत कर विशेष रूप से मैं एक बार चर्चा करत हूँ कि ये गीत में छत्तीसगढ़ कर जो जितना जुटे रहीन ओमे 23,000 से ज्यादा लड़का हमर सिर्फ छत्तीसगढ़ कर रहीन, और ओमे छत्तीसगढ़ ही नहीं भारत से बाहर मतलब नेपाल और भूटान कर लड़का मन भी आए रहीन, या इस तरह से कहल जाए तो ओला एक तरह से अंतर

0: राष्ट्रीय कार्यक्रम कहल जा सकते हैं।
1: हाँ,
0: और इतना ज्यादा संख्या में एक ठे गीत कर्मा गीत में नाचे कर एहर विश्व रिकॉर्ड स्थापित हुई। तो एकर बर भी ये गीत हर विशेष बन जाते और मोला अपन आप में भी एक ठे गर्व महसूस होते कि मोर गीत में मोर लिखल गीत में मोर शब्द में मतलब मनसे मन इतना ज्यादा प्रेम करते हैं उम्मीद थी रखते हैं। तो मोला खुशी हुई और एक बार और खुशी हुई कि वो जब पता चलिस कि जो भूटान से आए रहीन लड़का वहाँ नाचे बर तो जब यहाँ से सीख गई नुमन तो भूटान नरेश का जब जन्मदिन रही

0: खुशी हुई और एक बार और खुशी हुई कि वो जब पता चलिस कि जो भूटान से आए रहीन लड़का वहाँ नाचे बर तो जब यहाँ से सीख गई नो मन तो भूटान नरेश का जब जन्मदिन रही वहाँ तो वो जन्मदिन में ये गीत प्रस्तुत करें यही गीत में वहाँ फिर तैयारी करवाइन और ये गीत में ही भूटान नरेश का जन्मदिन में वहाँ डांस हुई।
1: तो ये सब सांस्कृतिक आदान प्रदान
0: सांस्कृतिक आदान
1: यही संस्कृति का विकास है
0: जी बिल्कुल
1: बहुत अच्छा उदाहरण है राउर के जो ये कहानी है
0: जी
1: बहुत बढ़िया फिर का हुई
0: फिर यात्रा चलते है गीत संगीत आज भी चलते है एक अलावा में भक्ति गीत भी लिखत हूँ श्रृंगार कर भी गीत लिखत हूँ कर्म गीत लिखता हूँ और चूंकि मैं अभी वर्तमान में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तुरना विकासखंड लखनपुर में व्याख्याता के पद पर भी कार्यरत हूँ तो चूंकि सरगुजिया में मोर रुचि है तो कहते हैं कि वो भी देख के सुन के सब जान जाते तो विभाग वाला मन भी जानते हैं कि सरगुजिया में इसका पकड़ है ऐसे कही के तो फिर विभाग तरफ से भी मोला पुस्तक लिखे कर या सरगुजिया भाषा में काम करे कर बहुत ज़्यादा मौका मिलिस मैं 2010 से लगातार निरंतर और अभी तक सरगुजिया भाषा पर काम करत हूँ और सरगुजिया में मोर 3 से 4 किताब अभी तक आ चुकी से है छत्तीसगढ़ी गीत संग्रह भी आ चुकी से है कहानी भी आ चुकी से है सरगुजिया में और जिला लड़का मतलब पढ़ाल जाते अभी स्कूल में
1: अच्छा
0: स्कूल का पाठ्यक्रम में भी मोर लिखल जो रचना है सरगुजिया में जो अनुवाद करल है सरगुजिया में तेमन अभी पढ़ाल जाते यही सब है चलत है अभी तक।
1: विजय जी मैं कहत रहन कि बातचीत तो हमन बहुत करें एक दो गीत अगर राउर से सुन लेते हैं तो बड़ा बढ़िया लगती
0: जी। तो अब सरगुजा कर बात चलत है तो मैं हमर सरगुजा माटी कर वंदना एक सुनाना चाहत हूँ 2-4 लाइन। मोर सरगुजा के माटी मोर सरगुजा के माटी तोला करौ प्रणाम बार बार मोर सरगुजा के माटी तोला करौ प्रणाम बार बार तोला मैं जो हारौ दाई हो तोला मैं जोहारौ दाई ले ले मोर जोहार मोर सरगुजा के माटी तोला।

0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सरगुजा के वंदना गीत हमन और राउर के बारे में मोला पता चली पहली बार कि इतना बढ़िया सुर में और राग में राउर गाथी भी। तो हमारे सुनोइया भैया बहनी मन ला भी बहुत बढ़िया लगी सोही। उम्मीद करत हन राउर के जो गीत है, जब राउर लिखे बर पेन उठाती तो का चीज़ हर प्रेरित करे राउर के कि मोला ये शब्द लिखना है। काबर कि मैं देखें कि अलथी कलथी मांदर बाजे, ये मतलब मूल भावना हृदय से निकलल बात रहे। कैसे कैसे राव प्रेरित होती?
1: हाँ, जैसे कि मैं पहले ही बताएं कि मैं एकदम पूरा गांव कर जितना भी हमर लोक पर्व है, लोकगीत है, लोक संगीत है, एकर ऊपर मोला बहुत कुछ जाने सीखे कर मौका मिली, सब आज भी मिलत है और मैं सीखत रहता हूँ हमेशा जब भी ऐसा मौका मिले। तो कर्मा जो गीत है वो गीत में इतना रस है कि मोर गीत में भी एकर वर्णन है कि जब भी एकर मांदर बजते, जब भी एकर गीत बजते, तो अनायास ही मतलब पैर जो है वो थिरके लागते।
0: थिरके लागते।
1: तो जब हमन कोई गीत लिखत हन, कर्मा कर गीत लिखत हन, और कर्मा हर

0: हमर सरगुजा कर पारंपरिक लोक गीत है, लोक संगीत है, और यहाँ कर जो शब्द है, तो जब हम लोक गीत कर बात करत हन, लोक का बात करत हन, तो लोक में जो है ओला ही शामिल करना पड़ी ना। तो लोक जीवन में जो कुछ भी है अगल बगल में, मनुष्य जीवन से संबंधित, लोक जीवन से संबंधित, वो शब्द मनला में पूरा प्रयास करता हूँ कि वो मोर गीत में आ जाए, और वही हर गीत मन में मिठास पैदा करे।
1: विजय जी, थोड़ा सा समय बची से
0: जी,
1: अगर एक आध गीत या एक अंतरा हम और सुन लेते हैं तो बड़ा बढ़िया लगती है।
0: जी बिल्कुल। तो चूंकि महू एक किसान परिवार से ही हूँ, तो किसान कर समस्या भी कहना चाहिए या उकर स्थिति ला भी कहना चाहिए, किसान बर जो मोर सम्मान है तेला मैं आप मन कर माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता हूँ दो पंक्ति से।

0: बहुत बढ़िया विजय जी, बहुत बढ़िया। और राउर हमारे स्टूडियो में आयन, बहुत बढ़िया लगीस और गीत भी सुनायन, राउर के बारे में पता चली समझला। और फिर मौका मिली तो जरूर राउर से बातचीत करब।
1: जी,
0: आज
1: बहुत बहुत
0: बहुत बहुत
1: धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

माटी के आखर कार्यक्रम में अभी हमन बातचीत सुनत रहन विजय सिंह दमाली से। और अब कार्यक्रम में हमर पास इतना समय है कि हमन वो दोनों गीत ला सुन सकत ही जो विजय जी लिखिन है और इतना बढ़िया लोग मन ओला पसंद करिन है। तो बारी बारी से हमन बिना देर किए वो दोनों गीत ला सुनत ही।

ए रईस माटी के आखर कार्यक्रम कर आज कर अंक ए कार्यक्रम राउर मल्ला कैसा लगिस हमन ला जरूर बताई अपन विचार ईमेल के माध्यम से या चिट्ठी के माध्यम से या फोन करके हमर पास तक जरूर भेजी। नमस्कार।

प्रस्तुति सहयोग प्रशांत खेमरिया का था। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रमेंद्र कुमार। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। अब पेश है बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन।

नमस्कार श्रोताओं, चलिए चलते हैं बातों और गीतों के सफर में, कार्यक्रम गुंजन में। इस उम्मीद के साथ कि इस चिलचिलाती तेज गर्मी में आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, स्वस्थ और बढ़िया होंगे। चलिए

जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता। इसमें कभी खुशियों की धूप होती है तो कभी कठिनाइयों की छांव, कभी सफलता हमारे कदम चूमती है तो कभी असफलताएं रास्ता रोककर खड़ी हो जाती हैं। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि ये निरंतर गतिशील है। जो रुक गया वो पीछे छूट गया, जो चलता रहा वही आगे बढ़ा।

श्रोताओं कहते हैं कि जीवन एक खूबसूरत सरगम की तरह है जिसमें अलग अलग सुर, अलग अलग रंग और अलग अलग एहसास मिलकर एक मधुर संगीत रचते हैं। कभी ये संगीत हमें विविध संस्कृतियों की खुशबू से जोड़ता है तो कभी देश की एकता और शांति के लिए जागरूक होने की प्रेरणा देता है और कभी चाय के प्याले की तरह रिश्तों में अपनापन घोल देता है।

आज 21 मई का दिन कुछ ऐसे खास संदेशों को लेकर आया है। आज दुनिया सांस्कृतिक विविधता के सम्मान की बात करती है और हमारे देश में आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संकल्प दोहराया जाता है और पूरा विश्व चाय के मिठास में संवाद और सौहार्द का स्वाद महसूस करता है। तो आइए श्रोताओं, आज इस विशेष सफर की शुरुआत करते हैं मानवता, संस्कृति और संवेदनाओं की खूबसूरत बातों के साथ।

श्रोताओं, दुनिया में अगर हर व्यक्ति, हर भाषा, हर परंपरा, हर संस्कृति एक जैसी होती तो शायद हमारा जीवन इतना रंगीन नहीं होता। विविधता ही संसार की सबसे बड़ी खूबसूरती है, खासियत है, और इसी खासियत को सम्मान देने के लिए हर वर्ष 21 मई को संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा और यूनेस्को द्वारा किया गया ताकि दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों के बीच संवाद, सम्मान और भाईचारे को बढ़ावा दिया जा सके।

आकाशवाणी अंबिकापुर से आप सुन रहे हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन, अपने रेडियो हम सफर रैना के साथ। कार्यक्रम में अभी हाजिर होते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम में हम बातें कर रहे हैं सांस्कृतिक विविधता की, और जब सांस्कृतिक विविधता की बातें करते हैं तो हमारा देश सांस्कृतिक विविधता की एक सुंदर मिसाल है। यहाँ हर कुछ किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, रहन सहन बदल जाता है, खान पान बदल जाता है, लेकिन नहीं बदलता है तो वो है लोगों में आपसी सद्भाव और अपनापन। हमारे देश में दीपावली की रोशनी जगमगाती है, ईद की मिठास भी है, क्रिसमस की सेवइयाँ भी हैं और गुरु पर्व की आस्था भी, और यही विविधता हमारे देश को एकता में अनेकता का अद्भुत स्वरूप देती है। लेकिन श्रोताओं, सिर्फ अलग अलग संस्कृतियों का होना ही पर्याप्त नहीं है, ज़रूरी ये है कि हम एक दूसरे को समझें, सम्मान दें, संवाद बनाए रखें, आपसी सद्भाव और मिठास बनाए रखें, और ये तब होगा जब मीठे मीठे बोल बोलेंगे

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, आज के समय में जब दुनिया में कई बार मतभेदों और कटुता से दुनिया गुजरती है, तब आपस में संस्कृतियों का मेलजोल, सांस्कृतिक संवाद हमें ये सिखाता है कि इंसानियत हर सीमा से बड़ी होती है। किसी भी, कोई भी भाषा अलग हो सकती है, वेशभूषा अलग हो सकती है, लेकिन भावनाएं सबकी एक जैसी होती है।

सांस्कृतिक विविधता हमें सहिष्णुता, प्रेम और स्वीकार्यता का पाठ पढ़ाता है। यह हमें सीख देती है कि भिन्नता यानी एक दूसरे से अलग होना दिखना कोई दूरी नहीं बल्कि सीखने और जुड़ने का अवसर है। सांस्कृतिक विविधता एक विशेषता है और हमारा संकल्प हो कि हम हर संस्कृति का सम्मान करें, भेदभाव नहीं बल्कि मानवता की उस डोर को मजबूत करें जो पूरे विश्व को जोड़ती है।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, 21 मई हमारे देश के इतिहास का बहुत ही संवेदनशील दिन है। आज अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। ये दिन पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। वर्ष 1991 में एक आतंकवादी हमले में उनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जागरूकता फैलाने और युवाओं को हिंसा के रास्ते से दूर रखने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया। आतंकवाद केवल हिंसा नहीं, ये मानवता पर हमला है। ये डर, असुरक्षा और विनाश का वो अंधकार है जो समाज की शांति को छीनता है। लेकिन ये बात भी है श्रोताओं के इतिहास गवाह है कि नफरत की उम्र हमेशा छोटी होती है, जबकि प्रेम, शांति और एकता हमेशा अमर रहते हैं।

0: श्रोताओं, हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है और यही विविधता हमारी ताकत भी है। जब हम एकजुट रहते हैं तब कोई भी नकारात्मक शक्ति हमें कमजोर नहीं कर सकती। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस हमें यही संदेश देता है कि हमें हिंसा नहीं संवाद चुनना है, नफरत नहीं भाईचारा चुनना है, विनाश नहीं बल्कि विकास का रास्ता अपनाना है। विशेष रूप से देश के युवा शक्ति की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि युवा शक्ति अगर सही दिशा में आगे बढ़े तो देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। कार्यक्रम में और बातें करेंगे, फिलहाल सुनते हैं ये संदेश।
1: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230-600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
2: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
1: अच्छा, वो कैसे?
2: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की

0: पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
1: ओ समझ गई, यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
0: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
1: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की, अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर से आप सुन रहे हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन, अपने रेडियो हम सफर रैना के साथ।

जी हाँ श्रोताओं, कुछ चीज़ें हमारे जीवन में ऐसे ही शामिल होती हैं कि अगर उसके तलबगार हैं तो हमें सुबह शाम तलब लगती ही है, यानी बिना इसके हमारे दिन की शुरुआत अधूरी अधूरी सी लगती है। सुबह की नींद टूटे, शाम की थकान मिटे, दिल की बात हो या दोस्तों से मुलाकात हो, एक चीज़ हमेशा साथ होती है और वो है एक प्याली गरम चाय।

0: आकाशवाणी के 90 वर्षों के गौरवशाली प्रसारण के जश्न में शामिल होने आइए 23 मई को सुबह 6 बजे आकाशवाणी अंबिकापुर के मेन गेट पर। आकाशवाणी अंबिकापुर के सदस्य और आप सब मिलकर करेंगे वॉकथन।
1: तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी।
0: चलिए बनाएं एक मिसाल अपने प्यारे संबंधों की। शामिल होइए आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ 23 मई 2000

0: के सदस्य और आप सब मिलकर करेंगी वॉकथन।
1: तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी।
0: चलिए बनाए एक मिसाल अपनी प्यारी संबंधों की। शामिल होइए आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ 23 मई 2026 को।
2: चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में।
0: आकाशवाणी अंबिकापुर के सदस्य और आप सब करेंगे वॉक और साथ चलते चलते ढेर सारी बातें भी 23 मई 2026 को सुबह 6 बजे आकाशवाणी अंबिकापुर के मेन गेट से शुरू करेंगे हम सब मिलकर वॉकथन। हमें रहेगा आपका इंतजार, आइएगा जरूर।

श्रोताओं, आज 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। हम सबकी सुबह की शुरुआत चाय की चुस्कियों से होती है। दोस्तों रिश्तेदारों से मुलाकात हो और चाय न हो तो शायद अधूरा सा लगेगा। इसी अपनत्व और महत्व को सम्मान देने के लिए हर वर्ष 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित ये दिन चाय के उत्पादन, उसके इतिहास और उससे जुड़े लोगों यानी श्रमिकों और समुदायों के योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। हमारा देश दुनिया के प्रमुख चाय उत्पादक देशों में से एक है। असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी जैसी जगहों की चाय दुनिया भर में प्रसिद्ध है। लेकिन चाय सिर्फ एक पेय नहीं, ये भावनाओं का स्वाद है। घर में मेहमान आए तो चाय, दोस्त नाराज हो तो चाय, काम की थकान हो तो चाय, बारिश हो, ठंड हो तो चाय, और कभी कभी तो बिना किसी वजह के सिर्फ चाय। जी हाँ, चाय रिश्तों को जोड़ती है, बातचीत शुरू करवाती है, दूरी कम करती है और कई बार अनकहे एहसासों को भी शब्द दे देती है। लीजिए सुनिए ये गीत, इसमें भी कुछ ऐसे भाव शामिल हैं जहाँ चाय के माध्यम से दिल की बात कही जा रही है।

0: वो अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
1: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
0: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जुड़िए आपके अपनों को भी।
0: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज के साथ अब FM 100.2 MHz पर भी।
2: अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, जब दुनिया मिलकर उस चाय की प्याली को सलाम करती है जिसने न जाने कितनी सुबहें सवारी हैं, कितने रिश्ते जोड़े हैं और कितने अफसानों को जन्म दिया है। चाय सिर्फ एक पेय नहीं, ये एक एहसास है और हमारे देश में चाय पीना और पिलाना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। याद कीजिए वो रेलवे स्टेशन के मिट्टी के कुल्हड़ की चाय, छोटे से ढाबे पर उफनती हुई कड़क अदरक की चाय और माँ के हाथ की बनी वो सुबह सुबह की चाय जो मेरा मांगे हमें मिल जाती है। दुनिया में पानी के बाद सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला पेय चाय है। हर दिन दुनिया भर में करीब 300 करोड़ कप चाय पी जाती है और चाय के इजाद होने की कहानी और चाय से जुड़ी इंटरेस्टिंग बातें और करेंगे। आइए सुनते हैं चाय पर ये फनी सा गीत।

श्रोताओं, चाय की कहानी शुरू हुई थी हजारों साल पहले चीन में। कहते हैं वहाँ के सम्राट शेन नोंग ने उबलते पानी के बर्तन में कुछ पत्तियाँ गिरी उनके उबलते पानी में, जिससे पानी की रंगत बदल गई और जो खुशबू उठी उसने इतिहास बदल दिया। हमारे देश में चाय ब्रिटिश लाए, लेकिन हम भारतीयों ने इसे अपना बना लिया। असम की हरी भरी वादियाँ, दार्जिलिंग की धुंध भरी पहाड़ियाँ और नीलगिरी के बगान, इन्हीं से उठती है वो खुशबू जो घर घर तक पहुँचती है। साथियों, चाय सिर्फ शरीर को नहीं मन को भी ताज़ा करती है। चाहे कश्मीरी कहवा हो, हैदराबादी ईरानी चाय हो या मसाला चाय, हर प्याली में एक अलग ही कहानी और स्वाद है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज गुंजन का सफ़र अब यहीं तक। आज कार्यक्रम में आपने जिन फिल्मों के गीत सुने वो इस प्रकार हैं: शोर, तकदीर, सोनी महिवाल, फना, हम सब उस्ताद हैं, बनफूल, सौतन, हर दिल जो प्यार करेगा। गायक कलाकार हैं महेंद्र कपूर, मन्ना डे, लता मंगेशकर, आशा भोसले, शबीर कुमार, महालक्ष्मी अय्यर, किशोर कुमार, अनु मलिक।

जी हाँ श्रोताओं, चाय में ऐसी ही खास बात है। और अब कार्यक्रम गुंजन रैना को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ शासन ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए प्रदेश भर में निगरानी और जांच समितियों का गठन किया है। भारतीय सेना ने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। और आकाशवाणी द्वारा कल रायपुर में स्वर उत्सव संगीत

0: समारोह का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए प्रदेश भर में निगरानी और जांच समितियों का गठन किया है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी किया है। ये समिति अशासकीय स्कूलों में फीस बढ़ोतरी तथा पुस्तक गणवेश खरीदी की शिकायतों की निगरानी करेगी। जारी आदेश में कहा गया है कि शासन के संज्ञान में ये बात आई है कि छत्तीसगढ़ में संचालित अशासकीय शालाओं द्वारा पालकों को पुस्तक गणवेश और अन्य सामग्री किसी एक ही फर्म से खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। फर्म के अप्रत्याशित दाम की वजह से पालकों पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। इस संबंध में मीडिया में लगातार शिकायतें प्रकाशित हो रही हैं। इन्हीं शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए जिला और विकास खंड स्तर पर निगरानी और जांच समितियों का गठन किया गया है। भारतीय सेना ने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित ये ऑनलाइन परीक्षा आगामी 1 जून से 5 जून तक और इसके बाद 8 जून से 12 जून तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ के 5 प्रमुख शहरों भिलाई, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में इसके लिए कुल 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां प्रत्येक दिन परीक्षा का आयोजन 3 से 4 शिफ्टों में किया जाएगा। सभी पंजीकृत उम्मीदवार भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। राज्यपाल रमन डेका कल जनगणना 2026 प्रक्रिया में शामिल हुए। जनगणना 2026 की प्रक्रिया के तहत नगर निगम के अधिकारियों ने लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल से जनगणना के 33 बिंदुओं से जुड़ी जानकारी प्राप्त की। अधिकारियों ने निर्धारित प्रश्नों के आधार पर राज्यपाल से व्यक्तिगत, सामाजिक और अन्य सामान्य विवरण लिए। राज्यपाल ने जनगणना कार्य में सहयोग करते हुए सभी आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराई। इस अवसर पर नगर निगम रायपुर की जोन कमिश्नर और संबंधित अधिकारी मौजूद थे। मुख्य सचिव विकासशील ने जल जीवन मिशन के तहत राज्य में नियमित पेयजल आपूर्ति और पानी की गुणवत्ता की लगातार जांच सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मंत्रालय महानदी भवन में राज्य जल और स्वच्छता मिशन की अपेक्स कमेटी की बैठक में जल जीवन मिशन 2.0, पीएम जनमन कार्यक्रम और पीवीटीजी बसाहटों में पेयजल व्यवस्था सहित कई विषयों पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि अब नल जल योजनाओं के सुचारू संचालन और मॉनिटरिंग पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा कल 22 मई को रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम शांति नगर स्थित विमतारा ऑडिटोरियम में शाम 6:30 बजे से आयोजित किया जाएगा। 2 सत्रों में होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान सुगम संगीत और उपशास्त्रीय प्रस्तुतियां होंगी। पद्मश्री मदन चौहान सुगम संगीत कार्यक्रम पेश करेंगे, वहीं श्वेता शिवाले द्वारा उपशास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति दी जाएगी। आकाशवाणी रायपुर के उप महानिदेशक तथा क्लस्टर प्रमुख वी राजेश्वर ने बताया कि आकाशवाणी ने लोक प्रसारक के रूप में पिछले 90 वर्षों में उल्लेखनीय कार्य किया है। इस दौरान आकाशवाणी ने सूचना, शिक्षा, समाचार, मनोरंजन के माध्यम से अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की परिकल्पना को साकार करने का काम किया है। आकाशवाणी केंद्र रायपुर ने भी स्थानीय संस्कृति, लोक कला, शिक्षा, समाचार और मनोरंजन को गांव गांव तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। रायपुर में अब से कुछ देर बाद गिफ्ट तिलापिया की वैज्ञानिक खेती विषय पर चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय मत्स्य पालन विभाग और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किए जा रहे इस शिविर का उद्घाटन कृषि मंत्री रामविचार नेताम करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ शासन ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए प्रदेश भर में निगरानी और जांच समितियों का गठन किया है। भारतीय सेना ने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है और आकाशवाणी द्वारा कल रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे आइए जानते हैं तापमान सूचना। स्थानीय मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर पिछले 24 घंटों के दौरान अंबिकापुर नगर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और न्यूनतम तापमान 25.5

6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तापमान सूचना के बाद आइए जानते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम गांव कर गीत। प्रस्तुति सहयोग वशिष्ठ सिंह यादव का है और प्रस्तुतकर्ता है प्रमेंद्र कुमार। सुबह 11:05 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। दिन में 12 आप सुनेंगे एनसीईआरटी और सीआईटी द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। एक ही शीर्षक पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम चयन लेकर आएंगे दिन में 12:30 पर। बहनों का कार्यक्रम घर आंगन आप सुनेंगे दिन में 1:10 पर। इसमें आप सुनेंगे सामयिक चर्चा, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस पर बातचीत, साथ ही होगा क्रम गुलदस्ता और घरेलू नुस्खे और गीत संगीत आप सुनेंगे। ईमेल फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम ईमेल की गूंज का प्रसारण समय है दिन में 1:40 पर और रात्रि 9:30 पर। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा आप सुन सकेंगे दिन में 2:30 पर। हमारी शाम की सभा की शुरुआत होगी 5:00। आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट। युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी लेकर आएंगे 5:30 पर। इसमें आप सुनेंगे युवा सोच एक नए विषय पर, साथ ही क्रम महफिल का प्रसारण किया जाएगा। 6:20 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम गोधुली। इसमें आप सरगुजिया लोकगीत सुनेंगे लखन दास और साथियों से और छत्तीसगढ़ी लोकगीत सुनेंगे धर्मसाय राजवाड़े और साथियों से। सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा पेश करेंगे 7:05 पर। ग्रामीण भाई बहनों का कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण समय है 7:20 पर। इसमें सामयिक चर्चा होगी और 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। इसमें आप बातचीत सुनेंगे, साथ ही जानेंगे मंडी भाव, मौसम की जानकारी और मौसम आधारित कृषि परामर्श। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश, सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी। इसमें आप गायन सुनेंगे पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर से राग विभास में। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मनभावन पेश करेंगे रात्रि 10:30 पर। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गांव कर गीत। प्रस्तुति सहायक हैं वशिष्ठ सिंह यादव और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं प्रमेंद्र कुमार।

0: गांवकर
1: जी।
2: गांवकर गीत कार्यक्रम में जम्मो श्रोता मन कर स्वागत है। चलिए शुरुआत करत हन कार्यक्रम गांवकर गीत।
3: हेलो,
2: गांवकर गीत कार्यक्रम में राहुल कर स्वागत है।
3: हाँ भैया, मोर माया भरे राम राम।
2: राम राम जी।
3: मैं नवागढ़ कटाई ले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था भैया।
2: हाँ नारायण जी, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, और बताई।
3: हाँ भैया, देखना अभी तो कस के गर्मी पड़ा था भैया। और बोरे बासी मजा लेवा था वन जी, और संग में खेती किसानी और आप मन के ये बात हुआ थे तो बढ़िया मजा आवा थे जब बोरे बासी के संग में।
2: हाँ अच्छा, बोरे बासी के संग में का चटनी रहते की
3: आमा चटनी खावा थन भैया।
2: हाँ सीजन है आमा कर नहीं
3: भैया।
2: बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है भाई, गर्मी से बच के रहना।

0: जरूरी है।
1: हाँ भैया, बहुत जरूरी है भैया। ये तो भैया जहाँ से 9 बजीस 10 बजीस वो एकदम लू चले ढले थे भैया, तो ये मैं अपन देखभाल, अपन शरीर के देखभाल करना बहुत जरूरी है भैया। जानवर भी रखे हवान, ओकरो देखभाल करना बहुत जरूरी है। ये जम्मो बात ला गर्मी में अपन ख्याल रखन लगा से भैया।
0: बिल्कुल। और जो चराई मन है ओहू मन खातिन बाहर पानी रखना जरूरी है।
1: हाँ ना भैया, हाँ, हर घर में हमारे जैसे नींबू के पेड़ हावत भैया, तो वही में चिड़िया मन आके बढ़िया चूहू चूह नरियात रही थे। हाँ, ओकर व्यवस्था करथन ना भैया, नीचे पेड़ के नीचे में कुछ चारा वारा डाल देथन, है ना, चावल है धान है, ऐसे करके भैया।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो
1: हाँ, और
0: नारायण
1: पानी
0: जी
1: के
0: आज
1: बहुत।
0: आज कौन सा गीत सुनना चाहे थे?
1: हाँ भैया, आज सुना देवन जी भुरवा राम मरकाम के स्वर में, जतन करो भुइया के संगी, जतन करो भुइया के।
0: बिल्कुल नारायण जी, रवकर पसंद कर गीत ला मैं सुनवाता हूँ। और हमारे कार्यक्रम में फोन करें, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: हेलो,
1: हेलो,
0: गांवकर गीत कार्यक्रम में रवकर स्वागत है।
1: राम राम भैया।
0: राम राम।
1: मैं मुन्नालाल पटले बोला था, डोंगरिया मलाजखंड जिला बालाघाट मध्य प्रदेश से।
0: हाँ मुन्ना जी, स्वागत है भाई। बताइए,
1: जी
0: बढ़िया ने
1: भैया।
0: सब?
1: हाँ भैया, सब बढ़िया।
0: बढ़िया बढ़िया, बढ़िया रहना चाहिए भाई।
1: हाँ, गर्मी के बाद आतंक चला थे बहुत बढ़िया। अभी गर्मी ऐसा मचे, घर से बाहर निकले के मन नहीं करे, बस घरे में टाइम पास करा था। अब
0: बढ़िया
1: सुना भैया, आप कैसे हो?
0: बढ़िया बढ़िया। बस रावण से बात
1: आपके
0: होते,
1: अंबिकापुर में गर्मी का हाल चाल है?
0: वही छाल है जो रावण के
1: हाँ
0: मलाज खंड में
1: हाँ
0: है।
1: हाँ
0: सब बराबर होगी से,
1: हाँ
0: पेड़ पौधा बहुत कम हो गए से।
1: हमारे यहाँ भी पेड़ पौधा बहुत कम हो गए, काहे सब दिनों दिन जंगल दूर जावा थे, देखा नाम से पर्यावरण के भी सब कहे जाए सब बिगड़ा थे माहौल,
0: बिल्कुल। देखा था
1: वही नाम से
0: मौसम,
1: गर्मी में। हाँ
0: मौसम भी बदलत रहा है, समझ में नहीं आता है।
1: हाँ
0: हमन के ज्यादा से ज्यादा अब देखी पौधा लगाना पड़ी, पेड़ लगाना पड़ी, काहे कि पर्यावरण बचना।
1: बिल्कुल। लेने कहे जाए, कोई भी ऐसे कार्यक्रम है, कोई फंक्शन है, तो उस फंक्शन के याददाश्त में एक पौधा जरूर लगाना चाहिए।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया बात है। मुन्ना जी आज कौन सा गीत सुनना
1: जी,
0: चाहते हैं?
1: ये क्या बोलते हैं, ध्रुवाराम मरकाम दुखिया भाई के, परमानेंटली है, जतन करो धरती के संगी। गीत अच्छा है, काबर की एक हिसाब से एक प्रेरणा मिलते।
0: प्रकृति से जुड़ल है।
1: हाँ हाँ आए नहीं।
0: हाँ तो चलिए यही गीत ला मैं
1: हाँ
0: सुनवाता हूँ। और हमारे कार्यक्रम में फोन करें, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी भैया।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: गांवकर गीत कार्यक्रम में स्वागत है
1: हाँ भैया,
0: राउटर।
1: योगेश जी आंगड़े पे सिरवा बांधा पे मैं करा से। धन्यवाद
0: योगेश जी, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हाँ,
1: भैया।
0: और बताइए।
1: बढ़िया है भैया।
0: बढ़िया, गर्मी कर मजा ले थन।
1: हाँ
0: तो योगेश जी, देखिए भाई, हमन तो
1: हाँ
0: पानी खोज लेतन, लेकिन जो चराई चिड़िया मन है उमन तो पानी नहीं खोज पाए। तो मन खातिन
1: हाँ
0: व्यवस्था करना जरूरी है।
1: हाँ जरूरी है भैया। अपन व्यवस्था घर में भी कर सका था, वो करने चाहिए।
0: तो योगेश जी, आज कौन सा गीत सुनना चाहते
1: बढ़िया से कोई सा गीत सुनवा दे भैया।
0: हैं? बढ़िया सा गीत सुनवा। तो
1: हाँ
0: रोरे हमारे कार्यक्रम में फोन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: गांव का गीत कार्यक्रम में राहुल का स्वागत है।
1: राम राम भैया, जय जोहार।
0: जय जोहार।
1: सुरेश सारथी बोला था भैया, कुर्मी पारा पे में तरले।
0: हाँ सुरेश जी, स्वागत है हमारे कार्यक्रम गांव का गीत में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भीषण गर्मी पड़त है और गर्मी के नाम से घर ले लिख ले के अब हिम्मत नहीं होते भैया।
0: बहुत गर्मी है।
1: बहुत गर्मी है, 44, 45, 46 डिग्री तक जावत है तापमान है भैया। दोनों
0: हाँ
1: तरफ कैसे भैया गर्मी है।
0: उसने चे
1: सबो डर एक ही दे।
0: एक ही आ है। प्रकृति के बचाए पर का कर सकत हन, गर्मी
1: अब
0: झेन पड़े।
1: प्राकृतिक, अब प्राकृतिक ला बचाए खातिर भैया हमारा अधिक से अधिक ज्यादा जितना हो सके पेड़ लगाना चाहिए भैया।
0: बढ़िया बढ़िया।
1: अंधाधुन अभी पेड़ मन के कटाई होत है, मगर पेड़ ला कोनो लगा नहीं पावत है। पेड़ ला लगाते है तो वहाँ पानी नहीं डाल रहा है ना, तो पेड़ लगाना चाहिए था। एक से प्राकृतिक एकदम अपन समतल सीमा में रही, और पानी के जो दिक्कत होत है तेनो दिक्कत नहीं होही।
0: और गर्मी भी नहीं बाढ़ी।
1: बर पीपर के जो झाड़ है भैया, फलदार वृक्ष है, ओकर नीचे में बैठ बैठ कितना आनंद, कितना सुकून लगते भैया। आप हवा मिलते बढ़िया, ठंडा ठंडा एसी फैल है भैया ओकर सामने में।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो सुरेश जी, आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आज सुना दो भैया, ममता चंद्राकर के कोनो भी गीत ला, अच्छा संगीत ला सुना दो भैया।
0: बिल्कुल। तो रौरकर गीत ला मैं सुनवात हूँ। रौरे हमारे कार्यक्रम में फोन करें, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जौनपुर छपरा से।
1: हाँ विनय जी स्वागत है, बताइए। और
0: हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया
1: बढ़िया ठीक है।
0: हाँ अभी हाँ अब यही शादी विवाह का सीजन तो निकल कब हो से।
1: हाँ
0: और गर्मी अपन जोर पकड़ी से।
1: हो विनय जी हमन ऐसा कुछ कर सकत हन काहे कि जैसे हमर जो ग्राम सभा होते ना
0: जी
1: ओमे हमन ये साल जैसे ये बच्चर अपन ग्राम सभा में तय करी कि भाई हर घर में 2 गो पेड़ लगाना जरूरी है,
0: हाँ दादा हाँ दादा
1: तो ऐसा कुछ अभियान चलाते हैं भाई ग्राम सभा में बतियाए के कि ये साल 2 गो वृक्ष लगाना हर घर में अनिवार्य हो ही, तो एकर से क्या होगी कि पर्यावरण के भी रक्षा होगी और गर्मी भी कम होगी।
0: कम हो ये वातावरण भी ठीक रही नहीं तो इसे दादा हमन मोर जो गांव हर गांव तो चारों तरफ मतलब तीन तरफ खाना चाहिए पूरा जंगल से घिरे हुए बीच जो बस्ती है
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
0: गांव है बीच में चारों तरफ नाला भी है इससे पानी का तो अपन यहाँ दिक्कत नहीं हो। लेकिन ये है कि आपका सुझाव भी ठीक है कि कम से कम हर दो पौधा हर बस्ती पर लगाना चाहिए।
1: तो विनय जी आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: आवाज सुना दे कोई भी गीत ला।
1: चलिए तो राउर कर पसंद कर मैं गीत ला सुनवा। तो रोरे हमारे कार्यक्रम में फोन करें, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हाँ धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: गांव कर गीत कार्यक्रम में रावकर स्वागत है।
1: धन्यवाद। जय राम जी। जय राम।
0: जय राम, जय राम। और बताइए, नाम बताइए पहले।
1: मैं विनय तिवारी बात कर जी।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: गांव घर गीत कार्यक्रम में राहुल का स्वागत है।
1: और राम राम।
0: राम राम।
1: मैं सुपर स्टार रेडियो शो तक संग सारा साल से गरा जिला से चतर सारा जोड़े बात कर रहा
0: हाँ प्रेम साहब जी, स्वागत है भाई। और बताइए।
1: हूँ। ठीक है, घाम तो बहुत तेज है अभी, है ना। मैं ये कहूँ कि अभी तो घाम धूप से बचना चाहिए, है
0: बिल्कुल।
1: ना। अभी तो कुछ दिन ना थे कि नौतपा चालू हुई, कहीं भी अपन आना जाना करें तो अपन खा पी के ही चलना चाहिए, खाली पेट नहीं चलना चाहिए।
0: प्रेम साहब जी, तो और सब बढ़िया।
1: हाँ बढ़िया है सर। आए वाला आपका झंडा सब उसमें ये वाला गंगा तो सारा का बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, अग्रिम शुभकामनाएं हवे, है ना।
0: राउर मल्ला भी बहुत बहुत शुभकामना। बताइए।
1: सोमवार से चालू, सोमवार
0: अच्छा,
1: से चालू हो, मेली मेला लगे वो, है
0: बहुत बढ़िया बहुत
1: ना।
0: बढ़िया। आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? तो
1: तो आज गुलाब सिंह सकरा की आवाज में बढ़िया सा गीत बजा दी।
0: प्रेम साहब जी, डोरे फोन करें, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हाँ बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तोरी खोपा मा चंदैनी गोंदा फूल हवे वो, तोरी खोपा मा चंदैनी गोंदा फूल हवे वो। अब का सुन था।
3: अरे सुनाए डार,

0: हेलो
1: हेलो।
0: नमस्कार।
1: हाँ इंद्रवान जी, स्वागत है हमारे कार्यक्रम गांव कर गीत में।
0: और आपका कार्यक्रम से बढ़िया लग रही है। तो गर्मी बस में जाता हूँ और बस कुछ जानकारी देने ज्यादा। अभी गर्मी जो थे बहुत गर्मी पड़ा थे,
1: हो
0: लोग अपन बच्चा ध्यान दें, पानी पी और घर के जरूरी सभी घर के अंदर रहें और कूलर एसी का और ठंडा ठंडा हवा खा रहे हैं और
1: बिल्कुल।
0: पशु पक्षी में नहीं रखना है।
1: कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: वही तो हमारा मोदी का कोई
1: हो।
0: सुना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रभान जी।

0: हेलो,
1: हाँ हेलो।
0: गांव का गीत कार्यक्रम में राहुल का स्वागत है।
1: हाँ नमस्कार, वंदे मातरम सर।
0: वंदे मातरम।
1: मैं बनिया पारा धमतरेल बोला था भैया, रामचंद्र माखीजा काफिल भाई। यस
0: रामचंद जी, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: सर, धन्यवाद।
0: और बताइए।
1: बस सर, इधर तो गर्मी धूप तेज हो गए हैं, ऐसे लगते हैं जैसे तवा में रोटी सेकाई होते, वैसे मन के सेकाई होते सूर्य देवता के तापक्रम बढ़ गए।
0: भाई
1: हाँ,
0: तापमान तो मैं कहता तो हूँ हर साल बढ़ते जाते कि
1: रुख राई कटत जाते भैया, जंगल झाड़ी रहते, पेड़ पौधे रहते, तो सब चीज के फायदे होते। पेड़ पौधा कई किस्म के हमारे लगाना चाहिए, फलदार वृक्ष हो, छायादार वृक्ष हो, ओकर से मन खेला संतुष्टि मिलते और रुख राई तापक्रम में भी कमी आते।
0: बहुत बढ़िया बताए।
1: और पेड़ पौधा ले ही बादल बनते, सूर्य देवता अवशोषित करते जल, फिर बरसात करते जी।
0: बिल्कुल। और ये सबो जनकर जिम्मेदारी है नहीं।
1: सबों के जिम्मेदारी है सर। हाँ, और ये जिंदगी के उच्च रद्दा है, जाकर हमला चलना है, रुख
0: बिल्कुल।
1: राई लगाना है।
0: और देखिए अब बरसात आए वाला है तो अभी से हमन कार्यक्रम बना सकत हन।
1: हाँ, तो मैं छोटे रहूँ तो बहुत साल तक वो आमा की गुठली इकट्ठा करूँ और
0: बहुत बढ़िया।
1: पौधा उगते ओला फिर लगा जाऊँ मैं आजू बाजू।
0: बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया।
1: और
0: तो
1: एक गांव अमन गंगरेल में गया रहन, कॉलेज की तरफ से एनसीसी कैडेट के छात्र में रहन और कॉलेज ही पढ़त रहन, तो गंगरेल के बाजू में लगा रहे हैं वृक्ष, मन अब बहुत बड़े हो गए।
0: देख के बड़ा खुशी होते।
1: हाँ, देखने से बहुत अच्छा लगता है कि हमन बचपन में यहाँ पढ़त रहन कॉलेज टाइम में, आज इतना साल हो गए, पेड़ मन बड़े हो गए तो मन को संतुष्टि मिलते।
0: बहुत बढ़िया। तो रामचंद्र जी आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आज आप भैया आप मन सुना हो, कहाँ जात हो बड़ दूर है गंगा, मन के यहीं तरो, मोर संग चलो जी, मोर संग चलोगा।
0: बिल्कुल। ये गीत ला मैं सुनवात हूँ और हमारे कार्यक्रम में फोन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सर वंदे मातरम।

0: हेलो।
1: हाँ राम राम दिया।
0: राम राम।
1: हिंदी का अपने राजकुमार निभाने में लेते हैं दिया।
0: हाँ राजकुमार जी, स्वागत है भाई। और बताइए।
1: सब बढ़िया भी है। थे चढ़ के मंझनिया के घाम आमा तरी डोले ला उतार के जो गाना सुना रहे भैया।
0: बिल्कुल बिल्कुल। एक गाना ला मैं सुनवाता हूँ, और घामा तो आइए।
1: हाँ घाम तो ढेरे हो गए सर भैया, ढेरे पहाड़ी के तापमान बहुत बढ़ गए भैया।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: लगा 3 साल कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ा था भैया।
0: हाँ इस साल कुछ ज्यादा ही गर्मी बढ़ा
1: बीच
0: था।
1: बीच में
0: हाँ
1: जो पानी गिर जाते हैं नौकर ले फिर गर्मी बढ़ जाता है,
0: उमस बढ़ जाते हैं।
1: उमस बढ़ जाते हैं भैया।
0: तो चलिए भाई, बच के रहना है गर्मी से, स्वास्थ्य के ध्यान रखना है।
1: हाँ मतलब गर्मी से बच के रहना है भैया, पानी वानी खूब पीना है, मन के नींबू पानी सब ये सब जरूरी है गर्मी में भैया,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और धूप से अपन के बचना है भैया।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो राजकुमार जी, हमारे कार्यक्रम में फोन करें, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: राम राम भैया।

0: एही गीत के साथ अब कार्यक्रम से विदा दी। जय जोहार। एक कार्यक्रम कर प्रस्तुत करता रहीं प्रमेंद्र कुमार।
1: गांव कर
2: जी
3: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम गांव कर गीत। प्रस्तुति सहायक थे वशिष्ठ सिंह यादव और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रमेंद्र कुमार। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। श्रोताओं, सुबह 11:05 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद, और दिन में 12:30 पर आप सुनेंगे एक ही शीर्षक पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चयन। ईमेल की गूंज आप सुन सकेंगे दिन में 1:40 पर। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम

0: इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोग को समाप्त करने के लिए विश्व के सबसे बड़े स्क्रीनिंग और शुरुआती पहचान कार्यक्रम की शुरुआत की है। श्री नड्डा ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र के दौरान फेफड़ों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग पर मंत्री स्तरीय दृष्टिकोण विषय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विभिन्न राजमार्गों की गुणवत्ता और रखरखाव प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री गडकरी ने संपर्क और यात्रियों की सुविधा के लिए सतत और सक्षम राजमार्ग हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी और समय पर कार्यान्वयन किए जाने पर बल दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द करके सभी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने, धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई रिपोर्टें मिली थी। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनर्मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु में आज मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार में 23 मंत्रियों को शामिल किया जा रहा है। इनमें 3 नई महिला मंत्री भी शामिल हैं। सरकार में पहले से ही 9 मंत्री हैं, जिनमें एक महिला मंत्री सुश्री कीर्तना भी शामिल हैं। अब कैबिनेट में कुल 32 मंत्री हो जाएंगे, जिनमें कांग्रेस के 2 सदस्य भी शामिल हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर चेन्नई के लोकभवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 627 अंक की उछाल के साथ 75,945, जबकि निफ्टी 200 अंक बढ़कर 23,859 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 11:05 हुए हैं। अब पेश है फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं, शबनम।

प्रेम नगर। इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत दिया था SD बर्मन ने, और इस गीत के लिए आप सभी ने हमें अपनी अपनी फरमाइशें पोस्ट कार्ड के जरिए लिख भेजी हैं। पिपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी, योगिता, नितिन और वंशिका दिवाकर, ग्राम धुर्राबांधा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू और युवराज साहू, दिल्ली मोरीगेट से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू रविंदर और यहीं से खुशी रौनक सेन, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा, बिमितरा से सुरेश सारथी और पूर्णिमा सारथी। फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। श्रोताओं, कार्यक्रम के ही दौरान कार्यक्रम का पता भी हम जरूर बताते हैं, तो आप तैयार रखिएगा कागज और कलम, ताकि हमारे वे श्रोता जो कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं या उन्हें इस कार्यक्रम के बारे में पहले से पता नहीं था, तो वे भी इस कार्यक्रम में अपनी अपनी फरमाइशें किस तरह भेजें हम जरूर बताएंगे। सुनते रहिए आकाशवाणी अंबिकापुर।

0: साथ ही फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। मजरू के बोल थे, संगीत दिया था नौशाद ने। और अब आप सुनेंगे किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म अमर प्रेम से ये गीत, शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत आर डी बर्मन का। और इन दोनों ही गीतों की मिली जुली फरमाइश कुछ इस तरह है। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत, प्रणीता, अर्जुन गवाणकर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गवाणकर, सुमित, ध्वनि गवाणकर। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र, पूजा विक्की, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, कुमारी देविका, गणेश, कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे और ललिता नारायण खर्चे। सिहावा पर्वत अंचल से ग्राम बेलरगांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु, अंकित और इनके परिवार के सभी सदस्य। हरदेव लाल पारा वार्ड सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू, सनी, कोमल यादव। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। और ग्राम पहारा अहिवारा जिला दुर्ग से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति और छाया बंछोर।
1: ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए।

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया। कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
3: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद, और आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं, शबनम। श्रोताओं, हमने कुछ देर पहले आपसे ये कहा था कि आप कागज और कलम लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि कार्यक्रम के दौरान ही कार्यक्रम का पता हम जरूर बताते हैं। तो नोट कर लीजिए हमारे इस कार्यक्रम यानी आपकी पसंद का पता। आपको लेना है एक पोस्ट कार्ड और उस पर लिखना है सबसे पहले कार्यक्रम का नाम, आपकी पसंद, द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 27, आकाशवाणी अंबिकापुर, पिन है 49701। तो रहिए नमन महसूस कर, भेज दीजिए हमें अपनी भी फरमाइशें दिल खोलकर, और सुनते रहिए आकाशवाणी अंबिकापुर।

आशा भोसले, किशोर कुमार और अमित कुमार को अभी आप सुन रहे थे फिल्म कस्मे वादे में। गुलशन बावरा के लिखे इस गीत के लिए संगीत दिया था आर डी बर्मन ने और फरमाइश लिख भेजी थी आप सभी श्रोताओं ने। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या, हेमलता और डिम्पल देवांगन। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति और धनक्ष आरू साहू। खेरपा बाजार बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतरी बाई, मोतीमबाई और इनके परिवार के सभी सदस्य। बेरड़ी से हुकुम करमकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु करमकर। फिल्म संगीत

0: चितचोर फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे यसुदास की आवाज़ में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे फिल्म सच्चा झूठा से ये गीत। इंदिवर के बोल हैं, संगीत कल्याण जी आनंद जी का, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, और इन दोनों ही गीतों की मिली जुली फरमाइश कुछ इस तरह है। जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल कुमार धंजे, शीला और गायत्री धंजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा, नीतू और परिवार के सभी सदस्य। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथलेश, सूरज, ज्योति और इनके बहुत सारे साथी। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, मिलिंद दोवेश, अंबिका और योगिता नेताम। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदुलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश, नेहा और वान्या सिंगरौल।
1: यूं ही तुम

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौरा

0: डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 077774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 077774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: चलो ख्वाबों को हकीकत बनाएं, सिर्फ अपनों की नहीं गैरों की भी दुनिया महकाएं। मुस्कुराहट बांटें, खुशियां बांटें और बांटें हम सुख दुख सारे घर आंगन के फोन इन के सहारे। घर आंगन में मन की बातें बतियाएं, मनपसंद गीतों का आनंद पाएं। इसके लिए हमें फोन लगाएं हर शनिवार सुबह 10:30 बजे से 11 बजे के बीच। हमारे नंबर हैं 231-917 और 231-918, कोड है 077774 और कार्यक्रम है आप सभी का पसंदीदा फोन इन कार्यक्रम बात करें गीत सुने।
3: मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को अभी आप सुन रहे थे फिल्म इज्जत में। साहिर के बोल थे, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम आपकी पसंद में अब आप सुनेंगे फिल्म यादों की बारात से ये गीत। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार की, शब्द रचना मजरू की, संगीत आर डी बर्मन का, और इन दोनों ही गीतों की मिली जुली फरमाइश कुछ इस तरह है। इस्लामपुरा सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, रमेश गौंड, बेबी मंतशा, मोहम्मद शादाब खत्री। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां। सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता और मुस्कान मालाकार। कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, प्रियंका, पूजा, लीलू, रितु सिंह और ऋषभ सिंह। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गाव्या और भाई सुच्चा पाठक। ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिवकुमार अंगारे, अंजनी, त्रयंबिका, लीना, अंशुमाला और आशुतोष अंगारे।

मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार को अभी आप सुन रहे थे फिल्म यादों की बारात में, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। 11:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। दिन के 11:55 हुए हैं। अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ शासन ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए प्रदेश भर में निगरानी और जांच समितियों का गठन किया है। भारतीय सेना ने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है और आकाशवाणी द्वारा कल रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए प्रदेश भर में निगरानी और जांच समितियों का गठन किया है। ये समिति अशासकीय स्कूलों में फीस बढ़ोतरी तथा पुस्तक गणवेश क्रय की शिकायतों की निगरानी करेगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि शासन के संज्ञान में ये बात आई है कि छत्तीसगढ़ में संचालित अशासकीय स्कूलों द्वारा पालकों को पुस्तक गणवेश और अन्य सामग्री किसी एक ही फॉर्म से खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। फॉर्म के अप्रत्याशित दाम की वजह से पालकों पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। पालकों की शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए जिला और विकासखंड स्तर पर निगरानी और जांच समितियों का गठन किया गया है। देश भर में आज आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा की संस्कृति से दूर करना है। इस अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी दिन वर्ष 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी आतंकवादियों के षड्यंत्र का शिकार हुए थे। भारतीय सेना ने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है।

0: विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित ये ऑनलाइन परीक्षा आगामी 1 जून से 5 जून तक और इसके बाद 8 जून से 12 जून तक आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ के 5 प्रमुख शहरों भिलाई, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में इसके लिए कुल 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां प्रत्येक दिन परीक्षा का आयोजन 3 से 4 शिफ्टों में किया जाएगा। सभी पंजीकृत उम्मीदवार भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य राष्ट्र की साझा विरासत को पुनर्जीवित करना और उन आदर्शों के साथ एक नया जुड़ाव स्थापित करना है। यह प्रतियोगिता फिल्म निर्माताओं, रचनाकारों और नागरिकों को समकालीन प्रारूपों के माध्यम से वंदे मातरम की भावना को नए सिरे से प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है, में रील्स, एआई आधारित फिल्में और लघु फिल्में शामिल हैं। विभिन्न श्रेणियों में 50 लाख रुपए तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा कल 22 मई को रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम शांतिनगर स्थित विमतारा ऑडिटोरियम में शाम 6:30 बजे से आयोजित किया जाएगा। 2 सत्रों में होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान सुगम संगीत और उपशास्त्रीय प्रस्तुतियां होंगी। पद्मश्री मदन चौहान सुगम संगीत कार्यक्रम पेश करेंगे, वहीं श्वेता शिवाले द्वारा उपशास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति दी जाएगी। आकाशवाणी रायपुर के उपमहानिदेशक तथा क्लस्टर प्रमुख वी राजेश्वर ने बताया कि आकाशवाणी ने लोक प्रसारक के रूप में पिछले 90 वर्षों में उल्लेखनीय कार्य किया है। इस दौरान आकाशवाणी ने सूचना, शिक्षा, समाचार, मनोरंजन के माध्यम से अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की परिकल्पना को साकार करने का काम किया है। आकाशवाणी केंद्र रायपुर ने भी स्थानीय संस्कृति, लोक कला, शिक्षा, समाचार और मनोरंजन को गांव-गांव तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। जांजगीर चांपा जिले के खोखसा ओवरब्रिज के ऊपर बीती शाम तेज रफ्तार एक चार पहिया वाहन के अनियंत्रित होकर पलट जाने से एक छात्र सहित 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक अन्य छात्र घायल हो गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ शासन ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए प्रदेश भर में निगरानी और जांच समितियों का गठन किया है। भारतीय सेना ने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है और आकाशवाणी द्वारा कल रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं। अब प्रस्तुत है एनसीईआरटी और सीआईईटी द्वारा प्रस्तुत प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग।

0: सबदंग। सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। आइए सुनते हैं क्या लिखा है।
2: सुंदरता हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छाई हमेशा सुंदर होती है। महत्वपूर्ण होना ही अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छा होना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।
3: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए आपको हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है आर्यनगर कोहका भिलाई से। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ साथ धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शगुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल लिखते हैं।
2: उमंग कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होता है, पर आज हम एक बधाई मेल को छत्तीसगढ़ी में भेज रहे हैं। हमारे मेल को जरूर शामिल करें, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते हैं,
3: अक्ति तिहार के पावन दिन मा उमंग एनसीईआरटी सुख समृद्धि और नेकी के बीजा हमें

0: हमेशा फलत फूलत रहे।
1: उमंग एनसीईआरटी के साथ सभी श्रोता मित्रों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।
0: आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपनी क्षेत्रीय भाषा में हमें बधाई संदेश भेजा है।
1: जी,
0: अगला संदेश हमें मिला है
1: विलेज तेहका बजरंग चौक से चौलेश कौशल्या नवरंग, लकी और ऋषि नवरंग।
0: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने लिखा है
1: एनसीईआरटी के सभी कार्यकर्ताओं को राधेश्याम पांडे के परिवार की तरफ से सादर नमस्कार।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
1: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना और प्रियल।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत श्रृंखला ये भी जानिए में। और आइए अब सुनते हैं इसकी अगली कड़ी।
1: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी अमेजन के वर्षा वनों के बारे में, तो अजीत जी आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन अमेजन की।
1: जी,
0: आज हम सैर करेंगे भारत के सबसे बड़े वर्षा वन पश्चिमी घाट की, जिसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं।
1: जी,
0: हरियाली, वन्य जीवों और जैव विविधता से भरपूर वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट।
1: जी,
0: तो शुरू करें?
1: जी जरूर, चलिए मैं करती हूँ शुरुआत।
0: जी
1: श्रोताओं, पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा प्राचीन और घना वर्षा वन है। अनुमान है कि इसकी आयु लगभग 16 करोड़ साल है, यानी हिमालय से भी 3 गुना पुराना। और अब जानते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अजीत जी, अब आपकी बारी।
0: जी श्रोताओं, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होता हुआ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल होते हुए तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
1: जी,
0: यहाँ सालाना वर्षा 2000 से 7000 मिलीमीटर तक होती है।
1: जी हाँ श्रोताओं, इसलिए यहाँ पर हर समय हरियाली बनी रहती है। यही कारण है कि यहाँ के जंगलों को सदाबहार भी कहा गया है।
0: जी, शोधों में पाया गया है कि पश्चिमी घाट में लगभग 7000 से भी अधिक पौधों की प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनमें ऊंचे ऊंचे सदाबहार वृक्ष, औषधीय पौधे और मसालों के पौधे विशेष रूप से जाने जाते हैं।
1: यदि मसालों की बात करें तो यहाँ काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी की भरमार है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट को भारत के मसालों की वाटिका भी कहा जाता है।
0: और चाय एवं कॉफी का तो कहना ही क्या, यहाँ के बागानों में उगने वाली चाय और कॉफी विश्व स्तरीय मानी जाती है और इनकी मांग दुनिया भर में बहुत अधिक है।
1: श्रोताओं, जहाँ तक प्राकृतिक सुंदरता का प्रश्न है, यहाँ की सुंदरता का कोई सानी नहीं है। मुनार और कुर्ग जैसे स्थान मानो पृथ्वी के स्वर्ग हैं।
0: और नीलगिरी के उदक मंडलम जैसे सुरम्य स्थान यानी ऊटी के बारे में भला कौन नहीं जानता।
1: जी,
0: यही वो अनोखी जगह है जहां विश्व प्रसिद्ध नील कुरिंजी के फूल खिलते हैं।
1: जी,
0: अद्भुत बात ये है कि 12 वर्षों में ये एक बार खिलते हैं। पिछली बार ये फूल सन 2018 में खिले थे और अब सन 2030 में इनके खिलने की संभावना है।
1: वहाँ के जनजातीय लोग नील कुरंजी के फूलों के खिलने के समय के अनुसार अपनी उम्र बताते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना रहता है। पश्चिमी घाट की एक बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ के शोला वन यानी शोला फॉरेस्ट।
0: श्रोताओं, शोला वन उन्हें कहते हैं जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में घास के मैदान होते हैं और बीच बीच में छोटे छोटे जंगल होते हैं। इन जंगलों के पेड़ बहुत ऊँचे नहीं होते।
1: शोला वनों को देखने से ऐसा लगता है मानो घास के बहुत बड़े मैदान में किसी ने छोटे छोटे जंगलों के टुकड़े रख दिए हों। इसका कारण है यहाँ की मिट्टी। एक ही मैदान में मिट्टी की ऐसी विविधता है कि कहीं सिर्फ घास ही उगती है और कहीं छोटे छोटे पेड़।
0: ये तो बड़ी रोचक बात है। और श्रोताओ, आइए जानते हैं शोला वन के बारे में कुछ और बातें। शोला वन वर्षा के पानी को धीरे धीरे संचित करते हैं और फिर उन्हें छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में छोड़ते हैं। यही धाराएं मिलकर बड़ी बड़ी नदियां बनाती हैं। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और पेरियार नदी इनका उदाहरण है।
1: इसीलिए शोला वनों को प्रकृति का जल भंडार भी कहते हैं। एक और तथ्य हम आपसे साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि अक्सर कहा जाता है
0: यहाँ के पेड़ दूसरे पेड़ों का पोषण भी करते हैं। आइए जानते हैं वो भला कैसे।
1: वो ऐसे कि यहाँ के बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं और उन जड़ों से फंगस के जाल के जरिए छोटे छोटे पेड़ों की जड़ें भी जुड़ जाती हैं। बड़े पेड़ अपनी जड़ों से छोटे छोटे या कमजोर पेड़ों और पौधों को पोषण भी देते हैं। इसलिए इन पेड़ों को बड़े आदर से मातृ वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि पोषण करके एक माँ की भूमिका निभाते हैं।
0: तो श्रोताओ, पश्चिमी घाट के वर्षा वन भारत की जलवायु के इंजन भी माने जाते हैं। ये न सिर्फ वर्षा लाते हैं लेकिन असंख्य जीवों के भी शरण स्थान है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न हमारी आज की ही जानकारी से। तो हमारा आज का प्रश्न है, मातृवृक्ष किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
0: 8800-440-559 यानी हमारे IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक

0: फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम पड़ोसी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम बताता है कि एक अच्छा पड़ोसी वही होता है जो हर सुख दुख में हमारे काम आए और सबके साथ प्रेम एवं सहयोग की भावना के साथ पेश आए।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक शहनाई के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम पड़ोसी।

कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी।

0: एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है।
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिलजुल कर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने दो अंडे दिए और उन अंडों से दो नन्हे मुन्ने खूबसूरत बच्चे निकले।

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की चीं चीं की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काएं काएं करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पड़ोसी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी। इस कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है जंगल के साथी।
2: इस कार्यक्रम में जंगल के पशु पक्षियों के बीच मित्रता और सद्भाव की भावना को एक सुंदर नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि परस्पर प्रेम और सहयोग यदि हमारे जीवन में हो तो हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं।

0: दादी माँ दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी। चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
1: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूँ। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
1: हाँ सुनाती हूँ दीपू। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन। क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
0: दादी माँ एक हिरन।
1: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
0: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
1: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं, उछलता रहता कभी।

0: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं। अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
1: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
2: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
1: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
2: हरी हरी वो घास था खाता।
1: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
2: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
0: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा। है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती। है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
2: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा। हम दोनों मिलकर खेलेंगे, घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: साथी ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला।
1: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे, आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
1: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना। क्या हुआ?
2: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
1: बादल देखे, फिर दादी माँ?
2: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा।

0: सुंदर मोर क्या दिखा दीपू?
1: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
0: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर, नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
1: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
2: हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
1: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए। फिर
0: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों
1: यानी खरगोश, हिरन और मोर।
0: शाबाश। तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
1: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
0: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
1: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम, मिलकर रहेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
0: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पेड़ हमारे दोस्त।
4: इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को बताया गया है कि हमारे जीवन में पेड़ों का कितना महत्व है। बच्चों को पेड़ पौधों की देखभाल करने और वृक्षारोपण के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।
5: किशनपुर गांव में अटकू मटकू नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। दोनों कोई काम नहीं करते थे और सारा दिन इधर उधर घूमते रहते। कभी कभार तो वो गांव से लोगों की मुर्गियां चोरी कर बाजार में बेच देते और जो पैसा मिलता उससे मन मर्जी का खाते पीते। उनकी इस हरकत से सारा गांव परेशान था। एक दिन अटकू के दिमाग में एक युक्ति सूझी। वो मटकू से बोला,
6: अरे भाई मटकू, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम जंगल में चलकर पेड़ काटें और उसकी लकड़ी बेचकर जो पैसे मिले उससे हम खूब मजे करें।
7: अरे वाह अटकू भाई, तुमने तो बड़े काम की बात बोल दी।
6: हाँ।
7: फिर कोई हमसे झगड़ा भी नहीं करेगा कि हमने उनका कोई सामान बिना पूछे ले लिया। चलो जल्दी से जंगल में चलते हैं और लकड़ी काट कर लाते हैं।
6: हाँ, बहुत सारी लकड़ी काट कर लाएंगे
7: और बहुत सारे पैसे कमाएंगे।
6: हाँ। अरे भाई मटकू, वो देखो आम का पेड़। इसके मोटे मोटे तने बेचकर हमें कितना अच्छा पैसा मिलेगा।
7: बिल्कुल सही कहा अटकू, इसे काट।
8: भाई मुझे मत काटो, मैं तुमको मीठे मीठे आम दूंगा जिनको खाकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, और इसके लिए तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे।
7: अच्छा चल अटकू, आम का पेड़ नहीं काटते, कोई और पेड़ देखते हैं। चल
6: चल।
5: अटकू मटकू को आम के पेड़ की बात पसंद आ गई और वो आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बरगद का बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया और उसे देखते ही दोनों की आंखों में चमक आ गई। जैसे ही वे बरगद के पेड़ को काटने लगे, पेड़ उनसे बोला,

0: रुको रुको रुको रुको, काटो मत मुझे, काटो मत मुझे, छाया दूंगा तुम्हें, छाया दूंगा तुम्हें मैं।
1: अच्छा चलो कोई और पेड़ ढूंढते हैं।
2: हाँ अटकू, चल आगे चलते हैं।
3: जंगल में कुछ आगे बढ़े ही थे,
2: अरे अटकू भाई वो देख, कटहल का एक पेड़।
1: अरे वाह क्या लंबा चौड़ा पेड़ है, वो भी कटहल से लदा हुआ।
3: वो उसे काटने लगे।
4: काटो मत मुझे, काटो मत मुझे, कटहल दूंगा तुम्हें, तुम्हें मैं कटहल दूंगा।
1: अच्छा ठीक है,
2: चलो अटकू आगे बढ़ते हैं।
3: आगे जाने पर उन्हें एक नीम का पेड़ दिखा। वे दोनों नीम के पेड़ को काटने लगते हैं।
0: ना, क्या मिलेगा काट कर मुझे, अरे जीने दो, मैं तुम्हें हवा दूंगा। अगर हम पेड़ ना होंगे तो जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी तुम्हें।
2: हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये पेड़।
3: अब अटकू मटकू सोच में पड़ गए कि पेड़ पौधों से हमें छाया, फल, सब्जियां आदि बहुत कुछ मिलता है। पेड़ तो हमारे दोस्त हैं, इसलिए हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए बल्कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। दोनों वापस गांव पहुंचे और उन्होंने अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। अब वे रोज बगीचे में जाने लगे और पेड़ पौधों की देखभाल करने लगे। अटकू मटकू में आए इस बदलाव को देखकर गांव वाले बहुत हैरान थे।
5: अरे वाह अटकू मटकू,
3: जब भी कोई उनसे पूछता कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो तो वो सामने से मुस्कुराते हुए जवाब देते,
1: पेड़ हमारे
6: दोस्त हैं।
1: जीवन में हरियाली लाओ,
6: पेड़ लगाओ,
7: पेड़ लगाओ।
8: पेड़ हमारे दोस्त, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
9: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
8: नमस्कार।
10: उमंग उमंग उमंग उमंग।
11: अभी आप सुन रहे थे NCERT और CIET द्वारा प्रस्तुत प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 12:30 हुए हैं। अब पेश है एक ही शब्द पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चयन, और आज का वो खास शब्द है कुछ।

जी हाँ श्रोताओं, आपने भी कई बार ऐसा कहते सुनते ज़रूर सुना होगा कि कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। कुछ आज का चयन कार्यक्रम का हमारा खास शब्द है। कुछ बातें शब्दों में नहीं, सिर्फ एहसासों में समझ में आती हैं। कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते, वे तो बस दिलों में चुपचाप बस जाते हैं। कुछ मुस्कुराहटें ऐसी होती हैं जो थके हुए मन को भी उजाला दे जाती हैं। कुछ लोग जीवन में ऐसे आते हैं जो भीड़ में भी अपनापन महसूस करा जाते हैं। कुछ शब्द, कुछ धुन, कुछ पल खो गए हम।

रहे हैं एक ही शब्द पर आधारित फिल्म गीतों का कार्यक्रम चयन, और आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं शबनम। आज का खास शब्द जो हमने चुना है वो है कुछ। कुछ पल बहुत छोटे होते हैं लेकिन वही जीवन की सबसे बड़ी याद बन जाते हैं। कुछ रास्ते कठिन जरूर होते हैं, बहुत सारी चुनौतियां भी होती हैं, और कई बार हमारे मन में गाहे बगाहे ये बातें भी कौंधती हैं कि लोग क्या कहेंगे। जब आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप ये जरा भी न सोचें कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि

तो सुना ना आपने कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इन बातों को ध्यान नहीं देना है। हम आपको सुनवा रहे हैं खास शब्द कुछ पर आधारित गीत। कार्यक्रम है चयन। दोस्तों, कुछ रास्ते कठिन जरूर होते हैं, पर वही रास्ते इंसान को मजबूत बनाना भी सिखाते हैं और मजबूत भी इंसान बनकर अपना अनुभव औरों को भी देता हुआ हमेशा नजर आता है। और सच तो ये है कि जीवन सब

मजबूत बनाना भी सिखाते हैं और मजबूत भी इंसान बनकर अपना अनुभव औरों को भी देता हुआ हमेशा नजर आता है। और सच तो यह है कि जीवन सब कुछ पाने में नहीं बल्कि उन कुछ खूबसूरत पलों को महसूस करने में बसता है जो मन को सुकून और चेहरे को मुस्कान दे जाए।

0: कार्यक्रम चयन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। और आज चयन कार्यक्रम में हमने चुना है खास शब्द कुछ को। दोस्तों, कभी कभी इस कुछ के आगे शब्द भी कम पड़ जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि कुछ एहसास इतने मखमली होते हैं कि उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, शब्दों के तराजू में तोला नहीं जा सकता। कुछ शामें ऐसी होती हैं जो ढलती हैं, कुछ दिन ऐसे होते हैं जो गुजरते हैं, मगर अपने पीछे ढेरों मीठी यादों का उजाला छोड़ जाते हैं। कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो अजनबी होकर भी अपनी सी लगती हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, कुछ कुछ आपको हम कहते रहेंगे और आप हमें सुनते रहिए।
1: कुछ हमको
2: क्या
1: कुछ तुमको

0: अरे यार, ये रेडियो को क्या हुआ? आवाज साफ ही नहीं आ रही। ये खरखर की आवाज कैसी है?
1: अरे बुद्धू, एंटीना नहीं, अपना अंदाज बदलो। अब अंबिकापुर रेडियो पुरानी यादों से निकलकर आपके कानों में जादू करने आ गया है।
0: मतलब
1: अब आकाशवाणी अंबिकापुर सुनिए 100.2 FM पर।
2: यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, पर हमसे पंगा मत लेना मेरी जान।
0: अरे वाह, ये तो एकदम साफ है, जैसे कोई कान में गा रहा हो।
1: यही तो है FM 100.2 की स्टीरियो क्वालिटी। अब सुबह की भक्ति हो या शाम के गाने, आवाज मिलेगी बिल्कुल मक्खन जैसी साफ।
3: अच्छा, तो अभी ट्यून करता हूँ
4: आकाशवाणी अंबिकापुर 100.2 FM। आवाज वही, अंदाज नया।
5: मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। 12:55 आप सुन रहे हैं एक ही शब्द पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चयन, और आज हमने चुना हुआ है खास शब्द कुछ। जिंदगी में सब कुछ पा लेना ही कामयाबी नहीं होती है दोस्तों। कभी कभी किसी के लिए कुछ छोड़ देना, किसी की उदासी में उसका कुछ बोझ बांट लेना और कुछ उनको उनकी बातों को सुन लेना, उनकी उदासी को दूर कर देना भी बहुत कुछ होता है। यही इंसान होने का सबसे सुंदर एहसास होता है। जैसे सुलगती दोपहर में अचानक नीम की घनी छांव मिल जाए तो फिर बात ही क्या। हम कहते हैं ना कि कुछ देर छांव में बैठकर आराम तो मिला,

0: कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, लेकिन अब कार्यक्रम का समय हो रहा है। श्रोताओं, तो हमें तो कुछ कहना ही होगा। आप सुन रहे थे कार्यक्रम चयन, और आपने जिन फिल्मों के गीत सुने वे थे कल हो ना हो, अमर प्रेम, कुछ कुछ होता है, अलग अलग, और 1942 ए लव स्टोरी। आवाजें रही अलका याग्निक, शान, किशोर कुमार, उदित नारायण, लता मंगेशकर और कुमार सानू की, और ये कार्यक्रम आपके लिए पेश किया शबनम ने। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन का 1 बजने को है समाचार, कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कोन ओह यूल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
2: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में नंबर 1 बनाना है। नई दिल्ली में भारत में अमरी

0: की वाणिज्य मंडल के वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश का ऑटोमोबाइल उद्योग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है जिसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका 79 लाख करोड़ के साथ पहले स्थान पर जबकि चीन 49 लाख करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां AI स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोधन और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम में श्री नड्डा ने ये बात कही। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में वृद्धि के साथ खुले, लेकिन बाद में इसमें गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 232 अंक की गिरावट के साथ 75,087, जबकि निफ्टी 34 अंक गिरकर 23,625 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है खेती की बात का पुनः प्रसारण। सामयिक जानकारी का विषय है जैविक खेती के मूलभूत सिद्धांत।
2: जैविक खेती के मूलभूत सिद्धांत। किसान भाइयों, आज की खेती की बात में आपसे बातचीत इसी विषय को लेकर। संपूर्ण विश्व में बढ़ती हुई जनसंख्या एक गंभीर समस्या है। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ भोजन की आपूर्ति के लिए मानव द्वारा खाद्य उत्पादन की होड़ में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए तरह तरह की रासायनिक खादों, जहरीले कीटनाशकों का उपयोग, प्रकृति के जैविक और अजैविक पदार्थों के बीच आदान प्रदान के चक्र को इकोलॉजी सिस्टम प्रभावित करता है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति खराब हो जाती है। साथ ही वातावरण प्रदूषित होता है तथा मनुष्य के स्वास्थ्य में गिरावट आती है। अब हम रासायनिक खादों, जहरीले कीटनाशकों के उपयोग के स्थान पर जैविक खादों, दवाइयों का उपयोग कर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे भूमि, जल एवं वातावरण शुद्ध रहेगा और मनुष्य एवं प्रत्येक जीवधारी स्वस्थ रहेंगे। भारतवर्ष में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। हरित क्रांति के समय से बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए एवं आय की दृष्टि से उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। अधिक उत्पादन के लिए खेती में अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग करना पड़ता है, जिससे सीमांत और छोटे कृषक के पास कम जोत में अत्यधिक लागत लग रही है और जल, भूमि, वायु और वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। साथ ही साथ खाद्य पदार्थ भी जहरीले हो रहे हैं। सभी समस्याओं से निपटने के लिए पिछले वर्षों में निरंतर टिकाऊ खेती के सिद्धांत पर खेती करने की सिफारिश की गई है। अब हम बात करते हैं जैविक खेती पर। कृषि की यह वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों के अप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है तथा जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाए रखने के लिए फसल चक्र,

0: हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग करती है। जैविक खादों के प्रयोग से मृदा का जैविक स्तर बढ़ता है, जिससे लाभकारी जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है और मृदा काफ़ी उपजाऊ बन जाती है। जैविक खाद पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक खनिज पदार्थ प्रदान कराते हैं, जो मृदा में मौजूद सूक्ष्म जीवों के द्वारा पौधों को मिलते हैं, जिससे पौधे स्वस्थ बनते हैं और उत्पादन बढ़ता है। रासायनिक खादों के मुकाबले जैविक खादें सस्ते, टिकाऊ तथा बनाने में आसान होती हैं। इनके प्रयोग से मृदा में ह्यूमस की बढ़ोतरी होती है और मृदा की भौतिक दशा में सुधार होता है। पौध वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तथा काफ़ी मात्रा में गौण पोषक तत्वों की पूर्ति जैविक खादों के प्रयोग से ही हो जाती है। कीटों, बीमारियों तथा खरपतवारों का नियंत्रण काफ़ी हद तक फसल चक्र, कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं, प्रतिरोध किस्मों और जैव उत्पादों द्वारा ही कर लिया जाता है। जैविक खादें सड़ने पर कार्बनिक अम्ल देती हैं, जो भूमि के अघुलनशील तत्वों को घुलनशील अवस्था में परिवर्तित कर देती है, जिससे मृदा का पीएच मान 7 से कम हो जाता है। अतः इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है। यह तत्व फसल उत्पादन में आवश्यक है। इन खादों के प्रयोग से पोषक तत्व पौधों को काफ़ी समय तक मिलते हैं। यह खादें अपना अवशिष्ट गुण मृदा में छोड़ती हैं, अतः यह एक फसल में इन खादों के प्रयोग से दूसरी फसल को लाभ मिलता है। इससे मृदा उर्वरकता का संतुलन ठीक रहता है। जैविक खेती के मूलभूत सिद्धांत की जब बात हो रही हो तो हमें जैव उर्वरक उपयोग विधि को भी जान लेना आवश्यक है। अब अगर हमें बीजोपचार करना है तो 200 ग्राम नत्रजन स्थिरीकरण उर्वरक एवं 200 ग्राम पीएसबी जैव उर्वरक 300 से 400 मिलीलीटर पानी में अच्छी तरह मिला लें। इस घोल को 10 से 12 किलो बीजों पर डालकर हाथ से तब तक मिलाएं जब तक कि समस्त बीजों पर समान परत न चढ़ जाए। अब इन बीजों को छायादार एवं हवादार स्थान पर सूखने के लिए रख दें। इसी तरह मृदा उपचार की अगर बातचीत की जाए तो मृदा उपचार कुल लगाए जाने वाले पौधों की संख्या पर निर्भर करता है। 2 से 4 किलो एजेटोबैक्टर एवं 2 से 4 किलो पीएसबी 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। इन दोनों प्रकार के जैव उर्वरकों को 2 से 4 लीटर पानी में अलग अलग मिलाकर 50 से 100 किलो की कंपोस्ट के अलग अलग ढेरों पर छिड़काव करें। दोनों ढेरों को अलग अलग मिलाकर पूरी रात के लिए छोड़ दें। 12 घंटे बाद दोनों ढेरों को आपस में अच्छी तरह मिला लें। खेतों में बोई जाने वाली फसलों के लिए पूरे खेत में बुआई से पहले इस मिश्रण को अच्छी तरह छिड़क दें। आलू और गन्ने की फसल में जैव उर्वरक उपचार किया जा सकता है। पहली बार बुआई के समय कंदों और गन्ने के टुकड़ों को जैव उर्वरक घोल में डुबोकर उपचारित करें तथा दूसरी बार मिट्टी चढ़ाते समय अंकुरित पौध जड़ों के पास डालकर मिट्टी चढ़ा दें। इस प्रकार किसान भाई अगर जैविक खेती करना चाहते हैं तो जैविक खेती के इन सब मूलभूत सिद्धांतों की जानकारी रखना आवश्यक है।
1: जैविक खेती के मूलभूत सिद्धांत, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे खेती की बात। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:10 हो चुके हैं। बहनों के लिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम घर आंगन।

नमस्कार बहनों, आकाशवाणी के घर आंगन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो सखी रितु सिंह। बहनों, हमारा देश अनेक रंगों, भाषाओं, परंपराओं और संस्कृतियों से मिलकर बना एक सुंदर गुलदस्ता है। इसकी विविधता ही हमें जोड़कर रखती है, आगे बढ़ाती है और अनेकता में एकता व प्रेम का संदेश देती है। भारत की पहचान उसकी विविधता ही है। यहाँ अलग अलग भाषाएं हैं, अलग पहनावे, अलग त्यौहार हैं, लेकिन दिलों में एक ही भावना है, वो है अपनेपन की। और महिलाओं में तो यह अपनेपन का भाव प्रधान होता है। एक महिला जब अपने घर में बच्चों को संस्कार देती है, तब वह केवल परिवार की सोच से नहीं, वह तो पूरे समाज का भविष्य गढ़ती है। बहनों, माँ ही सर्वप्रथम अपने बच्चों को प्रेम, सहिष्णुता और दूसरों का

सम्मान करना सिखाती है, तभी वे बच्चे आगे चलकर समाज में शांति और भाईचारे के वाहक बनते हैं। आज की व्यस्ततापूर्ण दिनचर्या में कहीं ना कहीं वो भाव, वो संवेदनाएं, वो संवाद पीछे छूट रहे हैं, जिनके अभाव में आपसी दूरियां बढ़ रही हैं और संवेदनाएं घट रही हैं। बहनों, आज के समय में संवाद की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। छोटी छोटी बातों पर बढ़ती दूरियां, कटुता और असहिष्णुता सामाजिक ढांचे को कमजोर कर रहे हैं। ऐसे समय में हम महिलाएं रिश्तों को जोड़ने वाली व आपसी सद्भाव बढ़ाने की सबसे मजबूत कड़ी बन सकती हैं। हम परिवार में संवाद बढ़ाकर बच्चों को सही सीख दें और समाज में सहयोग की भावना विकसित कर सकारात्मक परिवर्तन लाने में अपना सहयोग दे सकते हैं। और बहनों, आज के दिन मनाया जाने वाला राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हिंसा कभी भी समाधान नहीं होती। आतंक से लोगों के सपने, वर्तमान और भविष्य के साथ जीवन भी छिन जाता है और लोगों का जीवन डर के साए में पनपता है। एक संवेदनशील व्यक्ति कभी भी किसी भी तरह की नफरत का समर्थन नहीं कर सकता और यह संवेदनशीलता प्रेम, करुणा और मानवता की भावना का समाज में विकास एक स्त्री के माध्यम से संभव है। आज के समय में हर घर की महिलाओं की जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने बच्चों में धैर्य व राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करें, जिससे समाज में हिंसा की जगह अपनेपन व शांति का वातावरण निर्मित हो। आज आवश्यकता है कि हम अपने घरों में संवाद को बढ़ाएं, बच्चों की बातें सुनें, उन्हें सही और गलत का अंतर समझाएं और यह सिखाएं कि किसी भी मतभेद का समाधान बातचीत और समझदारी से निकाला जा सकता है। और बहनों, जब समाज में शांति होगी तभी आर्थिक प्रगति भी हो सकती है और सच्चा विकास भी तभी संभव भी हो सकता है। और बहनों, जब हर व्यक्ति अपनी संस्कृति के साथ गर्व से जी सके, अपनी संस्कृति को समझ सके और उसे आगे ले जाए, तब यह जो विकास है ये सही मायने में सार्थक कहा जा सकता है। तो बहनों, ये थी आज की हमारी आपकी बातचीत और अब कार्यक्रम में समय है एक गीत सुनने का। तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ में फिल्म दुश्मन का ये गीत।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: और बहनों, इस जरूरी संदेश के बाद अब कार्यक्रम में समय है गुलदस्ता क्रम का। गुलदस्ता क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भेंट वार्ता, जिसमें हमने आज बातचीत की है अपने हुनर से स्वरोजगार निर्मित करने वाली प्रेरणादायक शख्सियत श्रीमती श्वेता दास से, जो अपने साथ अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने की कला सिखा रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का गुलदस्ता क्रम।

स्वागत है बहनों आप सभी का आज के गुलदस्ता क्रम में। गुलदस्ता जहां मिलती है जीवन की खुशबू, संघर्ष की प्रेरणा और सपनों की उड़ान। बहनों अक्सर हम सोचते हैं कि घर परिवार की जिम्मेदारियों के बीच अपने लिए समय कहां से लाएं, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो इन्हीं जिम्मेदारियों के बीच अपने हुनर को पहचान कर न केवल अपनी पहचान बना रही हैं बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन रही हैं।

0: आज हमारे साथ ऐसी ही एक प्रेरणादायक शख्सियत मौजूद हैं, जिन्होंने अपने छोटे से हुनर को मेहनत, धैर्य और विश्वास के सहारे एक सुंदर पहचान दी। बुटीक, हैंडक्राफ्ट, सुंदर गिफ्ट पैकिंग, होम डेकोरेशन और हैंडलूम कार्यों के माध्यम से इन्होंने अनेक महिलाओं को यह संदेश दिया है कि यदि मन में लगन हो तो घर बैठे भी आत्मनिर्भर बना जा सकता है। तो आइए स्वागत करते हैं हमारी आज की अतिथि महिला उद्यमी श्वेता दास का। स्वागत है श्वेता आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो श्वेता, हमारे श्रोताओं को अपने बारे में, अपने कार्यों के बारे में थोड़ा संक्षेप में बताइए।
1: मैं बचपन से ही बहुत रचनात्मक कार्यों में रुचि लेती थी। शुरुआत में घर के ही गमलों में, घर के पर्दों में, मम्मी की साड़ियों में, इसमें कई बार कुछ ना कुछ पेंटिंग वगैरह करती रहती थी। तो कई बार बिगड़ता था, कई बार बन जाता था। वहाँ से लेकर सफ़र आज बुटीक में हूँ, और यहाँ पे अब डिज़ाइनर हमारे पास पूरे लहंगे से लेकर सारा वेडिंग सारा कुछ बनता है, ड्रेस रेडी होती हैं, पैकिंग वगैरह, गिफ्ट हैम्पर का बहुत चलन है, वो सारा कुछ हमारे पास बनता है। और सिर्फ हम खुद बनाते ही नहीं, बल्कि इसके लिए कई लोगों को प्रशिक्षण देते हैं, जिससे आगे वो लोग खुद आत्मनिर्भर बन सकें।
0: वाकई में खुद सफल होना और अपने साथ कुछ लोगों को सफल बनाकर सफल होना, इन दोनों ही बातों में अंतर तो थोड़ा ही है, लेकिन जब कुछ लोग साथ में सफल होते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। अच्छा श्वेता, आप आज जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने का सफर आसान तो नहीं रहा होगा, तो अपने संघर्षों के बारे में हमें कुछ बताइए।
1: हर महिला की तरह मेरे पास भी घर, रसोई, परिवार की उतनी ही जिम्मेदारी थी। सभी के पास जो 24 घंटे होते हैं, मेरे पास भी उतने ही थे, लेकिन उसमें से मुझे, मेरे लिए कैसे समय निकालना है वो मुझे पता था। कि सबका काम करने के बाद रात को जब सोने जाते थे तो मैं 12-1 बजे काम चालू करती थी, और मुझे जब तक बनता था मैं तब तक काम करती थी। धीरे धीरे धीरे अपनी कार्य की शैली को मैं बढ़ाती गई, उसे जितनी तरीके से मैं सजा सकती थी उसे मैंने अपने ऊपर खर्च किया, अपने समय को, और ये यात्रा चल ही रही थी और आज भी ये मेरी यात्रा जारी ही है। अभी भी एक मुकाम में मुझे लगता है पहुंचना बाकी ही है।
0: जी, और जैसे ही हम कहते हैं ना कि हम पूरी तरह से सब कुछ सीख चुके हैं, तो कहते हैं वहाँ से फिर हम पीछे होना शुरू हो जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो निरंतर सीखने की ये जो आपकी इच्छा है और ये जो आदत है, ये निश्चित रूप से आपको आगे और बड़े मुकाम पर ज़रूर लेकर जाएगी। श्वेता, देखिए, आपके हाथों की बनाई चीज़ों को हमने देखा है, जिसमें बहुत ही सुंदरता होती है और साथ ही बहुत सारी भावनाएं भी उसमें हमें दिखाई पड़ती हैं। तो आपके अनुसार हस्तकला की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है?
1: हाथ से बनी हुई चीज़ों में सिर्फ मेहनत ही नहीं है, बल्कि भावना और प्यार भी जुड़ा होता है। जब हम अपने हाथों से बने हुए उपहार किसी को हम देते हैं तो वो हमारा प्रेम उसमें झलकता है।
0: जी,
1: तो बाजार से लाई हुई चीज़ों में और हाथ से बनी हुई चीज़ों में बहुत अंतर होता है, वो भावना का अंतर आता ही है।
0: जी, और यही वजह है शायद कि आज भी लोग हैंडमेड चीज़ों को दिल से पसंद करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो श्वेता, देखिए, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो बहुत कुछ नया करना चाहती हैं, लेकिन उनके अंदर जो आत्मविश्वास की कमी है वो उन्हें रोक देती है। तो ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी?
1: सबसे पहले तो आप मिरर में जाइए और अपने आप से पूछिए, क्या आज जो जीवन जी रहे हैं, क्या यही जीवन आप जीना चाहते थे? 99% लोगों का जवाब होगा नहीं। तो नहीं है तो उसको आप बेहतर कैसे बना सकते हैं? परेशानियां तो सबके जीवन में हैं, लेकिन आप अपने जीवन को कैसा अच्छा बना सकते हैं? क्योंकि एक महिला अगर अब खुद अगर सक्षम होती है, एक परिवार में बहुत अपना एक बेहतरीन स्थान प्राप्त करती है, तो वो अपने साथ अपने पूरे परिवार को ऊपर उठाती है।
0: जी,
1: तो मैं यही बोलूंगी कि परेशानियां तो सबके साथ है, आप बिल्कुल जाइए और देखिए अपने जीवन में आप कितनी बेहतरीन तरीके से अपने जीवन को उठा सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, और हर दिन यदि थोड़ा थोड़ा सा समय भी हम अपने आप को दें तो निश्चित रूप से आगे चलकर हम अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो श्वेता, देखिए, जैसे अभी गर्मी का समय है, बच्चों की छुट्टियां भी चल रही हैं, तो आपके अनुसार महिलाएं और बच्चे इस समय का उपयोग किस तरह से कर सकते हैं?
1: इस समय बच्चे अधिकतर मोबाइल और टीवी ही देखना पसंद करते हैं, लेकिन हमें पता है कि वो उनके दिमाग के लिए और उनकी सेहत हेल्थ के लिए बिल्कुल खराब है। तो हम उनके साथ ये जो हमें इतना अच्छा समय मिला है, इसको हम बहुत अच्छे तरीके यूज कर सकते हैं। बच्चों के पौधे में पानी डलवाइए, साथ में मिलके गमलों में पेंटिंग, कई क्राफ्ट हैं, कई बहुत सारे अलग अलग आइटम है, रंगोली है, बहुत सारी चीजें हैं, पेंटिंग है, हैंडक्राफ्ट की चीजें हैं, मिट्टी का क्ले है, जो बच्चे जिसमें रुचि लें, आप उनके साथ मिलकर वो समय बिताइए और उस अपने बच्चे के भी भविष्य के लिए उन्हें टीवी और मोबाइल की आदतों से दूर करिए।
0: जी बिल्कुल।

0: और ऐसा करने से जो हमारा बच्चों के साथ बॉन्डिंग है, भावनात्मक संबंध है, वो तो अच्छा होगा ही, साथ ही साथ बच्चों में धैर्य और रचनात्मक सोच भी विकसित होगी, जिससे हमें भी खुशी मिलेगी और बच्चों का भविष्य भी अच्छा होगा। अच्छा श्वेता, हम अपने रोज के कामों को करते हुए बहुत तनाव में रहते हैं, क्योंकि आज का जीवन जो है ये भागम भाग का है, तो निश्चित रूप से तनाव होना लाजमी है। ऐसे में क्या रचनात्मक कार्य तनाव को कम करने में भी मदद कर सकते हैं?
1: बिल्कुल, घर के काम तो सभी महिलाओं के पास है, चाहे वो कलेक्टर भी हो, लेकिन घर आकर उसे घर का काम सभी महिलाओं के पास है। तो आप अपने लिए समय निकालिए और आपको जो पसंद हो, चाहे वो म्यूजिक से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी क्राफ्ट से हो, चाहे आपको स्टिचिंग से हो या सिलाई कढ़ाई बुनाई, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ये अथाह है, ये समुद्र है। इस समुद्र में से आपको कौन सा एक बाल्टी निकालना है क्राफ्ट का, आप निकालिए, और हर किसी में क्षमता होती है, आप बस उसमें भिड़ जाइए, फिर देखिए आप वो तनाव बिल्कुल दूर हो जाएगा।
0: जी, और श्वेता मुझे लगता है कि अपनी पसंद का काम करना ही हमारे लिए एक तरीके का मेडिटेशन होता
1: बिल्कुल,
0: है
1: बिल्कुल,
0: आप जरूर इस बात से
1: बिल्कुल सहमत हूँ मैं इस बात से।
0: जी
1: वाकई ऐसा ही है।
0: जी तो श्वेता, देखिए हमारा कार्यक्रम सुन रही जो महिलाएं हैं, उनके जीवन में भी कोई निराशा है और वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, काम नहीं कर पा रही हैं, तो ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देंगी आज?
1: निराशा जीवन में किसके नहीं है, लेकिन निराशा से लड़कर ऊपर उठना ही सबसे बड़ी बात है। महिला सबसे बड़ी फाइटर होती है, जब इस दुनिया में एक नन्ही सी जान को ला सकती है तो वो जितना कुछ कर सकती है ना, शायद इतनी क्षमता भगवान ने किसी और में दी ही नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में, पहले खुद से टटोलिए और बस उस पे आप भिड़ जाइए, शुरू करिए, छोटी सी शुरुआत से शुरू करिए। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, जिसमें आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं बाहर जाकर सीखना, तो आप घर पे बैठे बैठे सीख सकते हैं, अपने रचनात्मक कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं। आप एक पहला कदम तो लीजिए, फिर देखिए आगे सफलता आपके पास खुद दौड़ी चली आएगी।
0: बहुत सही बात कही श्वेता आपने।
1: जब निराशा किसी महिला के पास आए, तब उस समय एक याद करिएगा, एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। अरुणिमा पाल थी एक, जिनका पैर कट गया था ट्रेन के ट्रैक में, लूट मार हुई थी उनके साथ, और जब वो हॉस्पिटल से सीधे वो घर नहीं गई, बछेंद्री पाल के पास गई, माउंट एवरेस्ट में वो चढ़ चुकी हैं और कई उन्हें पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो जब वो उनके पास गई और बोली कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, तो कई लोग इसके परिवार में कई लोग थे जो इस बात पर बहुत हंसी उड़ाए थे, उनका मजाक उड़ाए थे, पर उन लोगों की परवाह न करते हुए वो उनके पास गई और उन्होंने कहा कि मुझे, बछेंद्री पाल जी से कहा कि मुझे एवरेस्ट चढ़ना है। उनके सिर्फ एक शब्द थे, बेटा आपने जो कहा है ना, आप इसका मतलब आप चढ़ चुके हो, अब सिर्फ करना की है। तो महिला सबसे बड़ी फाइटर है, मैं अभी भी यही कहूंगी कि आप बस भिड़ जाइए, आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में, देखिए आपके जीवन को इतनी बेहतरीन एक दिशा मिलेगी और आपके साथ आपके पूरी परिवार को एक बेहतरीन दिशा मिलेगी।
0: जी वाकई में, और जब एक महिला आत्मविश्वास से आगे बढ़ती है तो केवल उसका जीवन नहीं बदलता बल्कि पूरा परिवार ही बदल जाता है और सारे लोग आसपास के उससे प्रेरित होते हैं। और बहनों देखिए, सच ही कहा गया है, हुनर हाथों में नहीं हौसलों में होता है। आज की हमारी अतिथि ने यह संदेश बखूबी दिया है कि खाली समय को यदि सीखने, सृजन और आत्मविश्वास से जोड़ा जाए तो वही समय जीवन की नई दिशा बन सकता है। तो बहनों, इन्हीं सारी बातों के लिए हम अपनी अतिथि जो हैं श्वेता दास, इन्हें बहुत धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने अपने व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर हमारे साथ सकारात्मक बातें की। निश्चित रूप से ये बातें आपके जीवन को जरूर प्रभावित करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता आपका।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: तो बहनों, इस गर्मी में कुछ नया सीखिए, अपने बच्चों को रचनात्मकता से जोड़िए और अपने भीतर छिपी प्रतिभा को पहचानिए। और इन्हीं सारी बातों के साथ अब आज के गुलदस्ता क्रम से मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी को ऋतु का नमस्कार। और बहनों, गुलदस्ता क्रम में भेंट वार्ता के बाद अब कार्यक्रम में समय है एक और गीत सुनने का। तो आइए सुनते हैं साधना सरगम और सुरेश वाडकर की आवाज़ में फिल्म दिल आशना है का ये गीत।

और बहनों घर आंगन में अब वक्त है घरेलू नुस्खों का। बहनों गर्मी में हम अगर थोड़ा सा खान पान में अपने ध्यान दें, तला भुना कम खाएं, तो हम अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। आम का पन्ना, खीरा, पुदीना और साथ ही मटके का पानी, ये हमें हमेशा ही फ्रेश बना कर रख सकता है। साथ ही जो सूखा धनिया है, इसका शरबत, सौंफ का शरबत अगर हम मिश्री के साथ बनाकर पीते हैं, तो निश्चित रूप से हम इस गर्मी में लू को भी पीछे छोड़ सकते हैं और अपने शरीर को पूरी तरह से ठंडक में बनाए रख सकते हैं। और बहनों इन नुस्खों के बाद अब समय है फिर से एक गीत सुनने का, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

बहनों, इस गीत के साथ ही हमारा घर आंगन का आज का क्रम यहीं पर पूरा होता है। चलने से पहले आपको बताते हैं हमारा ईमेल एड्रेस gharanganair@gmail.com और साथ ही पत्र के लिए हमारा पता है कार्यक्रम घर आंगन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी अंबिकापुर पोस्ट बॉक्स नंबर 27 और पिन कोड है 497001। तो बहनों, आप हमें पत्र लिखें, मेल करें और अपनी बातें हम तक पहुंचाएं। अब आज के घर आंगन कार्यक्रम से मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी को ऋतु सिंह का नमस्कार।

बहनें सुन रही थी अभी अपना कार्यक्रम घर आंगन, मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:40 हुए हैं और अब पेश है फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल की गूंज।

ईमेल की गूंज सुन रहे सभी श्रोताओं को नमस्कार, आदाब। आज शबनम की ओर से श्रोताओं, हर मेल में छुपा है आपका प्यार, नाम, आपके गीत, आपकी पसंद के गीत, जहां हर संदेश बनता है एक खूबसूरत एहसास। और इस कार्यक्रम में यानी कि ईमेल की गूंज में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं मैं शबनम, और लेकर हाजिर हूं आप सभी के मेल आज की इस महफिल में। आपके जज्बात, आपके संदेश और आपके पसंदीदा गीत मिलकर रचेंगे एक सुरीला संसार। तो तैयार हो जाइए अपने दिल की बात कहने के लिए और सुनने के लिए वे गीत जो आपके दिल के बेहद करीब हैं, क्योंकि आपकी पसंद के हैं ये गीत।

शब्दों की खुशबू और सुरों की मिठास, यही है ईमेल की गूंज, कार्यक्रम की प्यारी सी बात। आपकी बातें, आपके जज्बात और साथ में आपके पसंदीदा गीतों का ढेर सारा साथ। अभी आप सुन रहे थे फिल्म अरमान से ये गीत, सुनिधि चौहान और सोनू निगम की आवाज थी। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत के लिए संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने और पसंद आप सभी की थी। जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन, आदेश कुमार काले, रजौरी गार्डन नई दिल्ली से ध्वनि और सानवी, महाराष्ट्र से सोपान ताइड़े, वसंतराव भोजने, तुषार करांगले, गुवाहाटी से हरेन पांड्या, नरेन पांड्या, वीरेन पांड्या, उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, रिहान, समरीन, परवीन और माहिरा नूर, अकोला से प्रणय श्रीवास, अनीता श्रीवास,

गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, दरियापुर भाबली महाराष्ट्र से, कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ मरावी, आप हैं लोरमी ग्राम चचेड़ी से, हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान मोहम्मद, इसरार नरगिस खातून, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, तिलकनगर नई दिल्ली से आर एस स्वीटी और आर के शुक्ला, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश पूनम, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद माखीजा, सविता माखीजा, बेबी स्वाति, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही, पूजा छुटकी, शरद कुमार डोडवानी और पूरा माखीजा परिवार, मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल की गूंज। कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे फिल्म ओम शांति ओम से ये गीत। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत के लिए संगीत दिया विशाल शेखर ने, आवाज है के की।

ईमेल की गूंज, जहां आपकी फरमाइशें बनती हैं, आपके चेहरे की मुस्कान और आपके जज्बात से सजते हैं कुछ आपकी प्यारी प्यारी बातें। अगले मेल में जब हमें मिलते हैं वो बातें हम उन खुशियों में ढूंढते हैं। तो अभी जो गीत आप सुन रहे थे वो फिल्म ओम शांति ओम से रहा और आवाज़ रही के की। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत के लिए संगीत दिया विशाल शेखर ने। इस गीत के लिए मेल मिले आप सभी से। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा, नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल बेबीसिया जाधव, जालना शहर से सोमनाथ, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव, कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, मन्नत, गुरकीरत, राहुल, गुरशबद और इनके परिवार के सभी सदस्य, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह और कुशल शाह, आप हैं पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से, ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल और समस्त विश्वकर्मा परिवार, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, आप हैं ग्राम बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से। फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल की गूंज इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से और आज का ये कार्यक्रम आपके लिए पेश कर रही हूं मैं शबनम।

सोनू निगम और तुलसी कुमार को अभी आप सुन रहे थे फिल्म दबंग 2 में। इरफान के शब्द थे, संगीत दिया था साजिद वाजिद अली ने और इस गीत के लिए मेल मिले आप सभी से। इंदिरा चौक तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल, मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा। जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, श्राव्या। बालाजी चौक से ओटी श्रीवास, शेख आजाद, पोपोरानी। ग्राम खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी पैकरा, करिश्मा पैकरा। सुमार साय कलेश्वर सिंह, सुखराम, हीरामणि और ऐश्वर्या पैकरा। सारसताल सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साय राजवाड़े, सुमार साय, मेर साय, श्री भगत, हेमंत कुमार और राम खिलावन सिंह पैकरा। देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार निभवानी, संगीता, आकाश, आयुषी, सागर, यशी, हनी, पूजा, सीता और पूरा निभवानी परिवार। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, आप हैं अनारकली बाजार जगराओं से। श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद। गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनैद मुजावर, सबीहा मुजावर, मिखाइल, जैनब और इनके परिवार के सभी सदस्य। कार्यक्रम ईमेल की गूंज में अब आप सुनेंगे फिल्म परिणीता से ये गीत। स्वानंद किरकिरे के शब्द हैं, संगीत शांतनु मोइत्रा का, आवाजें सोनू निगम और श्रेया घोषाल की और इस गीत को सुनना चाहा आप सभी ने। यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल और चेतन मनवर, संग रोशनी और बेबी प्रियांशी। बिरड़ी मध्य प्रदेश से हुकुम करमकर, सुनीता, हार्दिक और प्राची संग तनु करमकर। कुम्हारगली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका और इनके परिवार के सभी सदस्य। पुणे से अजय, करिश्मा, अविका और विशाखा। उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती, विनीत और बाबू भाई। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा। भटिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। आप सभी की फरमाइश पर फिल्म परिणीता से ये गीत।

आपकी मेल, आपका अंदाज और साथ में आपके पसंदीदा गीतों का साज। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल की गूंज। कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे फिल्म लुटेरा से ये गीत। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत को संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने, आवाज स्वानंद किरकिरे और अमिताभ भट्टाचार्य की, और इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने। पश्चिम विहार नई दिल्ली से लव शर्मा और रोशनी शर्मा, खामगांव से अनीता रामेश्वर, शुभम साक्षी और समस्त वाढ़े परिवार, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर जियाउल हक भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और इशिका। आप सभी की फरमाइश पर फिल्म लुटेरा से ये गीत।

फिल्म लुटेरा का ये गीत अभी आप सुन रहे थे और अब ईमेल की गूंज कार्यक्रम के आखिर में आप सुनेंगे फिल्म गर्लफ्रेंड का ये गीत सुनिधि चौहान और वैशाली सामंत की आवाजों में। इस गीत के लिए मेल मिले आप सभी से। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली, धनंजय सरोज, अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार और नसीम बेगम, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुनटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान अरजान और अबान अब्बासी, उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूरत, नेहा जैन, दीपक मयंक, चेतन नहाटा, बोरखेड़ा से लीला और प्रियम, परभणी महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश प्रज्ञेश और प्रीतेश संघई। आप सभी की फरमाइश पर फिल्म गर्लफ्रेंड से ये गीत।

फिल्म गर्लफ्रेंड के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल की गूंज यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। 2:15 होने वाले हैं। दोपहर समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल

0: मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
2: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले 3 महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है। टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
3: India has recently launched।
4: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
3: इट्स लीडरशिप इन जेनेरिक मेडिसिन।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम

0: बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा केंद्रों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
1: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 फरगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोकभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, VCK, CPI, CPM, IUML और AIADMK के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले AIADMK ने आज लोकभवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। IPL क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में 4th स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
3: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं। चाय,
4: ये चाय। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और

0: नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जन कल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स पर और FM बैंड 100.2 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 2:30 हुए हैं। अब पेश है गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं गुलाम अली की गई इस गजल से।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे सोनू निगम की आवाज में एक गीत।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 2:45 हुए हैं और आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा। कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल।

0: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू
1: बेबी को बेस पसंद है।
2: इंस्टा फरमाइश, आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश, नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8:00 से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपनी पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजें और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।

गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे एक गीत, कलाकार हैं रोमी।

0: वो अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
1: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
0: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जोड़िए आपके अपनों को भी।
0: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडिया वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ के साथ अब FM 100.2 MHz पर भी।

0: अरे यार, ये रेडियो को क्या हुआ? आवाज साफ ही नहीं आ रही। ये खरखर की आवाज कैसी है?
1: अरे बुद्धू, एंटीना नहीं, अपना अंदाज बदलो। अब अंबिकापुर रेडियो पुरानी

0: से निकलकर आपके कानों में जादू करने आ गया है।
1: मतलब
0: अब आकाशवाणी अंबिकापुर सुनिए 100.2 FM पर।
2: यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, पर हमसे पंगा मत लेना मेरी जान।
1: अरे वाह, ये तो एकदम साफ है, जैसे कोई कान में गा रहा हो।
0: यही तो है FM 100.2 की स्टीरियो क्वालिटी। अब सुबह की भक्ति हो या शाम के गाने, आवाज मिलेगी बिल्कुल मक्खन जैसी साफ।
3: अच्छा तो अभी ट्यून करता हूँ
4: आकाशवाणी अंबिकापुर 100.2 FM। आवाज वही, अंदाज नया।
5: आकाशवाणी के 90 वर्षों के गौरवशाली प्रसारण के जश्न में शामिल होने आइए 23 मई को सुबह 6 बजे आकाशवाणी अंबिकापुर के मेन गेट पर। आकाशवाणी अंबिकापुर के सदस्य और आप सब मिलकर करेंगे वॉकथन।
6: तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी।
5: चलिए बनाए एक मिसाल अपने प्यारे संबंधों की। शामिल होइए आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ 23 मई 2026 को।
6: चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में।
5: आकाशवाणी अंबिकापुर के सदस्य और आप सब करेंगे वॉक और साथ चलते चलते ढेर सारी बातें भी 23 मई 2026 को सुबह 6 बजे आकाशवाणी अंबिकापुर के मेन गेट से शुरू करेंगे हम सब मिलकर वॉकथन। हमें रहेगा आपका इंतजार, आइएगा जरूर।
7: चलते, चलते।
8: इन संदेशों से पहले आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 3 बज चुके हैं। मीडियम वेव पर सभा समापन से पूर्व हम आपको बता दें हमारी सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले शेष मुख्य आकर्षण। हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है संध्या 5 बजे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ के साथ। भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या आप सुनेंगे शाम 5:05 पर। युवा श्रोताओं के लिए युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा शाम 5:30 पर। विचार बिंदु का पुनः प्रसारण होगा शाम 6:05 पर। लोकगीतों के कार्यक्रम गोधूली में शाम 6:20 पर आप सुनेंगे लखनदास और साथी के गाए सरगुजिया लोकगीत और धर्म साय राजवाड़े और साथी के गाए छत्तीसगढ़ी लोकगीत। फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी पेश करेंगे शाम 6:30 पर। सुगम संगीत का रजनीगंधा कार्यक्रम पेश करेंगे शाम 7:05 पर। किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल शाम 7:20 पर। 7:30 समय होगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का। इंस्टा फरमाइश ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8 बजे। चित्रपट संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:15 पर। फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल की गूंज आपके लिए लेकर आएंगे रात 9:30 पर। शास्त्रीय संगीत के सूर्यामिनी कार्यक्रम में रात 10 बजे आज आप सुनेंगे पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का राग विभास में गायन। और फिल्म संगीत का एक और फरमाइशी कार्यक्रम मन भावन पेश करेंगे रात 10:30 पर। ये तो थे हमारे आज के शेष मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव पर समाज समापन से पूर्व आपको बता दें कि FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी दिल्ली से FM गोल्ड चैनल का प्रसारण जारी रहेगा। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्स और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ संध्या 5 बजे आपकी सेवा में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

लता मंगेशकर के गए इस कबीरदास के भजन के बाद आप सुनिए मेरा बाई का लिखा यह कृष्ण भजन, स्वर है अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन का।

अभी आपने मीराबाई का लिखा ये कृष्ण भजन सुना। गायक कलाकार थे अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन। भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं

सुमन कल्याणपुर के गए खालस की इस पारंपरिक भक्ति रचना के साथ ही आज की भजन संध्या अब संपन्न होती है। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युवा वाणी।

नमस्कार दोस्तों, आज की युवाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियम और आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस खूबसूरत पहचान की जो भारत को दुनिया में सबसे अलग बनाती है, भारत की सांस्कृतिक विविधता। भारत एक देश नहीं बल्कि संस्कृतियों का महासागर है। यहाँ हर 100 किलोमीटर पर भाषाएं बदल जाती हैं, खाना बदल जाता है, कपड़े बदल जाते हैं, लेकिन दिलों की धड़कन एक ही रहती है। यही है भारत की असली पहचान, अनेकता में एकता। भारत में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, हिंदी, तमिल, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तेलुगु। हर भाषा अपने साथ एक इतिहास, एक संस्कृति, एक पहचान लेकर चलती है। भाषाएं सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, ये भावनाओं की अभिव्यक्ति है। एक ही बात अलग अलग भाषाओं में सुनिए, भाव बदल जाता है, लेकिन भावनाएं वही रहती हैं। भारत का खाना दुनिया में सबसे विविध माना जाता है। उत्तर भारत की रोटी सब्जी, दक्षिण भारत का इडली सांभर, पश्चिम का ढोकला, पूर्व का रसगुल्ला, हर राज्य का स्वाद अलग है, लेकिन हर स्वाद में प्यार है। खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, यह संस्कृति को जोड़ता है। भारत त्योहारों का देश है। भारत में हर महीने त्यौहार मनाया जाता है। होली के रंग, दिवाली की रोशनी, ईद की मिठाई, क्रिसमस की खुशियाँ, बैसाखी का उत्साह, पोंगल का उल्लास। भारत में त्यौहार सिर्फ मनाए नहीं जाते, पूरे दिल से जिए जाते हैं। यहाँ त्यौहार सिर्फ एक धर्म या समुदाय के नहीं होते, ये पूरे देश के होते हैं। दोस्तों, भारत में कपड़े की भी अलग संस्कृति है। भारत में कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते, ये पहचान होते हैं, इतिहास होते हैं। साड़ी भारत की शान, पगड़ी सम्मान का प्रतीक, घाघरा रंगों की पहचान, कुर्ता पैजामा सादगी की मिसाल। और आज की पीढ़ी जींस के साथ कुर्ती पहनती है, साड़ी के साथ स्नीकर पहनती है, यानी परंपरा और आधुनिकता दोनों साथ चलते रहते हैं। भारत में हर राज्य की अपनी धुन है। पंजाब भांगड़ा, गुजरात गरबा, तमिलनाडु भरतनाट्यम, उड़ीसा ओडिसी, उत्तर प्रदेश कथक, और बॉलीवुड ने उन सबको एक मंच दे दिया। आज कोई भी गाना सुनो, उसमें पूरे भारत की झलक मिलती है। अब एक बड़ा सवाल, क्या विविध

विविधता सिर्फ दिखावे की चीज है? जवाब है नहीं। विविधता हमें सिखाती है सहनशीलता, सम्मान, अपनापन। जब हम अलग अलग लोगों को समझते हैं तो हमारा नजरिया बड़ा होता है और यही असली ताकत है किसी देश की। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में एक सच्चाई भी होती है। आज कभी कभी भाषा, धर्म, क्षेत्र के नाम पर दूरी बढ़ती दिखाई देती है। याद रखिए, अलग होना कमजोरी नहीं, गलत समझना कमजोरी है। आज की नई पीढ़ी के लिए जिम्मेदारी है। आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया पर जुड़ी है, दुनिया से जुड़ी है। अब जिम्मेदारी हमारी है कि हम नफरत नहीं संस्कृति को शेयर करें, रील्स बनाएं, लोकगीतों पर पोस्ट करें, अपने त्योहारों पर सीखें दूसरी भाषाओं के शब्द, क्योंकि संस्कृति बचती है जब उसे जिया जाता है। दोस्तों, भारत कोई नक्शा नहीं है, भारत एक एहसास है। यहाँ मंदिर की घंटी भी बजती है, मस्जिद की अजान भी गूंजती है, गुरुद्वारे के कीर्तन भी होते हैं और चर्च की घंटियाँ भी सुनाई देती हैं। यहाँ रंग अलग हैं, रिवाज अलग हैं, लेकिन दिल एक है। भारत हमें सिखाता है एकता का मतलब समान होना नहीं, एकता का मतलब साथ होना है। अपनी विविधता को सिर्फ पहचाने नहीं, उस पर गर्व भी करें। दोस्तों, आज की चर्चा बस यहीं तक। अब आइए सुनते हैं गीत जिसे हमने लिया है फिल्म पद्मावत से, जिसमें आवाजें हैं श्रेया घोषाल और स्वरूप की, गीतकार हैं AM तुराज और संगीत से सजाया है संजय लीला भंसाली ने।

स्वागत है दोस्तों आपका क्रम महफिल में। तू पास नहीं फिर भी सबसे करीब लगता है, तू पास नहीं फिर भी सबसे करीब लगता है, ये कैसा रिश्ता है जो अधूरा होकर भी पूरा लगता है। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में नवाज देवबंदी की लिखी ये प्यारी सी गज़ल, और इस गज़ल के फरमाइश करता है धरसीमा से छेदूलाल यादव, सीता, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, अल्पना यादव।

जाना भी अलग बात है, मोहब्बत में हार जाना भी अलग बात है, कुछ लोग जीत कर भी अकेले रह जाते हैं। आइए सुनते हैं कैसर उल जाफरी की लिखी ये प्यारी सी गज़ल पंकज उदास की आवाज़ में, और इस गज़ल को सुनने की फरमाइश की है दुर्ग से संजय साहू, सुजाता शशांक, सीमा साहू ने।

दोस्तों अभी आपने सुना पंकज उद्धास की आवाज़ में ये प्यारी सी गज़ल। दोस्तों अगर आप भी अपने पसंद की गज़ल की फरमाइश करना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर पत्र भेज सकते हैं। पत्र भेजने का हमारा पता है क्रम महफिल युवाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निर्देशक आकाशवाणी अंबिकापुर पोस्ट बॉक्स नंबर 27 पिन कोड 497001 या आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है महफिल@gmail.com। दोस्तों

0: के साथ क्रम महफिल बस यहीं तक। दोस्तों वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का आज की युवाणी से, तो इजाजत दीजिए मुझे यानी आपकी दोस्त प्रियम को। नमस्कार।
1: अभी युवा सुधा सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं, अब समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
3: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
2: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि ये सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कोन ओह यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। बैठक में खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
4: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में LPG प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46,000 से 47,000 टन LPG देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
2: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और सुचारू समुद्री परिचालन के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। ये यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय

0: मंत्रालय ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। महाराष्ट्र में कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग ने दक्षिण कोरिया के शैक्षणिक संस्थानों के साथ आज 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कौशल विकास के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया के साथ महाराष्ट्र की साझेदारी से राज्य के युवाओं के लिए वैश्विक अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है मौन विषय पर विचार बिंदु। आलेख संकलन और वाचन स्वर है कल्पना सिन्हा का।
2: हम सभी के जीवन में जितना महत्व हमारी वाक्पटुता का होता है, उतना ही महत्व हमारे मौन का भी होता है। मौन केवल चुप रहना ही नहीं है, बल्कि यह मन की गहराई को सुनने की कला है। कई बार जो बातें हजार शब्द नहीं कह पाते, वह एक शांत मौन कह देता है। मौन हमें धैर्य, आत्मसंयम और सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। आज के शोर भरे संसार में मौन एक ऐसी साधना बन गया है जो व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है। इतिहास गवाह है कि महान व्यक्तियों ने मौन की शक्ति को समझा और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया। महात्मा गांधी प्रत्येक सोमवार को मौन व्रत रखते थे। उनका मानना था कि मौन मनुष्य को अपनी आत्मा की आवाज सुनने का अवसर देता है। जब वे मौन रहते थे, तब वे अपने विचारों को अधिक स्पष्ट रूप से समझ पाते थे। यही आत्मचिंतन उनके महान निर्णयों का आधार बना। ओशो ने मौन को स्वयं को जानने का मार्ग कहा है। उनका मानना है कि मौन ही वह द्वार है जहां आप खुद से मिलते हैं। जब आप मौन में होते हैं तो आप अपने भीतर की आत्मा की आवाज सुन सकते हैं। कई बार हम सभी ने भी अपने कार्य क्षेत्र में परिस्थितियों के हिसाब से मौन को अपनाया है। गौतम बुद्ध ने भी मौन को ज्ञान प्राप्ति का साधन माना। उन्होंने वर्षों तक ध्यान और मौन साधना के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि मौन केवल बाहर की शांति नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता भी है। एक ऐतिहासिक प्रसंग बहुत ही प्रेरणादायक है। कहा जाता है कि एक बार एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद के पास आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। स्वामी जी शांत रहे और कुछ नहीं बोले। जब वह व्यक्ति थक गया, तब स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार दे और सामने वाला उसे स्वीकार न करे, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, देने वाले के पास। तब स्वामी जी ने कहा, ठीक वैसे ही मैं आपके अपशब्द स्वीकार नहीं करता। यह उदाहरण हमें बताता है कि मौन कई बार सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। आधुनिक जीवन में भी मौन का महत्व काफी बढ़ गया है। आज सोशल मीडिया, मोबाइल और भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति लगातार बोल रहा है, लेकिन सुनने वाले बहुत कम हैं। ऐसे समय में जो व्यक्ति कुछ समय मौन रहकर आत्ममंथन करता है, वही सही दिशा चुन पाता है। विद्यार्थियों के जीवन में भी मौन का विशेष महत्व है। परीक्षा के समय यदि छात्र व्यर्थ की बहस और नकारात्मक बातों से दूर रहकर शांत मन से अध्ययन करें, तो उसकी एकाग्रता बढ़ती है। मौन मन को स्थिर करता है और स्मरण शक्ति को मजबूत बनाता है। आज के भागदौड़ भरे जीवन में हमारे परिवार के सदस्यों के बीच भी कभी कभी किसी बातों को लेकर मनमुटाव हो जाया करते हैं। कई बार क्रोध और गुस्से में बोले गए शब्द रिश्तों को तोड़ देते हैं। उस समय यदि व्यक्ति थोड़ी देर मौन धारण कर ले, तो विवाद समाप्त हो सकता है। इसीलिए कहा गया है, एक चुप 100 सुख। मौन हमें विनम्र बनाता है, हमारे अहंकार को कम करता है और दूसरों को समझने की क्षमता बढ़ाता है। जो व्यक्ति हर समय स्वयं को साबित करने में लगा रहता है, वह अक्सर तनाव में रहता है। लेकिन जो व्यक्ति मौन रहकर अपने कर्मों से उत्तर देता है, वही व्यक्ति सच्ची सफलता प्राप्त करता है। प्रकृति भी हमें मौन का संदेश देती है। सूरज बिना शोर किए प्रकाश देता है, पेड़ बिना कुछ कहे फल देता है और नदी बिना घमंड किए बहती रहती है। प्रकृति का यह मौन

0: कर्म हमें सिखाता है कि महान कार्यों के लिए हमेशा शोर मचाना आवश्यक नहीं होता। मौन कमजोरी नहीं बल्कि महान शक्ति है। यह आत्मविश्वास, धैर्य और समझदारी की प्रतीक है। जीवन में यदि हम प्रतिदिन कुछ समय मौन रहकर स्वयं को समझने का प्रयास करते हैं तो हम मानसिक शांति और सफलता दोनों प्राप्त कर सकते हैं।
1: मौन विषय पर अभी आप सुन रहे थे विचार बिंदु। आलेख संकलन था कल्पना सिन्हा का। यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। थोड़ी देर में छत्तीसगढ़ी में समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ह निजी स्कूल के मनमानी रोके बर प्रदेश भर में निगरानी और जांच समिति के गठन करे है। भारतीय सेना ह ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा के तिथि घोषित कर दे है। और आकाशवाणी के 90 बछर पूरा होए के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहर ले काली रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह के आयोजन करे जाही। अब समाचार विस्तार ले। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ह निजी स्कूल के मनमानी रोके बर प्रदेश भर में निगरानी और जांच समिति के गठन करे है। ये समिति अशासकीय स्कूल में फीस बढ़ोतरी और पुस्तक गणवेश खरीदी के शिकायत मन के निगरानी करही। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ह जम्मू जिला कलेक्टर मन चिट्ठी जारी करे है। जारी आदेश में कहे गए है कि शासन के संज्ञान में ये बात आए है कि छत्तीसगढ़ में संचालित अशासकीय स्कूल मन को तिले अभिभावक मन ला पुस्तक गणवेश और दूसर जिनीस एके ही फर्म ले खरीदे बर बाध्य करे जाते। फर्म के अप्रत्याशित कीमत के सेती अभिभावक मन ऊपर वित्तीय बोझा बाढ़त है। उमन के शिकायत के तुरते निराकरण बर जिला और विकासखंड स्तर में निगरानी और जांच समिति के गठन करे गए है। केंद्र सरकार ह कहे है कि उपभोक्ता पेशेवर और सौंदर्य बोध क्लिनिक डहर ले कोनो भी कॉस्मेटिक उत्पाद के प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करे के अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ह कहे है कि कॉस्मेटिक के प्रयोग केवल मानव शरीर में लगाए छिड़के और स्प्रे करे बर होना चाहिए। ये उत्पाद में प्रतिबंधित सामग्री के उपयोग भ्रामक दावा इलाज बर कॉस्मेटिक के इस्तेमाल और इंजेक्शन ले कॉस्मेटिक के प्रयोग अधिनियम और नियम के उल्लंघन माने जाही। प्रदेश में चलत सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ह आज सूरजपुर जिला अस्पताल में अत्याधुनिक सिटी स्कैन मशीन के वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिया शुभारंभ करीन। ये मशीन करीबन 4.5 करोड़ रुपया के लागत ले स्थापित करे गए है। ए मौका में मुख्यमंत्री कहिन कि नवा सिटी स्कैन मशीन के शुरू हुए ले तीर तखार के मरीज मन ला इलाज के बने सुविधा मिल पाही। एकर पहली मुख्यमंत्री ह अपन सूरजपुर प्रवास के दौरान रामानुजनगर में तेंदुपत्ता संग्राहक मन ले गोट बात करीन। ओमन तेंदुपत्ता संग्रहण काम के जायजा लेवत संग्राहक मन के समस्या और ओमन के आजीविका ले जुड़े बुनियादी सुविधा के जानकारी लेन। श्री साय कहिन कि वनोपज संग्रहण करैया वाला मन के जीवन में समृद्धि लाना सरकार के प्राथमिकता है। रामानुजनगर क्षेत्र के वनोपज सहकारी समिति डहर ले ए साल निर्धारित लक्ष्य ले ज्यादा मात्रा में तेंदुपत्ता संग्रहण करे जा चुके हैं। बता दें कि ए साल राज्य सरकार ह तेंदुपत्ता संग्रहण के दर 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा तय करे है। देश भर में आज आतंकवाद विरोधी दिवस मनाए जाते। ए दिवस ल मनाए के उद्देश्य युवा मन ल आतंकवाद और हिंसा के प्रवृत्ति ले दूर करना है। ए मौका में आने आने शासकीय और अशासकीय संस्था मन में आतंकवाद विरोधी शपथ घलो दिलाए गिस। आजे के दिन बछर 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी एक आतंकवादी हमला के शिकार हुए रहिन। भारतीय सेना ह ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा के तिथि घोषित कर दे है। आने आने श्रेणी पर निर्धारित ए ऑनलाइन परीक्षा अवैया 1 जून ले 5 जून तक और एकर बाद 8 जून ले 12 जून तक आयोजित करे जाही। छत्तीसगढ़ के 5 प्रमुख शहर भिलाई, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में एकर बर कुल 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिहां हरेक दिन परीक्षा के आयोजन 3 ले 4 शिफ्ट में करे जाही। जम्मू पंजीकृत उम्मीदवार भारतीय सेना के आधिकारिक वेबसाइट में जाके अपन प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकत हैं। धमतरी जिला के युवा मन ला रोजगार के मौका उपलब्ध कराए बर जिला प्रशासन और एक निजी संस्था के बीच समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर करे गए है। एकर तहत जिला के बेरोजगार युवा, आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थी, डिप्लोमा

0: कारक मन के संग्रह कुशल और अर्धकुशल श्रमिक मन ला देश के आने आने राज्य में रोजगार के मौका दे जाही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगु बढ़वो बांचे समाचार कुती। आकाशवाणी के 90 बछर पूरा होए के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहले काली 22 मई के रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह के आयोजन करे जाही। एक कार्यक्रम शांतिनगर स्थित विमतारा ऑडिटोरियम में संझा 6:30 बजे ले आयोजित करे जाही। दू सत्र में होवैया एक कार्यक्रम के दौरान सुगम संगीत और उप शास्त्रीय प्रस्तुति हुई। पद्मश्री मदन चौहान सुगम संगीत कार्यक्रम पेश कर ही उन्हें श्वेता शिवाले डहाले उप शास्त्रीय संगीत के प्रस्तुति दे जाही। आकाशवाणी रायपुर के उप महानिदेशक और क्लस्टर प्रमुख वी राजेश्वर है बताएं कि आकाशवाणी है लोक प्रसारण के रूप में पाछू 90 बछर में उल्लेखनीय काम करे है। इस दौरान आकाशवाणी है सूचना शिक्षा समाचार मनोरंजन के माध्यम ले अपन ध्येयवाक्य के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के परिकल्पना न साकार करे के काम करे है। आकाशवाणी केंद्र रायपुर है घलो स्थानीय संस्कृति लोक कला शिक्षा समाचार और मनोरंजन ल गांव गांव तक पहुंचाए में अहम भूमिका निभाए है। राज्य सरकार है कहे है कि मछली पालन ल प्रदेश में कृषि के दर्जा दे जाए ले एक लागत में लगभग 10% के कमी आए है। एक हले मछली पालक मन ल बने आर्थिक फायदा घलो मिलत है। आज रायपुर में मछली पालन के वैज्ञानिक तकनीक में राखे गए चिंतन शिविर ल संबोधित करन मछली पालन मंत्री रामेचा ने ताम हकीन कि प्रदेश के किसान मन पर मछली पालन अब ओमन के समृद्धि के साधन बन के है। ओमन कहिन कि मछली पालक मन के आमदनी बढ़ाए बर आने आने वैज्ञानिक तरीका अपनाए जात है। यही कड़ी में गिफ्ट तिलापिया तकनीक के तहत रायपुर और कांकेर में विशेष क्लस्टर बनाए गए है। श्री नेताम कहिन कि बछर 2028 तक तिलापिया मछली उत्पादन ल 30,000 मीट्रिक टन पहुँचाए के लक्ष्य रखे गए है। बता दें कि मछली उत्पादन के मामला में छत्तीसगढ़ देश में 6वां स्थान में है। यहाँ सालाना 9.5 लाख मीट्रिक टन ले ज्यादा मात्रा में मछली के उत्पादन होवत है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC है ए बछर भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रारंभिक परीक्षा पर भुवनेश्वर कानपुर और मेरठ में 3 नवा परीक्षा केंद्र शुरू करे है। एकरे संग अब केंद्र के कुल संख्या 83 हो गए है। आयोग के अनुसार लगभग 23,000 उम्मीदवार मन ए नवा केंद्र पर आवेदन करे है। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार है कहे है कि एकर उद्देश्य केंद्र में भीड़ ल कम करना और परीक्षा प्रक्रिया ल अनुकूल सुलभ और कुशल बनाना है। ए बछर सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 24 मई के रखे जाही। परीक्षा पर कुल 8,19,000 ले ज्यादा आवेदन मिले है। यही बीच रायपुर में UPSC के सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा जिला के 22 केंद्र में 2 पाली में होगी। पहली पाली बिहनिया 9:30 बजे ले 11:30 बजे तक और दूसर पाली मझनिया 2:30 बजे ले संझा 4:30 बजे तक संचालित होगी। और अब थोरकुन समाचार सारमा। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल है आज नवा रायपुर में विभागीय समीक्षा बैठक में जम्मू टेंडर प्रक्रिया ल पारदर्शिता के संग पूरा करे बर कहिन। केंद्र सरकार है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बर अवैया 31 जुलाई तक नामांकन मंगाए है। एकर बार 5 ले 18 बछर के भारतीय नागरिक पात्र हुई। भिलाई पुलिस है नौकरी दिलाए के नाव में करीबन 7.5 लाख रुपया के ठगी के आरोपी ल गिरफ्तार करे है। रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल के प्रतीक्षालय में 30 फीट ऊंचा सीलिंग ले गिरे के सेती एक मजदूर के मौत हो गए। पुलिस है मामला के जांच शुरू कर दे है। जांजगीर चांपा जिला के अर्जुनी गांव में तरिया में डूबे ले 8 और 9 साल के 2 सगे बहनी की मौत हो गए। जांजगीर चांपा जिला के खोखसा ओवरब्रिज के ऊपर पाछू संझा तेज रफ्तार 4-चक्का गाड़ी के अनियंत्रित होके पलटे ले 1 छात्र समेत 2 मनखे के मौत हो गए। उन्हें 1 दूसरा छात्र घायल हो गए। और दुर्ग स्थित छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में काली 22 मई के जिला स्तरीय रोजगार मेला और प्लेसमेंट कैंप रखे जाही। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फेर। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग निजी स्कूल के मनमानी

0: नी रोके बर प्रदेश भर में निगरानी और जांच समिति के गठन करे हे। भारतीय सेना ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा के तिथि घोषित करते हे और आकाशवाणी के 90 बच्छर पूरा होए के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहले काली रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह के आयोजन करे जाही। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: छत्तीसगढ़ी में समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:20 हुए हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम गोधली में आइए पहले सुनते हैं लखनदास और साथियों के स्वरों में ये खेमटा कर्मा गीत।

लखनदास और साथियों के स्वरों में आपने ये सरगुजिया खिमटा कर्मा गीत सुना। आइए अब सुनते हैं छत्तीसगढ़ी देवी भजन, स्वर है धर्म साय राजवाड़ी और साथियों का।

आइए सुनते हैं फिल्म कुर्बानी का ये गीत। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में, गीतकार हैं दीवार और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं फिल्म प्रेम गीत का ये गीत सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में।

0: सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल के गाए फिल्म प्रेम गीत के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:45 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंध

0: ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
0: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है, और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
6: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
6: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
6: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
4: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
7: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की निगरानी के लिए प्रदेश भर में समितियों का गठन किया है। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री ने आज सूरजपुर जिले का दौरा किया। आकाशवाणी द्वारा कल रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा और भारतीय सेना ने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की निगरानी के लिए प्रदेश भर में समितियों का गठन किया है। ये समिति अशासकीय स्कूलों में फीस बढ़ोतरी तथा पुस्तक गणवेश खरीदी की शिकायतों की जांच करेगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि शासन के संज्ञान में यह बात आई है कि छत्तीसगढ़ में संचालित अशासकीय स्कूलों द्वारा अभिभावकों को पुस्तक, गणवेश और अन्य सामग्री किसी एक ही फर्म से खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। संबंधित फर्म के अप्रत्याशित दाम की वजह से अभिभावकों पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। उनकी शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए जिला और विकासखंड स्तर पर निगरानी और जाँच समितियों का गठन किया गया है। प्रदेश में चल रहे सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज सूरजपुर जिला अस्पताल में अत्याधुनिक सीटी स्कैन मशीन का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शुभारंभ किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने अपने सूरजपुर प्रवास के दौरान रामानुज नगर में तेंदुपत्ता संग्राहकों से बातचीत की। रामानुज नगर पटना में आयोजित समाधान शिविर में मुख्यमंत्री ने रामानुज नगर में मिनी स्टेडियम और पटना में हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार के तहत वे 10 जून तक प्रदेश के सभी जिलों का दौरा करेंगे।
8: सुशासन तिहार चल रहा है, 10 जून तक चलने वाला है और अभी करीब 10 जिले में हमारा प्रवास हुआ है, बाकी 23 जिले बाकी हैं। तो प्रतिदिन हम 3 जिला जा रहे हैं और शाम को तीनों जिले का एक समीक्षा बैठक करेंगे और गांव में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, चौपाल लगाते हैं, तो पूरा फीडबैक मिलता है कि हमारी योजना कहाँ तक गाँव में पहुँच पा रही है।
7: राज्य सरकार ने कहा है कि मछली पालन को प्रदेश में कृषि का दर्जा दिए जाने से

0: इसकी लागत में लगभग 10% की कमी आई है। इससे मछली पालकों को बेहतर आर्थिक लाभ भी हो रहा है। आज रायपुर में मछली पालन के वैज्ञानिक तकनीक पर आयोजित चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए मछली पालन मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि प्रदेश के किसानों के लिए मछली पालन अब उनकी समृद्धि का साधन बन गया है। उन्होंने कहा कि मछली पालकों की आमदनी बढ़ाने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक तरीके अपनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गिफ्ट तिलापिया तकनीक के तहत रायपुर और कांकेर में विशेष क्लस्टर बनाए गए हैं। श्री नेताम ने कहा कि वर्ष 2028 तक तिलापिया मछली उत्पादन को 30,000 मीट्रिक टन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे राज्य को लगभग 100 करोड़ रुपये का विदेशी राजस्व मिलने की संभावना है। मुख्य सचिव विकासशील ने जल जीवन मिशन के तहत राज्य में नियमित पेयजल आपूर्ति और पानी की गुणवत्ता की लगातार जांच सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मंत्रालय में राज्य जल और स्वच्छता मिशन की अपेक्स कमेटी की बैठक में जल जीवन मिशन के दूसरे चरण और पीएम जनमन कार्यक्रम तथा पीवीटीजी बसाहटों में पेयजल व्यवस्था सहित कई विषयों पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि अब नल जल योजनाओं के सुचारू संचालन और निगरानी पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इस वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए भुवनेश्वर, कानपुर और मेरठ में 3 नए परीक्षा केंद्र शुरू किए हैं। इसके साथ ही अब केंद्रों की कुल संख्या 83 हो गई है। इस वर्ष सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 24 मई को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए कुल 8,19,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस बीच रायपुर में यूपीएससी की सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा जिले के 22 केंद्रों में 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक संचालित होगी। परीक्षा में 8,449 अभ्यर्थी शामिल होंगे। देशभर में आज आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा की प्रवृत्ति से दूर करना है। इस मौके पर विभिन्न शासकीय तथा अशासकीय संस्थाओं में आतंकवाद विरोधी शपथ भी दिलाई गई। आज के दिन वर्ष 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी एक आतंकवादी हमले का शिकार हुए थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा कल 22 मई को रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम शांतिनगर स्थित विमतारा ऑडिटोरियम में शाम 6:30 बजे से आयोजित किया जाएगा। 2 सत्रों में होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान सुगम संगीत और उपशास्त्रीय प्रस्तुतियां होंगी। पद्मश्री मदन चौहान सुगम संगीत कार्यक्रम पेश करेंगे, वहीं श्वेता शिवाली द्वारा उपशास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति दी जाएगी। आकाशवाणी रायपुर के उप महानिदेशक तथा क्लस्टर प्रमुख वी राजेश्वर ने बताया कि आकाशवाणी ने लोक प्रसारक के रूप में पिछले 90 वर्षों में उल्लेखनीय कार्य किया है। इस दौरान आकाशवाणी ने सूचना, शिक्षा, समाचार, मनोरंजन के माध्यम से अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की परिकल्पना को साकार करने का काम किया है। आकाशवाणी केंद्र रायपुर ने भी स्थानीय संस्कृति, लोक कला, शिक्षा, समाचार और मनोरंजन को गांव-गांव तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। भारतीय सेना ने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। ये ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आगामी 1 से 5 जून तक और इसके बाद 8 से 12 जून तक आयोजित की जाएगी। इसके लिए भिलाई, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में कुल 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां हर दिन 3 से 4 पालियों में परीक्षा ली जाएगी। सभी पंजीकृत उम्मीदवार भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य राष्ट्र की साझा विरासत को पुनर्जीवित करना और उन आदर्शों के साथ एक नया जुड़ाव स्थापित करना है। ये प्रतियोगिता फिल्म निर्माताओं, रचनाकारों और नागरिकों को समकालीन प्रारूपों के माध्यम से वंदे मातरम की भावना

0: अपने सिरे से प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है, जिनमें रील्स, एआई आधारित फिल्में और लघु फिल्में शामिल हैं। विभिन्न श्रेणियों में 50 लाख रुपये तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आगामी 31 जुलाई तक नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए 5 से 18 वर्ष के भारतीय नागरिक पात्र होंगे। ये पुरस्कार उन बच्चों को दिया जाता है जो वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले होते हैं। नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। रायपुर के कृषि महाविद्यालय का 66वां स्थापना दिवस कल मनाया जाएगा। इस मौके पर वार्षिक समारोह के साथ ही महाविद्यालय के पूर्व छात्रों का सम्मेलन भी आयोजित होगा। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के पहले बैच के उन 3 विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया जाएगा जो अब विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, धमतरी, दुर्ग, कबीरधाम सहित राज्य के 14 जिलों के कुछ स्थानों पर ग्रीष्मलहर चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 5 दिनों तक मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर ग्रीष्मलहर चल सकती है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। धमतरी जिले के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन और एक निजी संस्था के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत जिले के बेरोजगार युवाओं, आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थियों तथा डिप्लोमा धारकों के साथ ही कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों को देश के विभिन्न राज्यों में रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने कहा है कि जिला प्रशासन युवाओं को स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर अवसरों से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। बेमित्रा में पिछले 15 दिनों से चल रहा विकसित कृषि संकल्प अभियान संपन्न हो गया। इस दौरान शिविरों के माध्यम से करीब 6000 किसानों को वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई। रायपुर रेल मंडल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस अभियान के तहत 19 से 22 मई तक स्वच्छता और वेस्ट मैनेजमेंट पर विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किया जा रहा है। भिलाई पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 7.5 लाख रुपये की ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल के प्रतीक्षालय में 30 फीट ऊंची सीलिंग से गिरने के कारण एक मजदूर की मौत हो गई। जांजगीर चांपा जिले के अर्जुनी गांव में तालाब में डूबने से 8 और 9 वर्ष की 2 सगी बहनों की मौत हो गई। इसी जिले के खोखसा ओवरब्रिज के ऊपर बीती शाम तेज रफ्तार चार पहिया वाहन के नियंत्रित होकर पलट जाने से एक छात्र सहित 2 लोगों की मौत हो गई। और दुर्ग स्थित छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कल 22 मई को जिला स्तरीय रोजगार मेला और प्लेसमेंट शिविर का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की निगरानी के लिए प्रदेश भर में समितियों का गठन किया है। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री ने आज सूरजपुर जिले का दौरा किया। आकाशवाणी द्वारा कल रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा और भारतीय सेना ने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के ठीक 7 बजे हैं। आइए श्रोताओं, अब हम आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों के बारे में बतला देते हैं। अब से थोड़ी देर बाद 7:05 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुनेंगे। किसान भाइयों के लिए चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 7:20 पर। इसके अंतर्गत 7:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। इसमें क्रम नया दौर में बातें होंगी डॉक्टर जहार सिंह के साथ। रात 8 बजे सोशल मीडिया पर आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम सुनेगा इंस्टा फरमाइश। 8:45 पर समाचार संध्या और 9 बजे इवनिंग न्यूज हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 9:15 पर चित्रपट संगीत का प्रसारण किया जाएगा। 9:30 पर आपके ईमेल फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज आप सुनेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सूर्यामनी में रात 10 बजे पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का गाया राग विवाह समाप्त को सुनवाएंगे। फरमाइशी फिल्म में गीतों

का कार्यक्रम मन भावन सुनेगा रात 10:30 पर। यह तो थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम। आइए अब एक नजर डालते हैं हमारे कल के मुख्य कार्यक्रमों पर। हमारी प्रातःकालीन सभा में सुबह 6:05 पर आप सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। 6:30 पर विचार बिंदु का प्रसारण होता है और रामचरितमानस का गायन हम आपको सुनाते हैं 6:35 पर। कृषि संबंधित सामयिक सुझाव आप सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बात में 6:45 पर। विषय होगा अपना पोल्ट्री फार्म कैसे शुरू करें। सुबह 7:00 लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल आप सुनेगा। 7:15 पर सुगम संगीत का प्रसारण होगा और 7:30 पर जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेगा नमस्कार सरगुजा। 8:30 पर कार्यक्रम इनसे मिलिए हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन सुनेगा सुबह 9:00। 10:00 नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने पेश किए जाएंगे। श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी पत्री लाइव का प्रसारण आप सुनेंगे 11:05 पर। 12:00 NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग का प्रसारण किया जाएगा। एक ही शीर्षक पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम चयन सुनेगा 12:30 पर। 1:10 पर ग्रामीण महिलाओं के लिए घर गोसाइन कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें राजा राम मोहन राय जयंती पर चर्चा होगी। क्रम होगा कथा कहानी और लोक संगीत आप सुनेंगे। 1:40 पर ईमेल की गूंज का प्रसारण किया जाएगा और 2:30 पर गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा हम प्रसारित करेंगे। सांध्यकालीन सभा में शाम 5:00 प्रायोजित कार्यक्रम होगा हमर हाथी हमर कोट। 5:05 पर सांध्यकालीन भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या आप सुनेंगे। युवाणी में शाम 5:30 पर फोन इन फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम युवा साथी सुनेंगे हेलो फ्रेंड्स। 6:20 पर लोक संगीत का कार्यक्रम गोधली होगा और 6:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी आप सुनेंगे। सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा हम पेश करेंगे शाम 7:05 पर। किसान भाइयों के लिए चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा शाम 7:20 पर। इसमें क्रम होगा स्मार्ट कृषि। रात 8:00 सोशल मीडिया पर आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम सुनेगा इंस्टा फरमाइश। 9:15 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। 9:30 पर ईमेल की गूंज का प्रसारण होगा। 10:00 शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम राग प्रधान हम आपको सुनाएंगे। 10:30 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन आप सुनेंगे। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम FM बैंड 100.2 पर भी सुन सकते हैं। आइए श्रोताओं अब समय है सुगम संगीत के कार्यक्रम रजनीगंधा का। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं अशोक खोसला की आवाज में नासिर काजमी की लिखी ये गजल। यूं ही उदास रहा मैं तो देखना एक दिन, यूं ही उदास रहा मैं तो देखना एक दिन, तमाम शहर में तन्हाई बिछा दूंगा, तू एक बार तो मिल सब गिले मिटा दूंगा, जो कह ना पाया मैं वो बात भी सुना दूंगा।

नासिर काजमी की लिखी यह गजल आपने सुनी अशोक खोसला की आवाज में। ये लोग तस्कीरें करते हैं अपने लोगों के, ये लोग तस्कीरें करते हैं अपने लोगों के, मैं कैसे बात करूं और कहां से लाऊं उसे, करूं ना याद मगर किस तरह भुलाऊं उसे। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में अहमद फराज की लिखी यह गजल।

आइए श्रोताओं, आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के उत्सव का हिस्सा बनते हैं। 23 मई दिन शनिवार को प्रातः 5 बजे से आयोजित

विशेष वाकथन में शामिल होकर संस्कृति साहित्य जनजागरण और राष्ट्रीय चेतना की इस ऐतिहासिक यात्रा को सम्मान दें। श्रोताओं, ये अवसर है आकाशवाणी की विरासत के साथ कदम मिलाने का। तो आइए 23 मई दिन शनिवार को प्रातः 5 बजे से आयोजित इस वाकथन में आप सपरिवार और मित्रों सहित सादर आमंत्रित हैं।

रजनीगंधा कार्यक्रम का अंतिम कलाम आइए सुनते हैं, जिसे लिखा है जफर कलीम ने। तू सितम से न खींच हाथ अभी, और कुछ दिन ये सिलसिला तो चले। तू सितम से न खींच हाथ अभी, और कुछ दिन तो ये सिलसिला चले। कौन अपना है ये पता तो चले, कोई पत्ता हिले हवा तो चले।

0: राम राम भजन भैया।
1: राम राम कृष्ण भैया।
0: और लेगी बताई का हाल चाल है।
1: देखी हाल चाल तो ऐसा है कि अभी गर्मी हर दिनों दिन बढ़त जात है।
0: बढ़त जात है।
1: खेत कति जइयो नहीं तो झाइन कहा इदे ईसा हो जाए कि हलकान हो जाए। और अभी कर समय में तो भाई मैं तो यही कहूँ कि भाई दोपहरिया में झाइनिच निकले वही ठीक है। काबर की भाई इतना ज़्यादा अभी तापमान हर बढ़त जाता है और बढ़ी भी काबर के समय चलत है नहीं जेठ कर महीना में नहीं घाम बाढ़ी तो कब बाढ़ी
0: बाढ़ी
1: बस
0: ना ही भजन भैया लेकिन एकस घामा नहीं नहीं पतियाँ में था।
1: हाँ भाई नहीं तो लगे लेकिन अब कैसे करियो ऐसा हमार दिनों दिन देखत है ना कि पर्यावरण हर बिगड़ गई है तेकर लिए हमार सरगुजा में बार तो आओ दिनों दिन में दे तापमान हर बढ़ता है।
0: बाकी ये घामा हर कहीं नहीं सब हो जिला बराबर चलक थे। हाँ कहीं ये हर भेदभाव नहीं करे
1: नहीं करे
0: वही कसम में भेदभाव कर बात कहे नहीं ता मैं कहे भजन भैया कि हमार देश जो है नहीं यहाँ देखी तो सबो धर्म कर मनसे रहते आओ देखी उमन कर नहीं अलग अलग जात पात कहब तो तबो लेहन खान पान पहनावा ओढ़ावा रिकिम रिकिम चटिक अलग थलग हो ही नहीं तबो हमन कर प्रेम रह देखी तो
1: कम नहीं हुए
0: नहीं हुए
1: रौरे कर इशारा ला मैं समझाता हूँ। देखिए आज दिन विशेष कर गोट ला रौरे करते है और देखिए आज विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस है।
0: हाँ
1: तो रौरे जो कहा थी सही बात है आज हमार ये जो विविधता है हमारी हर कहना चाहिए मजबूरी ना हवे हमार विशेषता हवे नहीं वही रौरे कर इशारा।
0: हाँ वही मैं कहन की रौरे भाई सुमी रहती कि नहीं आज कर दिन ला।
1: हाँ कैसे नहीं सुन रही है भाई आज कर दिन विशेष हमार यही उद्देश्य है कि भाई हमन जो है हर भाषा कर सम्मान करी हर जो सांस्कृतिक आदान प्रदान करे कर जो विचार एक भारत श्रेष्ठ भारत हमार
0: हाँ, तो हमन करते रहते
1: तो उकर आधार से भी हमन एक एक देश राज्य से दूसर राज्य कर जो बोली है भाखा है संस्कृति है बोला हमन सीखी और जानी।
0: हाँ एक ठन यही में बात निकलीस नहीं भजन भैया तो मैं कहे नहीं ये दे मान ली कि मैं और राउर छठी कहीं कहा सुनी होगी तेकर हमन दोनों मुँह फुलाए के एकस ओकस बैठे है ता एकस में हमार बात हर नहीं बने
1: नहीं बने भाई
0: हमल नहीं चटिक बातचीत करना पड़ी जला कथे नहीं संवाद तो ये बातचीत करब नहीं राउर तो राउर कर जो चटिक मटिक कथे नहीं गलत फहमी हो जाए आपस में तो ओहर सुलझ जाए यही का सहज में आया है ये जो इतिक मान हमन दिवस ला मनात ही नहीं तो एकर में भी देखी संवाद ला कथे कि आपसी संवाद बहुत जरूरी है। कहीं धर्म कर हो कहीं जाति कर हो है नहीं कहीं वेशभूषा पहने वाला हो कहीं बोली बानी बोले वाला हो आपस में बातचीत जरूरी है।
1: और बारे की सारा यह है कि भाई कहीं भी रही तो ये दे लड़ाई झगड़ा कति झेन जाई माया प्रेम ऊपर रही अभी देखी शादी ब्याह चलता है नहीं गाँव गाँव में तो पता चलता है भाई बढ़िया बाजा गुदुम बाजा बाजाता है तो भाई आस पास कर पारा ये पारा लो पारा देखे बढ़ जाते तो पता चलता है कि हमार पारा ते किसे आए रे ये लड़ाई झगड़ा एकस देखे पर भेटे गांव में
0: झगड़ाबाज दे
1: झगड़ाबाज तो वैसन झाइन करें भाई ये गांव ले ही शुरू हमर माया प्रेम बने रहे हमर पारा तुम्हार पारा झाइन करें।
0: हाँ वही तो जैसे गुदुम बाजा राउर कहें नहीं तो वहाँ राउर जाब नहीं तो वहाँ कर संगीत राउर कर मन में आई और राउर कर पारा में आने वहाँ कर भाई बाजा अलग बजा है तो ये मन ला देखी संगीत कथे नहीं मन ला जोड़ थे तो ओका से ला ले ही नहीं भाई और आजकल देखी चिट्ठी नहीं तो कहूँ बाकी कहें कि कह दारों में आजकल नहीं एक में ध्यान ही झगड़ा बाज लाख
1: अरे मैं देखा
0: यह ठीक बात नहीं है
1: एकदम ठीक बात नहीं है। और हमन किसान भैया बहनी मन ला भी कहा गाँव कर हमारे जो सियान है उमन कर बात ला भाई आजकल के लिए मन माने
0: सियान मन हाँ,
1: पता चले नहीं ये मन कहा है कि ये चेट को नाचा गाँव में चेट को इते उते हुई
0: झगड़ा बाज
1: झगड़ा बाज
0: बाकी वही रहे सोची नहीं।

0: ही आपस कर बातचीत करके भाई हम बैठ के बोला बात कर लें कि भाई हाथ मने दे नाचा कर वो
1: बिल्कुल
0: तो कहीं कोई मना नहीं कर भाई।
1: अब देखिए बर बिहा साल भर कर तिहार वही कुकनो आते नहीं हर साल में भाई हर हर सरलगा थोड़ी है तो शादी बिहा खुशी कर बात है तो उमे मिल जुल के भाई ये पारा वो पारा सब बढ़िया लेके नाचे गाए और बढ़िया जो है बिहा मनला करें।
0: आओ एक करब नहीं तो देखी एक ठन तो राउर कहन गुदुम बजा कर बात ली नहीं तो हमन देखी एकस में एक दूसर कर संस्कृति ला सीखती और नवा अनुभव प्राप्त करती और दूसर रूप में देखब नहीं तो हमारे यहाँ कर पर्यटन कला संगीत और साहित्य कर विकास होल हमार आपस में प्रेम भाव बढ़ेल और बड़ा पैमाना पर देखिए नहीं तो हमारा राष्ट्रीय एकता हर मजबूत होती है नहीं
1: बिल्कुल भाई। और कथी न भाई कि संस्कृति चाहे कतनो रहे
0: हाँ
1: एक कहावत है कि संस्कृति अनेक लेकिन हमारे जहाँ मानवता है एक
0: एकदम सही बात कह रहे। आज एक ठन और दिवस है भजन भैया
1: लगी तो बताइए
0: हाँ राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस।
1: अच्छा तो किसे हम समझ पा रहा था
0: वही तो देखिए भाई कहीं हिंसा हुए नहीं तेहर तो कहीं ले भाई सही नहीं है और आगू देखिए हमन वेट करे नहीं भाई
1: लड़े
0: व्यवहार कर झगड़ा ले झेन बाजी तो एकस जब हिंसा ले राउर दूर रहब नहीं तो यह तो सबले बढ़िया प्रेम कर विस्तार कर बात है प्रेम बढ़ाए कर बात है। और ये जो राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस आज 21 मई के हमन मनाती नहीं एकर उद्देश्य यह है मनसे मतलब है आतंकवाद और हिंसा कर जो दुष्परिणाम है नहीं ओकर प्रति जागरूक करना और यदि हमारे देश में शांति एकता और भाईचारा कर भावना ला मजबूत बनाना और देखिए आज कर दिन नहीं ये हमारे याद दिलाएल कि यदि आतंकवाद खाली एक व्यक्ति या क्षेत्र भरे नहीं बाकी पूरा राष्ट्र का सुरक्षा और विकास भरे गंभीर खतरा है।
1: बहुत सुखर केहन भाई अभी के समय में देखी नहीं अब दिक्कत है कि हिंसा हिंसा जहाँ हुई वो गांव कही वो शहर कही वहाँ देखिए विकास कर गति है रुक जाते है ना मार काट लड़ाई झगड़ा ऐसा हमन विनाश कर रास्ता लगा है जो चुनी भाई
0: एक जानती भजन भैया जब हमारे यहाँ कर नागरिक मन सतर्क नहीं हुई नहीं जागरूक नहीं हुई और एकजुट नहीं रही तो ये हिंसा ला नहीं रोक पा रहा
1: और जहाँ नागरिक एकजुट हुई
0: हाँ।
1: और ये कही कि एकजुट होके सतर्क रही तो भाई राष्ट्र हमार सुरक्षा ला मजबूती से कोनो नहीं रोक सके
0: हाँ नहीं रोक सके। और जागरूकता कर बात करें नहीं रो रहे तो देखिए सतर्क नागरिकता कर अर्थे चाहे नहीं कि लोग मन से जो हैं अपन आसपास होए वाला जो संदिग्ध गतिविधियाँ जो लगता है कि कहीं एमन भाई गलत दिशा कर तरफ कहीं उल्टा सीधा बात ला सोचता है तो ऐसा राउर लागर लगता है नहीं तो प्रशासन ला सूचना दे भाई
1: अच्छा
0: अगर राउर सतर्क नागरिक कही जागरूक नागरिक कही तो राउर कर फर्ज है तो प्रशासन ला सूचना दे और जागरूक नागरिक जो है नहीं समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखे में यही कस में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
1: बहुत सुगर कहन रहो रे देखिए आतंकवाद कर रहो रे गोट कर और आतंकवाद हमारे मानवता पर सबसे बड़ा बैरी और दुश्मन है
0: हाँ।
1: नहीं
0: एकदम सही गोट
1: एक बड़ी हमन ला भाई देखी रहो रे अभी कहना शांति कर गोट शांति ही एक समाधान है
0: हाँ नहीं भजन भैया बाकी बेरा ल तो देखी का कहता है बेरा
1: घड़ी कंटा तो कहता है कि चली किसान वाड़ी कार्यक्रम
0: तो चली
1: चली तो

0: एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे
1: कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
2: किसान वाड़ी सुनोइया जम्मो किसान भैया बहनी मन कर स्वागत करत हन। और कृष्णु भैया
3: हाँ।
2: देखिए गर्मी हर बाढ़ है
3: और
2: ये ग्रीष्मकालीन कर समय नहीं, लेकिन खेती किसानी कर जो गोएट करो तो जो आए वाला जो खरीफ मौसम है ओकर हमन ला तैयारी अभी ले अगर नहीं सोचब और नहीं फिक्राब ना तो बतरनी लही
3: हाँ।
2: का कहती
3: रहो हाँ। मैं तो कहता हूँ कि बहुत सारा

0: हमर जो किसान भैया बहनी मन आहे नहीं तो ढेरे चिकन तो तैयारी कर लेन वही है बाकी राउर कहे नहीं एकदम सही गोयट कहन दौरे कि भाई अगर कहीं बाइच गई सोही तैयारी हर है तो बरखा कर पहले तो तैयारी ला उसराए देते हैं बाकी अगर चटिक बाइच गई सोही तो ओला तैयारी कर लें खरीफ कर पूर्व कर जो अंतिम तैयारी जला कथे तेला कर लें अब ओकस में कैसे भाई खेत कर तैयारी ला देख लें बीज मला देख लें और राउर मन कर पास में का खेती बाड़ी कर संसाधन है
1: हो भाई भाई बैला नागर है कि ट्रैक्टर है कि भाई यदि आधुनिक खेती करते तो बरन बरन कर दे मशीन है
0: और भाई आर औजार राउर कर कृषि उपकरण उनका सहाय कहीं घाटी से है तेला ले आनी भाई तभी तो तैयारी हर बनी नहीं अब वैसे भी देखिए खरीफ का जो मौसम है नहीं यह तो देखिए हमारे बरखा ऊपरे रहते है एक ले नहीं समय पर और वैज्ञानिक तरीका ले हन जो किसान भैया मन तैयारी कर ही नहीं ता एहर बेहतर उत्पादन बहुत अच्छा उत्पादन उपज दही और अधिक फायदा एकर से भेट ही और शुरू में गोयट करे नहीं भाई खरीफ पूर्व अंतिम तैयारी कर मतलब चाहे कि किसान भैया बहनी मन बरखा शुरू होए कर पहले में खेती से जुड़ल सब हो जरूरी व्यवस्था कर जांच कर लें सुधार कर लें कहीं कमी हुए तो ओला तैयारी कर ले भाई
1: भाई देखी कहीं नहीं कोई भी तैयारी कर जब हमन गोइट करती योजना बनाए कर बात करती तो बनाए तो ढारी न है बस ओला ये है कि हमन ये समय ऊपर पकड़ना
0: जरूरी
1: काबर की भाई अगर सही समय ला हमन पकड़ लेन और समय ऊपर तैयारी कर लेन
0: कर ली
1: तो देखी फसल उत्पादन में ओकर असर तो दिखे
0: बहुत असर दिखी बढ़िया उपज कर ले भेटा ही देखी नहीं खेत कर तैयारी यह तो बहुत जरूरी है तो देखिए अगर खेत कर उचित तैयारी कर लेता है मिट्टी भुर भुरा बना लेता है तो एक से तो भाई गर्मी का जुटाई लग करते नहीं तो खर पतवार हर नष्ट हो जाए
1: बिल्कुल
0: और एक तैयारी बढ़िया लेहन कर लही तो पौधा कर जड़ कर विकास अच्छा हो ही और कहे नहीं कि खरीफ कर पहले में जो तैयारियाँ है ए किसान भैया बहनी मुला गहरा जुटाई जरूर करना चाहिए तो आगू भी वेट करे न कर भाई एकर से मिट्टी में जानती नमी कर संरक्षण होए
1: अच्छा
0: हाँ बढ़िया लेन खेत ला समतल कर लें ताकि जो बरखा कर पानिया है वह समान रूप से फैले और जल भराव कर समस्या झेल होए खेत कर तैयारी कर बात कहनी भजन भैया तो बढ़िया लेन गहरा जुताई कर लें और पाटा चलाए लें खेत कर मेड़ मन कर मरम्मत कर लें और यदि जल निकासी कर उचित व्यवस्था कर लें खर पतवार अगर है और पुराना फसल है अवशेष होकर ओला हटाए रखें और मिट्टी परीक्षण करके पोषक तत्व कर जानकारी ला जरूर ले लें
1: बहुत सुघर रोरे केहन भाई अब ये सब बात अगर अच्छा हमन किसान भैया बहनी मन तैयारी करते हैं तो फसल तो बढ़िया होगी बाकी दूसर बात खाद करा है देखी खाद और उर्वरक आधार होते
0: ये तो बहुत जरूरी चीज है
1: तो जो भी हमारे अभी गोबर खाद मन है ना जो भाई हमारे खातु है

0: तो ओला हटाए रखें और मिट्टी परीक्षण करके पोषक तत्व कर जानकारी ला जरूर ले लें।
1: बहुत सुघर रोरे केहन भाई। अब ये सब बात अगर अच्छा हमन किसान भैया बहनी मन तैयारी करते हैं तो फसल तो बढ़िया होगी। बाकी दूसर बात खाद का है, देखिए खाद और उर्वरक आधार होते हैं,
0: यह तो बहुत जरूरी चीज है।
1: तो जो भी हमारे अभी गोबर खाद मन है ना, जो भाई हमारे खातु है,
0: एकदम सही बात कहें। बाकी बीज कर भी कहब नहीं, चटिक समीक्षा बहुत जरूरी है। बढ़िया लेहन जो उत्तम गुणवत्ता कर बीज है ओकर चयन जरूर करें, काबर की अच्छा जो गुणवत्ता वाला बीज है खेती कर सफलता कर आधार होते हैं। और हमर किसान भैया बहनी मन अगर प्रमाणित और उन्नत किस्म कर बीज कर चयन करते नहीं तो एकर से बीज कर अंकुरण क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता एकर पर बहुत असर पड़ते हैं।
1: बिल्कुल भाई,
0: है नहीं। तो पहले तो भाई प्रमाणित और स्वस्थ बीज का उपयोग करें, बीज उपचार जरूर कर लें ताकि रोग और किरवा मन से सुरक्षा मिल सके, और समय कर अनुसार उपयुक्त फसल किस्म कर चयन करें। आवश्यक मात्रा में बीज कर उपलब्धता जो है सुनिश्चित कर लें,
1: बहुत जरूरी है। काबर की बीज ऐसा है ना भाई, कहते हैं कि भाई खेती किसानी कर पहल सीढ़ी यदि बीज हवे, और बीज अगर पोट है, बीज अगर प्रमाणित है तो समय ऊपर भाई जो वहाँ कर हमारे अलग अलग जलवायु रोरे अभी केहन है और माटी कर अनुसार भाई माटी परीक्षण तो करवाई नहीं है और नहीं करवाई नहीं है तेमन भाई अभी भी
0: बता रहे
1: और काबर की अगर माटी अनुसार अगर हम फसल और किसी मिला चुनत है ना तो ऊपर से फायदा जो है दुगुना तिगुना हो सकता है।
0: हाँ भजन भैया, मैं कहता हूँ नहीं ये रे कुछ एक संदेश मन है तेला सुनते इनकी
1: तो लगी तो सुन ले।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
3: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: ये तो रही संदेश। बाकी देखिए एगो हमन गोट बात तो करत रहन कि भाई खरीफ पूर्व अंतिम तैयारी कर, बाकी एगो टाउ बात मोर मन में आते
4: कैसे कहें
3: भाई। देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो हमर किसान भैया बहनी मन कर आय कर सुरक्षा ला प्रदान करते, काबर की देखिए जिला हमन MSP कथी है
4: न्यूनतम समर्थन
3: हो हमर फसल खरीदे कर गारंटी देते सरकार, संगे संगे बाजार में फसल कर जो अगर कीमत कम हो जाता है तब किसान मन पर हमर ये कही कि अच्छा मूल और समर्थन मूल्य भेटायल। एकर से फायदा ये है कि किसान मन ला फसल कर उचित जो है मूल्य या कीमत मिल जाते, संगे संगे बाजार में जो अगर कहीं कीमत हर घट गई तो किसान मनक आर्थिक सुरक्षा जो है बने रहते और कृषि उत्पादन ला भी बढ़ावा मिलते
4: ऐसे नहीं।
3: और हमर किसान भैया बहनी मन ला नवा नवा तकनीक और उन्नत खेती अपनाए में यदि उत्साह ला बढ़ाते।
4: हाँ मैं तो कहता हूँ कि एक से भाई हमारे किसान भैया बहनी मन कर आर्थिक स्थिति भी मजबूत होते, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होल और देश कर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होल। और साथ ही साथ देखिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था ला मजबूती भी मिलते और कृषि क्षेत्र में स्थिरता बने रहते
3: और तो हमन किसान भैया बहनी हो देखिए भाई ये चीज कर जानकारी रो रे मन रखी, काबर की सब MSP कर जुड़ाल जो फसल है सब में यदि सरकारी दर लागू होगी चाहे धान के ही गेहूँ चना सरसों नहीं सब कर समर्थन मूल्य यदि सरकार घोषित कर दी है
4: तो नगद तो रो रे गोट के भाई अब आगो का सुनाव रहो रे।
3: मैं कहत रहें देखी भाई गीत गोविंद अगर नहीं हुई ना तो अधूरा लागे
4: ऐसे नहीं।
3: और बड़ा सुघर दे भोजपुरी लोकगीत है मोहम्मद खलील और उनकर संगीता मनकर गाल गीत है तो इला सुनल जाए।
4: हाँ।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: भजन भैया हाँ देखी गीत ला भी सुनेन और संदेश ला भी सुनेन और आगो देखी नहीं हमने दे वेट करत रहन खरीफ कर जो तैयारी कर बात करत रहन अंतिम तैयारी खेत कर बीज कर संसाधन कर समीक्षा कर तैयारी कर बात करत रहन तो मैं सोचत रहनी ये दे हमन तो देखी गोष्ठ करें भाई अपन अपन

0: खेती किसानी कर अनुभव कर आधार
1: हो, हो, हो।
0: बाकी कहीं अगर विशेषज्ञ के लिए बातचीत हो जाए नहीं एकर तैयारी कर संबंध में तो बीज उपचार कर बात करत रहें तो बीज उपचार कर का विधिया है तेकर बारे में अगर विशेषज्ञ बताए दें तो कैसन लगी राहुल।
1: देखिए अगर विशेषज्ञ मन कर गोइड बात हर का है कि भाई अपने अपने दे प्रमाणित रहते
0: प्रमाणित रहते
1: हो तो मन कर बात सुन के आओ अच्छा भाई हमन ला जानकारी भेटा थे
0: हाँ।
1: तो देखिए नया दौर कर क्रम नहीं डॉक्टर जहार सिंह सहायक प्राध्यापक पौध रोग विज्ञान कर हैं इनकर से गोइड बात हुई साहब
0: हाँ।
1: तो सुनल जाएगा
0: लेगी तो

0: हमर कार्यक्रम में राहुल मनकर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज हमारे साथ में है डॉक्टर जहार सिंह जी, सहायक प्राध्यापक हैं पादप रोग विज्ञान विभाग कर और राजमुनि देवी कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र अजीरमा अंबिकापुर में पदस्थ हैं। इनकर से हमन बातचीत करब कि जो खरीफ फसल उत्पादन से पहले हमन के बीज उपचार करना चाहिए वो कैसे कैसे हमन कर सकते हैं, कौन कौन सा नया नया तकनीकी है, एक बारे में हमन जानकारी ले। डॉक्टर साहब राउर के बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: हमला बताए कि अभी खरीफ कर तो खैर तैयारी चलत है और बढ़िया उत्पादन हमर सरगुजा संभाग क्षेत्र में हमन लेथन, लेकिन ओकर से पहले राउर मन से हमन सुने हन कि बीजोपचार करना चाहिए और ओकर से बढ़िया फायदा मिले, तो कौन कौन सा बीजोपचार कर तकनीक है, का का फायदा ओकर से मिले?
1: तो सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि बीजोपचार है क्या। तो बीज उपचार एक ऐसा विधि है जिससे हम बीज को सड़ने से या कीड़ों से रोगों के प्रभाव से बचा लेते हैं। ये ठीक उसी तरीके से काम करता है जैसे हम टीका लगाते हैं किसी बीमारी के से बचाव के लिए, ठीक उसी प्रकार हमारा जो बीज रहता है वो कीड़े बीमारियों से बच जाता है। तो उसमें एक सुरक्षित आवरण बन जाता है जिससे बीज अच्छे से और सुरक्षित तरीके से बड़ा होता है और अच्छी पैदावार होती है।

0: जरूरी है, चाहे खरीफ की हो चाहे रबी की फसल हो, तो उसके लिए क्या क्या करें? उसके लिए दो विधियां अपनाई जाती है, एक रासायनिक विधि बोलते हैं, एक जैविक विधि। रासायनिक विधि में जो बाजार में फफूंदनाशी और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, बहुत सारे दवाइयाँ मिलती हैं जिससे हम बीज में एक आवरण बना देते हैं, तो उसके लिए रोगों से बचाने के लिए बाजार में बहुत सारा केमिकल फफूंदनाशी आता है, जिसमें से प्रमुखतः कार्बेंडाजिम है, थीरम है, केप्टान है, बाविस्टिन है। इसकी मात्रा 2 से 3 ग्राम लेते हैं प्रति किलो बीज के दर से, और उसको अच्छे से मिला करके और उसमें ये केमिकल अच्छे से मिल जाए, बीज के ऊपर में आवरण बना ले, उसके लिए थोड़ा पानी लेके गुड़ का हल्का छोटा सा टुकड़ा मिला लें तो उसमें बहुत अच्छे से चिपक जाता है। और दूसरी विधि है रासायनिक विधि, जिसमें हम ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास, बेसिलस, बहुत सारे जैविक एजेंट हैं जिसका हम उपयोग करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्राइकोडर्मा, बेसिलस या स्यूडोमोनास, जो भी हमारे पास जैविक एजेंट उपलब्ध हैं, उसका 10 ग्राम मात्रा लेते हैं प्रति किलो 20 ग्राम की दर से। तो उसको भी अच्छे से मिलाने के लिए, जैसा कि थोड़ा से पानी और गुड़ का थोड़ा सा टुकड़ा ले लें, वो अच्छे से घोल बना लें और उसमें छिड़क दें, ताकि जो सूक्ष्म जीव हैं वो अच्छे से चिपक जाए बीजों में, जिससे बीज, बहुत सारे प्रमुखतः रोग मिट्टी में रहते हैं तो बीजों में आक्रमण करेंगे तो एक सुरक्षित आवरण बना रहेगा तो हमारा बीज उससे बच जाएगा। तो ये एक सरल शब्दों में बताया गया है। इसमें बीजोपचार करने की भी प्रमुख अलग अलग स्टेप होते हैं, जैसे कि गीला बीज उपचार विधि, सूखा बीज उपचार विधि। तो जिसमें उपरोक्त बताए गए जो भी दो विधियां मैंने बताया था, जैविक और रासायनिक विधि, उसमें से हम कोई सा भी विधि लें, उसमें से सूखा और गीला विधि में, सूखे विधि में क्या करते हैं, बीज लेते हैं 1 किलोग्राम, और रासायनिक विधि में आ रहे हैं तो 2 से 3 ग्राम फफूंदनाशी लेंगे, उसमें अच्छे से मिला लेंगे और छायादार जगह में फैला के रख देंगे, उसके बाद सुबह उसको नर्सरी में बुआई कर देते हैं। और गीला विधि में क्या करते हैं, उसमें 1 किलोग्राम बीज है तो उसके लिए हम आधा लीटर पानी लेंगे उसमें, या फिर हम तेल भी ले सकते हैं जो हमारे पास उपलब्ध है, तो उसमें फिर रासायनिक दवाई को यदि ले रहे हैं तो 2 से 3 ग्राम मात्रा डाल के उसमें 1 किलोग्राम बीज को मिला देते हैं, थोड़ा देर डुबा के रखते हैं, फिर उसको ज़्यादा गीला सूख जाए उसका नमी की मात्रा करके पंखे के नीचे या घर में कहीं पे भी साफ जगह में फैला के रख देते हैं, फिर सुबह उसका बुआई कर सकते हैं। और चाहे हम जैविक विधि में अपनाएं, उसमें भी गीला विधि में सिमिलरली केमिकल के जगह में जैविक जीव का उपयोग करते हैं, तो इस तरीके से हम बीज को एक सुरक्षित आवरण प्रदान करते हैं ताकि स्वस्थ पौधे हों और स्वस्थ पौधों में अच्छा उत्पादन होता है।
1: डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया राउर से जानकारी मिलीस। बीजोपचार कर जो नवा नवा तकनीक है, मुख्य रूप से हमन ला कौन कौन फसल में अपनाना चाहिए, सभी फसल में करना चाहिए, और कितना अंतराल पे करना चाहिए, हर बार करे चाहिए, कौन कौन सा नियम रहे?
0: हाँ, ये किसानों के मन में ये सवाल जरूर आता है, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। इसमें क्या करना है, जो खरीफ सीजन में चाहे सब्जी वर्गी फसल हो चाहे खाद्यान्न की फसलें हों, सभी को उपचार करके ही बोना चाहिए।
1: अच्छा।
0: हाँ, मिट्टी में जो रोग और कीड़े लगते हैं उससे बचाव हो जाता है। तो उसके लिए भी 3 स्टेप होते हैं, जिसको इंग्लिश में FIR बोलते हैं। पहले फंजीसाइड, जिसको फफूंदनाशी बोलते हैं हिंदी में, इंसेक्टिसाइड जो कीड़ा मारने के लिए दवाई होता है, और लास्ट में होता है राइजोबियम, जो कि जैविक कल्चर होता है। तो इसी क्रमबद्ध रूप से उसको उपचारित करना चाहिए,
1: अच्छा।
0: क्योंकि पहले बीमारी आता है फिर कीड़ा आता है, तो इन दोनों के बीच में हम अंतराल रखेंगे ताकि एक सप्ताह का, ताकि वो अपना काम अच्छे से करे। उसके बाद राइजोबियम है, नहीं तो केमिकल और राइजोबियम एक साथ करेंगे। राइजोबियम बैक्टीरिया है जो वातावरण से नत्रजन रहता है उसको खींच करके पौधों को उपलब्ध कराता है।

0: तो हम दोनों के बीच अंतराल नहीं रहेंगे, एक साथ मिला देंगे, तो उससे होगा क्या कि एक दूसरे का असर ख़त्म हो जाएगा, खास करके जो हमारे सूक्ष्म जीव है राइजोबियम बैक्टीरिया उसका।
1: डॉक्टर साहब, एक सवाल कई बार हमर मन में रहेल कि अभी हमन जैविक खेती करत रहन, फिर प्राकृतिक खेती अभी हमन सीखत भी हन और कई किसान भैया बहनी मन करत भी हैं, तो अगर दोनों विधि है तो उनमें भी बीजोपचार करना चाहिए हमन?
0: हाँ बिल्कुल, अभी जो जैविक विधि है या प्राकृतिक खेती है उसमें हम प्रकृति में जो उपलब्ध जीव हैं, सूक्ष्म जीव जो लाभकारी हैं, उसका उपयोग करेंगे, उसमें रसायन का बिल्कुल नहीं करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, जो मैं गुड़ और पानी का मिश्रण बता रहा हूँ, वहाँ पे हल्का सा गोबर का और गौमूत्र का उपयोग कर सकते हैं। तो उसमें क्या करें, 200 ml प्रति किलोग्राम बीज की दर से गौमूत्र ले लें और उसमें 100 ग्राम गोबर ले लें, उसको अच्छे से मिला लें। उसके बाद उसमें ट्राइकोडर्मा जो कि सूक्ष्म सूक्ष्म जीव हैं, जो मिट्टी से ही हम उसको आइसोलेट करके उसको बनाते हैं ताकि जो हानिकारक जीव है उसको ख़त्म कर सके। तो उसके जगह में गौमूत्र और गोबर की मिश्रण में 1 किलोग्राम बीज डाल के थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा डाल देंगे, तो गोबर मिल जाएगा तो उसको पोषक तत्व भी मिल जाएगा, तो बीज को लंबे समय तक सुरक्षित रखेगा, तो वो अंकुरित हो जाएगा। जैसे शिशु को ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जल्दी बीमारी लग जाता है, वैसी बीजू पौधे होते हैं जो नर्सरी में 20-25 दिन तक रहते हैं, उस पौधों में जल्दी बीमारी और कीड़े लगते हैं, नाजुक होते हैं, तो उसको बचा के रखता है उस पीरियड तक। फिर धीरे धीरे वो बढ़ जाता है, तो थोड़ा बहुत कीड़े बीमारी लगते हैं उससे, उसमें डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप हो जाता है फिर पौधों में, तो सह सकता है थोड़ा। तो ये अच्छा विधि है उसके
1: डॉक्टर
0: लिए।
1: साहब, कई बार जो पैकेट में हमन ला बीज मिलेल तो हमें कंपनी वाला मन बताते हैं कि बीजोपचार पहले से करल है, तो किसान ला कैसे समझ में आई कि बीजोपचार करल है या ओकर बाद भी किसान कर सकत है?
0: तो जैसे सर्टिफाइड कोई भी कंपनी हो, नामी कंपनी जिससे ऑथेंटिक है बाजार में, सरकार से प्रमाण पत्र मिला है, उस कंपनी से हम बीज खरीदते हैं, तो वो सही तरीके से बीज उपचार किया हुआ रहता है, तो उसको बीज उपचार करने की ज़रूरत नहीं होती है। यदि हम बहुत सारे किसान छोटे गांव में, खासकर हमारे सरगुजा अंचल में जो ट्राइबल बेल्ट है और बहुत दूरस्थ अंचल में है गांव, वहाँ रासायनिक विधि से नहीं करते हैं, तो उन लोग क्या करते हैं, जो देसी किस्म है उसको उगाते हैं, तो घर में ही उसको आसपास के कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग या उद्यानिकी से सूक्ष्म जीव का मिश्रण ले सकते हैं, पाउडर फॉर्म में भी आता है, उससे उपचारित करके बो सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आज बीजोपचार के संबंध में बहुत बढ़िया जानकारी राउर से मिली, बहुत बहुत धन्यवाद करते।
0: धन्यवाद।

0: हाँ तो कृष्णु भैया
1: हाँ।
0: देखिए बड़ा सुघर गोइट बात करिन हमर परसु भैया डॉक्टर जहार सिंह जग
1: खरीफ फसल उत्पादन से पूर्व बीज उपचार कर विधि का है और कौन ढंग लेहन करें। बाकी देखिए गर्मी कर मार ला देखा थी एकस गर्मी और एकस गर्मी में नहीं राउर अगर सावधानी नहीं रखब नहीं भजन भैया तो राउर कर काम बूता हर बिगड़ जाए काबर नहीं कि एटेक मान गर्मी में रौरे अगर बाहरे निकलें बिना कहीं सावधानी कर तो बेरामी निश्चित है।
0: बिल्कुल भाई हाँ। रौरे कर कहे कर मतलब यह है कि अगर हमन कहीं जावत है पहली बात तो कि भाई हमन दोपहरिया में बाहरी झेल नहीं खेली कोशिश करी कि घरे में रही
1: हाँ।
0: और अगर बिहाने कहीं निकलत है तो बढ़िया यदि साफी वाफी बांध ली
1: मान ली
0: हाँ। और मैं तो कहता हूँ कि खेत खरिहान कर गोइट जब हमन करथन किसान भैया बहनी मन खेत अंग जाते हैं
1: हाँ।
0: तो भाई ये दे पानी धेर ले हैं संगे संगे देखिए आजकल भाई चना फूला ले कतेक
1: हाँ,
0: सुगर
1: हाँ,
0: नहीं
1: हाँ।
0: तो चना फूलाल रहे और खेते जाएं और भाई काम बूता अलग करें
1: और पानी ले देखिए नहीं बार बार पिए नींबू पानी पिए तेहर फायदा करते और ये ओ आर एस कर घोल रहते नहीं तेहर पानी कर कमीला दूर करते वह चला भाई उपयोग कर सकता है और देखिए नहीं कोशिश करिए अगर कहीं बहुत जरूरी काम बुता राउर करनी

इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम की पहली पेशकश है किशोर कुमार की आवाज में फिल्म ड्रीम गर्ल का ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, और इसे सुनना चाहते हैं देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार निवानी, संगीता, आकाश, आयुषी, सागर, यशी, हनी, पूजा, सीता और परिवार के सभी सदस्य, अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश और दीपेश वर्मा, ग्राम पंचायत खुंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी करिश्मा, सुमार साय, कलेश्वर सुखराम, हीरामनी और ऐश्वर्या पैकरा, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, स्वीटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबराय, ग्राम बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, ग्राम चरोदा बारनवापारा बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला, प्रियंका, दीपक, खुशबू, ज्योति, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौस मोहम्मद, अलमास बानो, मोइन छोटू पवार, शंकरलाल गंगराड़े, वनिता गंगराड़े और मोहम्मद हसनैन, ग्राम कलाना राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, योगेश और योधव कड़वासरा, दरबार कॉलोनी सनावत से किशोर कुमार सांवले, रेखा, हिमांशु, अनुराग, सुलोचना, चारुवी और प्रणव सांवले, गांधीनगर गुजरात से जीके परमार, ज्योत्सना, हर्ष और दीपल, यवतमाल विदर्भ से संतोष खड़से और विनोद खड़से, मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, अताउर रहमान, हबीबुर रहमान, और गुजरात से हैं नारायण घनश्याम और अंजू।

किशोर कुमार को आपने फिल्म ड्रीम गर्ल से सुना। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति भूमिका अरोड़ा। चनोरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनवारी लाल, मंजुलता, श्याम रवि, आर्यन रंजीत कुशवाहा, रामानंद और उनके साथी। भाटापारा से रोहित जयलक्ष्मी,

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, जिसे लिखा है समीर ने, संगीत नदीम शमर का, आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और मनहर की। फिल्म सड़क के इस गीत को सुनना चाहते हैं राष्ट्रीय दिव्यांग सहयोग संगठन छत्तीसगढ़ से नरेश कुमार, सुखराम सिंह मरावी, लालू प्रसाद उइके, तीजन सिंह मरावी, महेंद्र कुमार कौशिक, राखी डहरिया, संदीप कुमार पांडे, कृष्ण कुमार, सुनील कुमार, उदय जायसवाल, चित्रंजन यादव, मनीष कुमार, रविशंकर राजवाड़े, तेज कुमार साहू, गंगेश्वरी, भास्कर, कविता मांझी, कुलदीप, सुरुचि कश्यप, राधा वर्मा और दुर्गेश्वरी, बाबा कुटीर रायगढ़ से शिवकुमार चौहान, संक्रांति, रितेश कुमार राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान, जय जिनेन्द्र, श्रोता संघ परवड़ी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश, प्रीतेश और उनका पूरा परिवार, सत्यम क्लब फुलकोना प्रेमनगर से अरविंद कुमार यादव, रुस्तम, हिमांशु, अनुष्का, ऐश्वर्या, प्रीतम और मनोज यादव, दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा, हनुमान बोड़खे, उत्तम जमदाड़े, धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या, माही, पूजा छुटकी, शरद कुमार डोडवानी और उनका पूरा परिवार, मेन रोड फारविसगंज बिहार से प्रकाश कुमार, पप्पू, पीहू कुमार, विमल और नवरतन हाता, बाड़ीहाट पूर्णिमा बिहार से ममता रानी, छवि अनोखी, अर्पिता लाडो, दीक्षा देव, देवांशु और डब्लू, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी और जयपाल यादव, दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं कुमार सानू की आवाज में फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई का ये गीत। शब्द रचना है कतील शिपाही की, संगीत अनु मलिक का, और फरमाइश करते हैं सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रिवार्ड, चंद्रकला रिवार्ड, पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह पल्लवी, प्रखर कुशल, नीति सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह, फवारा चौक वार्ड नंबर 6 सिरसला राजस्थान चुरू से संदीप सिंह सोनगरा, प्राची सोमल, कार्तिक और उनका पूरा परिवार, जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबिहार, अनस और रेहान, बेल्डी मध्य प्रदेश से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, मिट्ठू मुड़ा दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, कौशल, कृष्ण कुमार यादव, लक्ष्मण वाधवानी और गेंदु भाई, ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी, इशिका और तेजल, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, असमा नाज अंसारी, जेल रोड बक्सर से शरफुद्दीन अंसारी और मोहम्मद सुल्तान अंसारी, आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन।

धोतर जोड़ा अष्टी से दशरथ सागुते अनुष्का सागुते, इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से, चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश, शुभम शिखा सैफाली, भागलपुर उस्तु से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष कुंदन, करीना कुमारी, पूजा कुमारी, आरती कुमारी और सुनीता देवी, चार डोगरी पिपरिया कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार, जयकिशन, श्रीमती कुमारी, श्रीमती इंद्राणी, माया साहू, ग्राम तारकेश्वरपुर सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मधुसूदन प्रजापति, झिलमिल दक्ष प्रजापति, कुंती मंगलराम और रिद्धि सिद्धि प्रजापति, मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ से दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोत।

कुमार सानू के गाय फिल्म फिर तेरी कहानी आदाई के इस गीत के साथ ही इंस्टा फरमाइश का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। आप समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
1: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
2: अमेरिका एंड इंडिया,
3: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
2: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
2: सुशील शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने

0: ने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
1: पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
5: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताहांत तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की

0: की आशंका है। ईशान के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लायन होजमार्क कजल्सफेल्ड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य पर संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says Prime Minister Narendra Modi's 5-nation visit guarantees advantages for every segment of the society. Asserts world is looking towards India as a trusted partner. Railway Minister Ashwini Vaishnav stresses on enhancing technology-driven security systems and improving operational security. Government reiterates that country has sufficient supplies of crude, petrol, diesel, natural gas and LPG. Center issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries. India-Africa Forum Summit postponed. IMD issues red alert for heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbh for tomorrow. And in IPL cricket, match between Gujarat Titans and Chennai Super Kings underway in Ahmedabad. Union Commerce and Industry Minister and BJP leader Piyush Goyal today said that the world is looking towards India as a trusted partner. Addressing a press conference in New Delhi on Prime Minister Narendra Modi's 5-nation visit, Mr. Goyal said that the visit guarantees advantages for every segment of the society. He said that the Prime Minister's visit reflects that India stands strongly on the global stage. He said 57 significant agreements were signed, including the commitment of UAE to invest $75 to $100 billion in India during the tour. He also hit out at Congress leader Rahul Gandhi for his alleged derogatory remarks against Prime Minister Narendra Modi. He said due to the negative politics of Mr. Gandhi, people are rejecting the Congress in elections. Later, in a different program, Mr. Goyal said that India and the United States are working as natural partners and complement each other across sectors including technology, innovation, high precision, defense, digital data centers, quantum computing and medical devices. Addressing the annual leadership summit of the American Chamber of Commerce in New Delhi, Mr. Goyal said the partnership between the two countries is strengthened by mutual trust and shared economic interest. The minister said that India provides a trusted framework for global companies and combines scale, talent and market opportunity.
3: America and India truly are working as natural partners. We complement each other. America is looking for a trusted partner. I think India has proven track record over

आइए श्रोताओं, आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के उत्सव का हिस्सा बनते हैं। 23 मई दिन शनिवार को प्रातः 5 बजे से आयोजित विशेष वाकाथान में शामिल होकर संस्कृति, साहित्य, जन जागरण और राष्ट्रीय चेतना की इस ऐतिहासिक यात्रा को सम्मान दें। श्रोताओं, ये अवसर है आकाशवाणी की विरासत के साथ कदम मिलाने का। तो आइए 23 मई दिन शनिवार को प्रातः 5 बजे से आयोजित इस वाकाथान में आप सपरिवार और मित्रों सहित सादर आमंत्रित हैं।

हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं आपके ईमेल फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। मैं हूं आज आपके साथ पद्मनाभ शर्मा। कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं यशुदास की आवाज में फिल्म साजन बिना सुहागन से। गीतकार हैं दीवर और संगीत उषा खन्ना का है और इस गीत को सुनवाने के लिए हमें मेल किया है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, ग्राम सिउड़ नवागढ़, जिला जांजगीर चापा छत्तीसगढ़ से बाल मुकुंद भीष्मा, मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी,

तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक, बलवीर, शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा, सोनिया और विशाल सपकाल, पलारी से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, लखनलाल देवांगन, ग्राम लसुड़िया पाता, नरसिंहगढ़ राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी, बंगाली पंजा नागपुर से प्रकाश रमहाड़े, भारती पश्चिम बंगाल रानीगंज से रेहान शर्मा और करणदीप, आदर्शनगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, निवान, सौरव, शाइना और मेंडी शर्मा, जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, अनुराग मोहन, जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरेन, आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मिनी, साहिल भारती बघेल। तो आइए आप सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर फिल्म साजन बिना सुहागन का ये गीत यशुदास की आवाज़ में।

उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका भानु प्रकाश, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही मेहराज जहां, पेपरलोड सरगांव मुगेली से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा, बाबा कुटी रायगढ़ से शिवकुमार चौहान, संक्रांति, रितेश कुमार राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान, कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर, ग्राम रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार और डिकेश साहू, ग्राम जाखोद से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक, बाजार रोड मुगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, सबिस्ता मोहम्मद असीब, पलक लुबना और यश मंसूरी, दतरंगी के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा, ग्राम नथाना पंजाब से हरजिंदर चिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, ग्राम उच्च बट्टी बिलासपुर से मुकेश गोस्वामी, मधु, आशीष, शिवन्या, अन्नु गोस्वामी, ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदयभान पाल, जय हिंद, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश और दिव्यांश बघेल, कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, प्यारा मुन्ना, हिमाक्ष, छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदुलाल सिंह रोल, नारायणी, नोमेश, नेहा और वान्या सिंह रोल, ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से चंदेल दास देवांगन, रीता दास, जतिन कुमार, चंद्रावती सिंह मरावी, नूर साय राजवाड़े, समीर सिंह मरावी और सोनू सिंह के ईमेल फरमाइश पर शैलेंद्र सिंह और हेमलता को फिल्म अखियों की झरोखों से सुनिए। गीत और संगीत है रविंद्र जैन का।

0: आकाशवाणी के 90 वर्षों के गौरवशाली प्रसारण के जश्न में शामिल होने आइए 23 मई को सुबह 6 बजे आकाशवाणी अंबिकापुर के मेन गेट पर। आकाशवाणी अंबिकापुर के सदस्य और आप सब मिलकर करेंगे वॉकथन।
1: तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी।
0: चलिए बनाएं एक मिसाल अपनी प्यारी संबंधों की। शामिल होइए आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ 23 मई 2026 को।
2: चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में।
0: आकाशवाणी अंबिकापुर के सदस्य और आप सब करेंगे वॉक और साथ चलते चलते ढेर सारी बातें भी 23 मई 2026

2026 को सुबह 6 बजे आकाशवाणी अंबिकापुर के मेन गेट से शुरू करेंगे हम सब मिलकर वॉकथन। हमें रहेगा आपका इंतजार, आइएगा जरूर।

ईमेल की गूंज कार्यक्रम आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति है लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाजों में फिल्म वारिस का ये दो गाना। गीतकार हैं वर्मा मलिक और संगीत उत्तम जगदीश का है। इस गीत को सुनाने के लिए हमें मेल किया है तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया, शेख रहीम मुन्ना, दानिश, आसिफ शेख, देवरी भाटापारा से केआर साहू, आकाश कमलेश, गन्नूलाल रजक, मुरली क्षत्रिय, ग्राम हांडीखेड़ा सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा जमानिया, गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल और आर्य जायसवाल, चांदनी चौक गड़ई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू और रविंद्र रौनक सेन, ग्राम हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला इंदु पार्वती हिमांशु, मिठुमुड़ा दुर्गा चौक से गेंदलाल श्रीवास कौशल, बिहारी पटेल लक्ष्मी बरेठ और उनके साथी, धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद बेबी आलिया, आयान बाबू, मोपका भाटापारा से रोहित साहू, श्रीमती सोनिया, राहुल सुषमा, दीपा साहू, जेल रोड रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार, बेबी जोई, यामिनी तिवारी और उमा तिवारी, कमल बिहार रायपुर से कौशल गोस्वामी और रिंकी गोस्वामी, मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहारकर, नर्मदा कुमारी सुजाता पोहारकर, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन टिकेस्ट्रो, रोजी टिकेस्ट्रो, पॉल टिकेस्ट्रो और विलिस, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब, अल्तमास बानो पवार, मोइन छोटू पवार, शंकरलाल गंगराड़े, साफिया रहान खोकर और मोहम्मद हसनैन, कोरासी भैंसा रायपुर छत्तीसगढ़ से पवन कुमार साहू, क्रांति देवी, पंकज साहू और सुष्मिता साहू।

कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं जसपाल सिंह को फिल्म शाम तेरे कितने नाम। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है और मेल पर फरमाइश की है गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन कृष्णा और पीहू, बीड़ शहर से नंदकिशोर घाटे, संगीता साक्षी, जयश्री महत्रे, अंजलि करवा बाला साहब, अनूपपुर मध्य प्रदेश से जय मंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी और कृष्णा केवट, बोड़सरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु अबली और प्रियांशी साहू, डेर पाटन गुजरात से धीरज बी रबारी, ग्राम सोंगा मगरलोड से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हेंश कुमार चंदन, सिद्मा बाजार पारा बलरामपुर छत्तीसगढ़ से धनेश्वर निषाद, दीपिका, शिवांश, राम भरोस पैकरा, नरेश सिंह, नर्मदा पार्क मंगलबेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल।

जसपाल सिंह के गाये फिल्म शाम तेरे कितने नाम के इस गीत के साथ ही ईमेल की गूंज कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इसे आज आपके लिए पेश किया पद्मनाभ शर्मा ने। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के ठीक 10 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सूर्यामनी में आइए सुनते हैं पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का गाया राग विभास।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सूर्यामनी में अभी आप सुन रहे थे पंडित मल्लिकार्जुन मनसुख।

विरग, सादुल सहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, सायमा खान, पोतरा मुस्तफा खान, पोत्री अफिया, रऊ भाई और शहीद भाई,

विरग, सादुल सहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, सायमा खान, पोतरा मुस्तफा खान, पोत्री अफिया, रऊ भाई और शहीद भाई,

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, लता मंगेशकर की आवाज में, शब्द रचना है शैलेंद्र की, संगीत सलिल चौधरी का। फिल्म मधुमती के इस गीत को सुनना चाहते हैं जतुका, किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज, सिराजपुर गणेशपुर से हिना कैसर, मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम और नाज परवीन, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, हरदेवलाल पारा वार्ड सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी कोमल यादव, रामनगर रोड शांतिनगर इंदौर से खुशी खर्चे, ब्रोनो गणेश, कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप और सुनीता शर्मा।

बेल्टी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी चंचल डोमने, अर्जुन गवनेकर, धीरज सब्बब सेरे, श्री श्रृंगी ऋषि महानदी सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलरगांव से मित्रेश देवांगन, मधु हिमांशु और अंकित देवांगन, भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा, मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा सुनील, साहिल अंश और कुमारी सुजाता पोहरकार, सेक्टर 67 मोहाली से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज, डाबर तालाब लोनी से रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान, मरियम और बुशरा, पुणे से पंकज बाड़ोदे, आर्या, प्रियंका, बेटी बाड़ोदे, चंद्रप्रभा बाड़ोदे, आप सबकी मिलीजुली फरमाइश पर आइए अब सुनते हैं फिल्म मुके मेलन का ये गीत मुकेश की आवाज़ में। शब्द रचना है आनंद बख्शी के और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

किशोर कुमार की आवाज में आइए अब सुनते हैं फिल्म मेरे जीवन साथी का ये नगमा, जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत आर डी बर्मन का है, और सुनना चाहते हैं दिल्ली शहर मोरीगेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, ग्राम मंगला मटिया बालोद से शिवकुमार अंगारे, अंजनी त्रयंबिका, लीना अंशुमाला और आशुतोष अंगारे, बाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, जावेंद्र कुमार वर्मा, ग्राम बहरामपुर टेमा खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, सुमती भागवत, अभिषेक सीमा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन, मास्टर समर राज, आर्यन वर्मा, बेबी आरोही, ईशिका वर्मा, अंजलि श्वेता, सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश, सुनीता मुस्कान और धर्मेंद्र, इनके साथ जितेंद्र, तो आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर फिल्म मेरे जीवन साथी का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं मन्नाडे का गया फिल्म देख कबीरा रोया का ये गीत, जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत मदन मोहन का है, और पसंद करते हैं देवरी भाटापारा से KR साहू, आकाश कमलेश, कन्नूलाल रजक, मुरली क्षत्रिय, जेल रोड रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार, बेबी जो यामिनी और उमा तिवारी, कमल विहार रायपुर से कौशल गोस्वामी और रिंकी गोस्वामी, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवांडकर राही, श्रीमती सरिता प्रिंस एकांश, अर्जुन गवांडकर टुक टुक, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल कुणाल, ग्राम सोंगा मगरलोट से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार और हेयांश कुमार चंदन।

मनरे के गए फिल्म देख कबीरा रोया के इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन अब समाप्त हुआ। इसे आज आपके लिए पेश किया पद्मनाभ शर्मा ने। मीडियम वेब पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं समाचार। थोड़ी देर में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों

में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने

मंत्रालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप टू में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।